एक बर्गलर अलार्म भी लगा देते हैं, कुत्ते को भी पहरे पे बिठा देते हैं, और बाज अकात एक गार्ड भी अपने गेट पे खड़ा कर लेते हैं। कराची में अगर आप जाएं, ये सब ऐसे ही होलिया नजर आता है। पर्दे की मिसाल भी इसी तरह है कि आज का माशरा नहायत फितना और फसाद वाला माशरा है। हम औरतों को अपनी हिफाजत के लिए अपने ऊपर पहरा बिठाना है। अल्लाह ने हमें पर्दे की सूरत में बेहतरीन पहरा या हिफाजती चादर अता की, लेकिन आज इस माशरे में पर्दे की अहमियत पहले से भी ज्यादा है। हिजाब ओढ़कर सबकी नजरों से ओझल होने का एहसास बहुत उम्दा होता है। मैं जब सर्दियों में कॉलेज जाती तो हिजाब के साथ ग्लव्स भी पहनती, इसमें पूरी तरह कवर हो जाती, इस एहसास से बहुत लुत्फ आता। एक जापानी नौ मुस्लिमा खौला नकारता ने अपने हिजाब ओढ़ने के एहसास को इस तरह बयान किया था, ऑब्जर्विंग हिजाब फ्रॉम आउटसाइड इट इज इम्पॉसिबल टू सी वट इट हाइड्स। एज आउटसाइडर मे सी इस्लाम इज रिस्ट्रिक्टिंग मुस्लिम, इनसाइड हाउएवर देयर इज अ पीस फ्रीडम एंड जॉय विच दोज हु एक्सपीरियंस इट हैव नेवर नोन बिफोर। के बाहर से तो लगता है कि शायद औरत कैद है, लेकिन अंदर औरत की जो अपनी आजादी होती, हंस रही है, गुस्से का इजहार कर रही है, खा रही है, कुछ कर रही है, डर रही है, झिझक रही है, नर्वस हो रही है, कुछ भी हो रहा है, किसी को क्या खबर कि क्या हो रहा है। तो ये कितनी बड़ी आजादी है कि आप अपने आप को जैसा चाहें वो करते रहें। लेकिन जब आप सबके सामने होते हैं तो हर वक्त आपको एक मस्नूई खौल चढ़ा के रखना होता है, अपने सब जज्बात का आप खुलम खुला इजहार नहीं कर सकते। तो ये एक नौ मुस्लिमा है जापानी, इसकी बात ये बड़ी काम की है कि बजाहिर कैद नजर आती है लेकिन अंदर मुकम्मल आजादी है, और ये वही एक्सपीरियंस कर सकता है कि जो इस आजादी से गुजर रहा। कल क्लास में हमने जस्ट फॉर एंजॉयमेंट टेलीफोन पर बात करने के बारे में बात की। बहुत सी लड़कियां और लड़के इस तरह करके दूसरों की जिंदगी में जहर घोलते हैं। ऐसे लोगों को बाज दफा अल्लाह दुनिया में ही सजा दे देता है, सजा से हिदायत पाने वाले सीधे रस्ते पे आ जाते हैं। मेरी फैमिली में एक ऐसा वाकया हुआ, मेरे एक दूर पार की कजन जिससे मेरी दोस्ती थी अपने कजन को एक तरफा तौर पर पसंद करती। उससे बातचीत बढ़ाने के लिए उसने फोन करने शुरू किए। वो लड़का शुरू में उससे बात नहीं करता था क्योंकि एक तो उसका कजन था, दूसरे उम्र में काफी बड़ा था, मगर ये उसको मुसलसल फोन करती रही। जब वो उसको डांटता तो कहती मैं सिर्फ आपसे बात करती हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं। और ये बात बिल्कुल गलत थी। दोनों तकरीबन एक साल तक इसी तरह फोन पर बातें करते रहे। एक फैमिली के होने के बावजूद एक दूसरे के घरों में बहुत आना जाना नहीं था, इसलिए यह टेलीफोन की दोस्ती छुपी रही। अब इस लड़के के दिल में भी लड़की के लिए जज्बात थे और ये मामला सिर्फ बात करने की हद तक रहा। इन्हीं दिनों उस लड़के के भाई की शादी की बात चली और उसके भाई का रिश्ता इसी लड़की से तय हुआ। सब कुछ इतना जल्दी और अचानक हुआ कि वो लड़की इनकार न कर सकी, क्योंकि उसके घर वाले फैसला कर चुके थे और जिस वजह से वो इनकार कर रही थी वो वजह वो बता नहीं सकती थी। दूसरी तरफ लड़के की तरफ भी यही मामला था। उसको भाई की मंगनी का तब पता चला जब मामला तय हो चुके और अब इनकार नहीं हो सकता था। आज वो लड़की उसी लड़के की भाभी है। ये सारी बातें मुझे उसी लड़की ने सुनाई हैं। वो इतनी शर्मिंदा है अपनी इस गलती पर कि दिन रात का गिल्ट उसके अंदर है। उसके शौहर अच्छे हैं मगर दिन रात गिल्ट में रहती है कि वो उन्हें धोखा दे रही है। शादी से पहले इन्हीं के भाई से इन्वॉल्व रह चुकी है। इस लड़के का भी यही हाल है कि भाई से आंख नहीं मिला सकता। उसने अपनी पोस्टिंग दूसरे शहर करवा ली, बहुत कम घर जाता है। देखा जाए तो सारी जिंदगी उसके सर पर एहसास जुर्म की ये तलवार लटकती रहेगी जो उसको कभी खुश नहीं होने देगी। यानी गलत काम करने का नतीजा कभी अच्छा नहीं हो सकता। आप कीकर बो के आम कैसे ले सकते हैं? गलत काम करेंगे तो किसी न किसी वक्त उसका खमियाजा किसी शक्ल में तो सामने आएगा। अगर दुनिया वालों से वो ऐब छुपा भी रहे तो जो अंदर का जमीर है वो ऐसे कचोके लगाता है कि इंसान को चैन नहीं लेने देता। इसलिए कभी भी अपने आप को छोटी मोटी तावीलों से मुतमईन करके ऐसे गलत काम में मत उलझाएं। इंटरनेट के बारे में किसी ने पूछा था कि उस पर चैट और फिर उसके नतीजे में शादी और ताल्लुकात जो है वो कैसे हैं। तो यहाँ किसी ने एक अखबार की कटिंग भेजी है जिसमें एक वाकया दर्ज है, आप भी सुन लीजिए। लिखते हैं कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया की एक ऐसी तफरीही पेशकश है कि जिससे आज की नस्ल कुछ जरूरत से ज्यादा ही लुत्फंदोज हो रही है। यही वजह है कि इससे मुतल्लिक कुछ ऐसे वाकयात भी सामने आ रहे हैं जो इंतहाई तकलीफ दे हैं। कुछ इसी हवाले से एक सबक आमूज वाकया। ये कहती है कि मैं कॉलेज से आकर तकरीबन हर रोज ही अपने जाती कंप्यूटर पर कुछ वक्त गुजारा करती, किसी काम की गर्ज से नहीं बल्कि नेट के इस्तेमाल की बुनियादी वजह मेरे वो लातादाद मुल्की और गैर मुल्की दोस्त थे जो मैंने चैटिंग के जरिए बना रखे थे। इन्हीं में से एक लड़का जिसका नाम विकी वकार था, शुरू शुरू में तो मुझे वक्त गुजारी का महज एक जरिया लगा।

तो आप कुछ रात रहे से अपने घर वालों को ले निकलें और खुद उनके पीछे चलें, और आप में से कोई शख्स पीछे मुड़कर न देखे, और जहां आपको हुक्म हो वहां चले जाइए।

0: मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए।
1: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा,
0: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा, बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा,
1: काफिर मुसलमान हो गए।
0: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम।

0: इस्लाम जिंदा,
1: इस्लाम जिंदा हो गए।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बरादरान इस्लाम, हक तआला शानहू ने कुरान हकीम में अपने अंबिया अलैहिस्सलाम के हालात बयान फरमाए। इन हजरात किराम ने अल्लाह के पैगाम को उसके बंदों तक पहुंचाने की खातिर किस कदर जद्दोजहद की, किस कदर तकालीफ बर्दाश्त की और किस तरह इस्तिकामत से फरीदा रिसालत को अदा किया। हजरात अंबिया के ईमान अफरोज किस्से यकीनन हमारे लिए नसीहत का सामान है। कुरान हकीम ने यह भी बताया कि किस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी कुदरत कामिला से अंबिया और उनके मुत्तबईन को कामयाब व कामरान फरमाया और उनके मुआनिदीन और दुश्मनों को तबाह व बर्बाद कर दिया। बेशक ये सब कुछ अहले अक्ल व दानिश के लिए बाएस इबरत है, ताकि अल्लाह के बंदे उसके अहकाम का पास करें और उसकी हदूद की हिफाजत करें, क्योंकि अल्लाह की हदूद को तोड़ने वाले यकीनन गालिब हैं। सामईन किराम, हम कसस

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: औज़ु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामने नाज़रीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। सामने, आपको पता है कि गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और लोग जो हैं वो बाहर निकलना चाहते हैं, घरों में बैठकर बंदे तंग पड़ जाते हैं, फैमिलीज तंग पड़ जाती हैं। लोकल सियासतदान हैं वो तो अपना काम करते रहते हैं, बातें भी करते रहते हैं, सियासी जमातों में आते जाते भी रहते हैं, लेकिन जो हमारी ख्वातीन होती हैं, फैमिली वाइज जो बच्चे होते हैं, बेटियां होती हैं, तो उन्हें भी तो आउटिंग चाहिए, उनके लिए भी तो कोई जगह होनी चाहिए, उन्हें भी तो एक दूसरे के मिलने के लिए कोई हिसाब किताब जो है वो उनका होना चाहिए। वो करते हैं सारे, इसी तरह अपना अपना निज़ाम चलता रहता है। तो आपको पता है कि गर्मियों के महीने में आमों का बड़ा ज़ोर होता है, आप पाकिस्तान से लेकर दुनिया में जहाँ जहाँ ये आम पैदा होते हैं उसके फेस्टिवल होते हैं, और ख़ासकर चंद सालों से डेनमार्क में भी ये फेस्टिवल होते हैं, और ख़ासकर ब्रांडबी में जो सियासत का ज़ोर है, कोपेनहेगन से टूटा, एडमिनिस्ट्रेशन में मुंतकिल हुआ और उसके बाद ब्रांडबी में मुंतकिल हुआ, तो ये जो समर फेस्ट होती है जिसे हम कहते हैं, मेला कहते हैं, पार्टियां कहते हैं, तो ये बड़े ज़ोर शोर से होते हैं। तो 27 जून को ये एक ब्रांडबी में जो है वो समर फेस्ट होने जा रहा है, जिसे मैंगो के नाम से, स्टॉल के नाम से जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोग स्टॉल लगाते हैं, अपनी जगह के लिए रिज़र्व करते हैं, स्टॉल अपना लगाते हैं, खाना बेचते हैं। तो पहले बहुत सारी चीज़ें होती थी कि जब आप स्टॉल लगाते हैं, सफाई का निज़ाम होता है, सफाई या मुफ्त तो नहीं होती, हर काम जो है वो पैसे से होता है, और आपको पता है अच्छी खासी जो है वो सैलरी मिलती देनी पड़ती है जो बदमस्त करने वाले होते हैं। स्पॉन्सर कितने होते हैं? स्पॉन्सर बहुत कम लोग होते हैं, हमारा रिवाज ही नहीं है। कोई स्टॉल लगाता है तो वो मिनिमम कीमत जो है उस पर लगाते हैं, तो इनकम तो स्टॉल लगाने वाले की होती है, स्टॉल देने वाले की इनकम तो नहीं होती। तो हमने कहा क्यों ना ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दें। तो वहीद साहब इस वक्त तो जानी पहचानी शख्सियत हैं, ये किसी तारफ़ के मुताज नहीं है, पूरा कोपेनहेगन डेनमार्क इनको जानता है, अपने काम के लिहाज से भी, मस्जिद के हवाले से भी। तो वहीद साहब, एक बार फिर आपको हम अदारा आपकी आवाज़ पर खुश आमदीद कहते हैं, काफ़ी अरसा बाद।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे जो है ना फ़ोन किया और इसमें दावत दी, क्योंकि आपकी बातें मैंने सुनी है। मैं काफ़ी अरसे से कम्यूनिटी में, इसमें जो ब्रॉन्वी में रैश पजीर हूँ, तो जब मैं मस्जिद में बैठता हूँ, मस्जिद में दोस्त आते हैं, तो मुझे ये एहसास हुआ कि देखो हमारे बच्चे हैं, हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, तो इनको भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इस तरह का माहौल मिलना चाहिए जहाँ ये एक दूसरे से मुलाकात कर सकें और उनसे मिल सकें। तो ये 2-3 साल से मेरे दिन में आया हुआ था। तो पिछले साल मैंने बेटे को कहा, मैंने कहा यार चलो मैं तो आज तक मैं करता रहा हूँ जो मुझसे हो सका, क्यों कि मैंने साथ साथ काम भी करना होता था, पीछे भी फैमिली है उनको भी सपोर्ट करना था, लेकिन मैं तुम लोग तो इधर के जो है बोन हो, इधर के पैदाइश तुम्हारी है, डैनिश है, तुम कोशिश करो कि इसको किसी अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करो। तो मैं उस बेटे का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने इतनी मेहनत, पिछले साल उसने शुरू किया था और उसने मुझे बताए बिना कम से कम 25-30 हज़ार जेब से लगाया, जनरेटर का बंदोबस्त किया, ऊपर से केबलें ली, ये तारें जो हैं कंटेक्ट के, और जाके इस तरह उसने मुझे बाद में बताया कि अबू मैंने इतना खर्च किया। मैं चलो ये कम्युनिटी के लिए, उसमें हमें फायदा ये हुआ कि जितने भी लोग आए ना उन्होंने ये जब ये फेस्टिवल में शिरकत की, तो हमारा जो है सारे का सारा जो है ना वो पूरा हो गया। जो मैं नुकसान नहीं समझता, मैं कहता हूँ कि मैंने अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए जो करना है

0: ये हम कर रहे हैं ब्रॉनबी स्टान में, छिपे फा के नंबर दो उधर लांगबिया हेलन के साथ फुटबॉल ग्राउंड में मिला है कम्यून की तरफ से, उसकी कोई कास्ट नहीं है। लेकिन जो हमने रखना है ना गाय के लिए, सफाई के लिए लोग रखने हैं, और जो जो के मोबाइल टॉयलेट लेनी है, और कुछ चीजें जो है ना कि टेबल लेने हैं देने हैं, जितने जिसने स्टॉल लगाना है। तो इस तरह हमने रखा है कि जो पहले 5-10 है उनको हमने 2,000 रखा है, जो पीछे है उनको 1,500 करोड़ रखा है। वो इसलिए क्यों कि अखराजात इतने आ जाते हैं जब हमने जाना सबको हायर करना। तो राय साहब ये जाके अपना आमों का जो है कि आमों का लगा रहे हैं, देसी फूड स्टोर वाले तारक साहब लगा रहे हैं। तो अगर और कोई दोस्त लगाना चाहता है तो मेरे साथ या उधर लिखा हुआ टेलीफोन नंबर उस पर रब्ता कर सकता है। अभी भी चांस है क्योंकि ये 27 तारीख अभी दूर है।
1: तो जो सब आपने
0: तो
1: फुटबॉल का ग्राउंड लिया, वहाँ तो अच्छी खासी तादाद में लोग आ सकते हैं। पार्किंग का निज़ाम जो है ठीक है, लोग बाहर से जाएंगे, ज़ाहिर है फैमिली की शक्ल में जाएंगे, वो लोग आते जाते रहते हैं।
0: बिल्कुल राय साहब, पार्किंग का कोई मसला नहीं है उधर, क्योंकि हमने पिछली दफा भी जो है कि बाहर खड़े किए हुए थे ताकि नेबर को या जो है हमसायों को तकलीफ ना हो। तो दोस्त आए चाहे कोपनर से आए चाहे दूर से आए, पार्किंग का उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी।
1: क्योंकि ब्रॉनबी से भी लोग काफी तादाद में आपके पास आएंगे और दूसरे शहरों से भी लोग आएंगे।
0: इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि राय साहब आपका मैं बहुत फिर दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इन्फॉर्मेशन के लिए आप ये कर रहे हैं प्रोग्राम। मेरी कोशिश रहेगी कि इससे भी अच्छा साथ मिल के ना अपनी जो है मस्जिद की कमेटी, पहले हम मस्जिद की तरफ से करते थे लेकिन इस दफा हम पीछे हो गए हैं, है साथ ही लेकिन मस्जिद के जो है ना वो सिर्फ है कि बच्चों को आगे कर रहे हैं, क्योंकि यंग को कि यंग इसमें आए, क्योंकि हम बूढ़े जो है ना कितनी देर चलेंगे। तो यंग को गाइड करेंगे और कोशिश करेंगे इससे अच्छे से अच्छा ग्राउंड, अगर हमें पार्किंग की प्रॉब्लम भी इस दफा होती है हम किसी थोड़ी सी और जगह पे लेकर जो है ना जहाँ पार्किंग जितना ग्राउंड हमें मिले इतनी हमें पार्किंग मिले, यही कोशिश हमारी।
1: जो सब देखे ना, आपके पास तो अभी सिटी काउंसलर भी हैं, अपना जो है डिप्टी मेयर भी हैं, मौजूदा भी सबका भी, तो अभी भी थोड़ा टाइम है। तो कम्यून वालों का क्या काम होता है? कम्यून वाले तो यही सहूलियात लेकर आपको देते हैं।
0: राय साहब आपने फिर वो दुखती राह पे हाथ रख दिया है। मैं आपको वो क्योंकि देखो जो मैं एक तो एक मुझे बुरी आदत है कि मैं झूठ नहीं बोलता, किसी को
1: और
0: तकलीफ हो
1: बोलना भी नहीं चाहिए, अच्छी आदत है, बुरी
0: नहीं
1: आदत
0: मैं
1: नहीं
0: ना
1: है।
0: नहीं मैं बच्चों को भी मैंने मुझे सिखाया हुआ कि झूठ नहीं बोलना, अगर कुछ कर सकते हो तो करो। लेकिन है कि मादरस के साथ हमें आज तक ब्रॉनबी स्टैंड में किसी तरफ से भी हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला। जो हमारे जो है ना आज तक जो काउंसलर आए हैं डिप्टी मेयर आए हैं उन्होंने कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं किया ब्रॉनबी स्टैंड में। मैं इस चीज का गवाह हूँ, मैं सामने बैठ के भी बात करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि हम जो जो अधीर कर रहा है वो बाहर कम्यून में नहीं आ सका ना, कोई बात नहीं है, लेकिन हमने पीछे नहीं हटना, हमने कोशिश करनी है अपनी कम्युनिटी के लिए, खास करके पाकिस्तानी नहीं है पूरी ब्रॉनबी के लिए, उसमें डैनिश भी हैं तुर्की भी हैं, हमने एक रखा है इसके नाम इसको दिया हुआ है कि ब्रॉनबी फेस्टिवल। तो हमें कोशिश हमारी कोशिश है कि ठीक है वो कर रहे होंगे लेकिन उन्हें क्या मजबूरी है ये मुझे नहीं पता, लेकिन जब तक मैं कोशिश की है किसी किस्म की भी इनसे बात की है बस वो यही है कि जी ये कर देंगे वो कर देंगे। तो काफी चीजें हैं राय साहब वो जो जो जो इनके करने वाली है वो ये कर नहीं रहे।
1: जो सब ये तो कम्युनिटी का काम है, मैं एज ए कम्युनिटी फोरम चेयरमैन भी बात कहूँगा कि ये पब्लिक का काम है, ये जो प्रोग्राम हो रहा है लोगों को सहूलियात चाहिए, कम्यून का काम है, ब्रॉन्डवी कम्यून का काम है। ये पार्किंग का ज़ाहिर कानून कायदे में वो बड़ी पावर होती है कम्यून्स के पास, जो पार्किंग का एक्स्ट्रा जगह भी होती है, वो कुछ टाइम के लिए वो पार्किंग दे देते हैं। लेकिन आपका जो टाइम है वो गालबन जो है वो 10 बजे अपना क्या नाम है 12 बजे से लेकर 9 बजे तक, रात 9 बजे तक तकरीबन 9 घंटे हैं। तो 9 घंटों में
0: जी
1: लोग आते भी हैं जाते भी हैं, तो मुश्किल तो वहाँ कोई नहीं रहता लेकिन लोग आते जाते रहते हैं। तो पार्किंग की सहूलत होगी तो सहूलियात होंगी तो लोगों को आसानी होगी जाते वक्त।
0: राय साहब ये तो आपने बहुत अच्छी बात की ना, क्योंकि देखो लोग ये आने जाने के लिए तो ठीक है उनके लिए, लेकिन पार्किंग जी जो है ना वो प्रॉब्लम है। मैं नहीं ये कहता कि नहीं है प्रॉब्लम, क्यों कि हम वो मसलन के ब्रॉनबी के बिल्कुल अंदर है सेंटर में ये मेला लगा रहे हैं। तो कोशिश जो है ना जो हम कर रहे हैं ठीक है, जिनके जो हमारे जो है सांसददान है इधर ब्रॉनबी में उनको चाहिए था कि ये हमसे हम ना करते कि वो करते हमारे लिए, कि ताकि जी कम्युनिटी को फायदा हो, उन्होंने वोट दिए हुए हैं कि

0: उनको जाके सहूलतें कोई मुहैया करें, किसी ना किसी तरीके से किसी दूसरी तंजीम के साथ मिल के बरौनवी में साथ मिला के उनको कहें भाई आपने एक दिया, हम दो करके देते हैं आपको। इसका क्या कहते हैं कि अगस्त में जो है या सितंबर में आप लोगों को लेकर देते हैं किसी इससे अच्छी जगह पे। ये इनका काम बनता है ना। तो रहा पार्किंग का, आप तो ये कहते हैं कि हमें पार्किंग मस्जिद की, मैं आप कितने सालों से हूँ, 2017 से मस्जिद की जो है ना इंतजामिया हूँ एज ए सदर। हमें तकरीबन हर फ्राइडे को ये प्रॉब्लम होती है और हम कम्यून के साथ मेरी दो तीन मीटिंगें हो चुकी हैं मेरी पर्सनली जो है एज ए फोरमैन। तो मैंने उन्हें कहा कि हमें ये प्रॉब्लम है इधर कि आपके जो है कि नेबर जो ठीक है आपको शिकायत लगाते हैं कि ये पार्किंग हमारी पार्किंग इस्तेमाल होती है, आप इधर आके इधर मेरे पास आए आकर देखें। और मैं बुलाया भी उन्हें और आए भी हैं। मैंने कहा ये देखो कितनी गाड़ियां नंबर प्लेट के बगैर पार्क हुई हैं, मैं किसके पास शिकायत लेकर जाऊं। शाह साहब के साथ बात हुई, शाह साहब कहते हैं मैं कम्यून से बात कर रहा हूँ। अरफान गिलानी से भी बात हुई है कि जी हमें ये प्रॉब्लम है जो है ना पार्किंग की, मस्जिद की खास करके, जब क्योंकि हमारी वो क्या कहें कि 10 पार्किंग है जो जो नेबर ने हमारे ने वर्कशॉप वाले ने संभाली हुई है 24 घंटे। ये वो नहीं मुझे करा के दे सके मस्जिद की, वो पार्किंग मुझे नहीं सही करा के दे सके, 10 गाड़ियां जो बाहर खड़ी हो सकती है हमारी वो नहीं कर सकते। तो ये तो मेले का तो बहुत बड़ा इशू है। इधर तो कम से कम पिछली दफा 3-4 हजार लोग आए थे।
1: 3-4 हजार लोग बड़ी तादाद है। तो मैं अब आनेर अपील करता हूँ एज ए कम्युनिटी फोरम चेयरमैन, डिप्टी मेयर साहब हैं और दूसरे लोग जो कम्यून के मेंबर्स हैं ब्रांडबी में, ब्रांडबी की जो शहरी हैं, एक तो वो खुद कानून कायदे का एहतराम करें, जो नज़दीक हैं उन्हें तो गाड़ी ले जानी नहीं चाहिए, लेकिन जो लोग बाहर से आते हैं वो ज़ाहिर है उन्होंने गाड़ी पर ही आना है, बाहर से वो पहुँच नहीं सकते, तो उनके लिए सहूलियात होनी चाहिए। तो ये कम्यून का काम है जी अपना, जो सब ये आप नेकी का काम कर रहे हैं तो ये इन सबको मिलजुल कर करना, ये कोई एहसान नहीं करेंगे। आपने कौन सा इलेक्शन लड़ना है?
0: नहीं, मैंने इलेक्शन ना लड़ा ना लड़ूंगा, क्योंकि मैं राय साहब मैं अपने आप को इस काबिल समझते नहीं हूँ। क्यों कि उधर जाकर बैठना खामोशी से अच्छा है कि मैं मस्जिद का काम कर रहा हूँ वो ठीक है, जाकर मैं उधर टेबल पे बैठ जाऊँ कोई पोस्ट लेके और बात ना करूँ, तो उससे अच्छा है कि मैं पीछे ही रहूँ।
1: मैं इरफान गिलानी साहब, आप अगर सुन रहे हैं प्रोग्राम, अगर आपको इतला मिल रही है, शाह साहब अगर आप सुन रहे हैं आपको इतला मिल रही है, या बाकी लोग जो सुन रहे हैं जिम्मेदार हैं, ये पब्लिक के लिए एक प्रोग्राम हो रहा है, कम्यून में एक लीगल इजाज़त लेकर ये अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इसमें जो है सबको अपना अपना हिस्सा डालना चाहिए, अपने शहरियों की सहूलियत के लिए, सहूलियात के लिए शहरियों को भी एहतराम करना चाहिए कि जब पार्किंग करें तो कानून कायदे के मुताबिक पार्किंग करें, जो कमेटी है जो भी लोग ये कर रहे हैं उनके साथ तावन करें। तो हम तो इसकी हमायत करते हैं जी, ये जमहूरी मुल्क में अगर जमहूरी आपको राइट्स मिलते हैं तो।
0: राय साहब देखो जो दूर से आ रहे हैं ना, हम कोशिश करते हैं कि उनको कोशिश, हमारी कोशिश है कि हमने एक दो आदमी खड़े किए होते हैं और वो मैं उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, वो फ्री विली जो है ना वो खड़े होते हैं और लोगों को गाइड करते हैं प्लीज इधर नहीं उधर करें, और लोग सुनते भी हैं मानते भी हैं। तो ब्रॉनबी के अपने जो है ना वो तकरीबन इसलिए ना हमें थोड़ा सा बाहर मिला था 4 जुलाई का, तो वो फिर हमें इतला मिली के जो कार्य अलबस रोड में उन्होंने फोन किया कि भाई हमने आपसे पहले जो है कि कम्यून से जगह ली हुई है, आप कोई और दिन जाके रख लें। फिर हमने सोचा कि वो 19 को भी हो रहा है अपना अंसर साहब करा रहे हैं, डीपैक वाले करा रहे हैं, तो ऐसा करें कि हमने इसलिए मजबूरी में 27 को लेकर आए हैं क्योंकि जगह जो है जगह की वजह से हमने फिर चेंज करना पड़ा, हमें सेंटर में आना पड़ा, वरना हमारी कोशिश थी कि थोड़ा सा बाहर ले और हमें मिल भी गई थी 4 तारीख को जो है ना वो बड़ी जगह, और पार्किंग भी कम से कम 3-4 हजार गाड़ी की पार्किंग मिली थी क्योंकि वो फुटबॉल ग्राउंड के साथ स्टेडियम के साथ थी, ब्रॉनबी स्टेडियम के साथ।
1: चलें जी,
0: तो इंशाल्लाह
1: कोशिश आप अपनी जारी रखें, जहाँ से हम भी एनवायरमेंट जो है मालूमात देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एक समर फेस्ट है, ये कोई बिजनेस का कारोबार का तो ये फेस्ट होता ही नहीं है, ये तो एक आम पब्लिक का है जो है, वो लोग आते हैं स्टॉल लगाते हैं, किसी की मर्जी या खरीदें किसी की मर्जी ना खरीदें, लेकिन आप लोग तो सहूलत दे रहे हैं, आप लोग तो ना कोई टिकट लगा रहे हैं आप लोग?
0: नहीं भाई, राय साहब ना लगाया ना लगाएंगे ये, क्योंकि हम इस दफा भी इसलिए लगाया खाने वाले के स्टॉल को लगाया इसलिए कि पिछली दफा हमने इनको फ्री दिया था, लेकिन जब मैंने चेक किया जाकर खुद और हमारी जो कमेटी है मस्जिद की उसे चेक किया तो उन्होंने रेट वो हाई रखे हुए थे, फिर हमें थोड़ा सा अफसोस हुआ कि हमने इनसे लिया भी कुछ नहीं है। जो लोग आ रहे हैं, देखो हर आदमी के कुछ लोग होते हैं कि किसी के एक बच्चा है किसी के 4 बच्चे हैं, तो देखिए आप हर आदमी की जेब जांच नहीं देती कि 50,000 का वो एक समोसा या 50 करोड़ का एक समोसा लें या 4 पकौड़े लें, तो वो उनके उनके जेब जांच नहीं देती जिनके 4 बच्चे हैं। कोशिश करनी चाहिए इनको कि उनसे उनको कुछ गुंजाइश दे ताकि हर आदमी को जाके सहूलत मिले के खरीदने की
1: जी। सहूलियात रखनी चाहिए बच्चों के फैमिली के लिए रखनी चाहिए, पेंशनर्स के लिए रखनी चाहिए। चले एक आदमी की जब लेता है तो वो बोझ इतना नहीं होता, लेकिन छः बंदे या पांच बंदे लेते हैं तो वो अच्छी खासी रकम बढ़ जाती है। आपका पॉइंट वैलिड है
0: क्योंकि क्योंकि ये जो है ना आप क्या देखें हम एंट्री का जो है ना एंट्री का इंशाल्लाह जो है ना जब तक मेरी जिंदगी एंट्री इंशाल्लाह फ्री होगी और बच्चों के लिए। पिछली दफा भी हमने अपनी जेब से 8,000 करोड़ लगाया था, ये होपे फूल लेकर आए थे तो वो फ्री रखे हुए थे। इस दफा भी इंशाल्लाह कोशिश है कि उससे ज्यादा लेकर आएंगे ताकि जो फैमिली वाले है ना वो
1: मतलब बच्चों के खेलने के लिए जगह जो बनाएंगे
0: बनाएंगे वो फ्री होगी, उसमें कोई किसी के किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा।
1: ज़बरदस्त, तो मतलब है कि ये आप जो काम कर रहे हैं ये फ्री वाली सारी आपकी कमेटी कर रही है, आपकी टीम कर रही है, बाकी जो स्टॉल वाले हैं वो उनका अपना काम है।
0: जी हम जो है ना हम फ्री वाली कर रहे हैं और अपनी कम्युनिटी के लिए इसमें सबको हम दावत देते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि ब्राउन भी क्यों, जो जहाँ भी लोग रह रहे हैं आना चाहते हैं वेलकम, और कोई किसी किस्म की जो उन्हें किसी किस्म की जो है ना एंट्री का कोई एक आना भी नहीं देना, किसी ने एक रोन भी नहीं लगेगा किसी का।
1: तो जो सब अगर थोड़ी सी दूर पार्किंग की जाए लोगों को 3-4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट चल के जाना पड़े तो क्यों कोई और जगह होती है साथ?
0: जगह जगह काफी है लेकिन वो तो सेंटर हमारे पास है ना, ब्रोबी सेंटर पास है तो ब्रोबी सेंटर में जो है कि 3 घंटे की पार्किंग है एक तरफ, एक दो पार्किंग फ्री है और 3 पार्किंग में जो है 3 घंटे की जो है पार्किंग है। अगर लोग सेंटर में पार्क करना उधर काफी जगह पार्किंग की जो है ना बनाई हुई है कम्यून ने, तो मैं आप
1: वहां से चलकर कितना टाइम लगता है?
0: उधर से अगर चल के आए ना तो 10 मिनट लगते हैं,
1: कुछ भी नहीं है।
0: तो मैं आपके जाके रेडियो के तफसल से मैं ये कहूंगा सब से अपील करूंगा कि अगर वो ब्रॉन्बी सेंटर में पार्क करके जाए अपनी गाड़ी का टाइम लगा जाए उधर तो 3 घंटे वो आराम से उधर रह सकते हैं। और अगर फ्री मिल जाए दोनों तरफ है, सेंटर के दोनों तरफ पार्किंग है, एक तरफ फ्री पार्किंग है।
1: और दूसरा ये भी कह दें कि जो लोग नजदीक रहते हैं वो अपनी गाड़ियां अपनी जगह पे खड़ी रहने दें।
0: प्लीज राय साहब ये तो उनको खुद सोचना चाहिए ना, जो मसल मसाल के तौर पर एलबीए फाक है वो एलबीए पे फाक के साथ है या छुपे फाक के साथ है बिल्कुल, या स्टैंड प्लेन है खीसम फाक है स्टैंड फाक है, इन लोगों को तो पैदल इनका तो वैसे ही 5-5 या 10 मिनट लगते हैं घर से निकलते हुए।
1: लेकिन जो साहब लोगों ने फिर 5-5 डब्बे भी तो उठा के जाने हैं ना।
0: अब वो है वो पिछली दफा कुछ लोगों को मैं खुद
1: बच्चों की रेडी साथ ले जाए ना।
0: जी यार आप बच्चों की जो है पान और साथ हो ना तो उसमें रख लें या किसी दोस्त के साथ आ रहे हैं उसके साथ रख ले जाए।
1: हाल तो हर चीज का निकल आता है लेकिन ये सोचना पड़ता है।
0: तो इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, देखो हमारी कम्युनिटी को कुछ थोड़ा सा ख्याल आ जाए कि चलो जी पार्किंग जो है ना जो नजदीक से आ रहे हैं खास करके ये जो हमारे पार्किंग जितने भी है ना अरबिया फाक से लेके जो क्या कहते हैं हेरियन फाक तक जो है ना ये तो कोशिश करें ना कि पैदल आ जाए।
1: चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। आखिर में आप टाइम बताना चाहे बता दें, 2 मिनट है आपने, ये आप नहीं बोल रहे उसके बाद हम प्रोग्राम को खत्म करते हैं।
0: जी हमने रखा हुआ है 2:12 से लेके 9 बजे तक ये टाइम है, तो इंशाल्लाह हम मैं तो उस दर तकरीबन 8 बजे चला जाऊंगा और देखूंगा कि कैसे इन्होंने जाना सब ने जो कि किस तरीके से लगाए हैं स्टॉल लगाए हैं और क्या कर रहे हैं। तो कोशिश मेरी होगी कि मैं अपनी सारी कम्युनिटी को जो जितने भी सुन रहे हैं उनको जो है कि वेलकम करता हूं कि आए आकर एंजॉय करें, क्यों कि हर वीकेंड को बच्चे चाहते हैं कहीं ना कहीं जाने के लिए, और हर जो एक तो दूसरा एक जंग की वजह से आदमी आगे पीछे जा भी नहीं सकता, और जो हर आदमी के पास ये भी नहीं है कि वो जाकर पाकिस्तान या तुर्की या आगे पीछे जाए या पाकिस्तान में भी बच्चों को लेकर जाए। उधर भी जो है काफी मैं खुद लेकर गया था अपने पोती पोतों को तो मुझे पता है कि क्या उधर खर्चा आता है। तो इस ये सब कुछ सोच के मैंने बेटे से कहा दीर से के और तैयब भाई से कि तुम दोनों आगे हो और एक कोशिश करके लगाओ ताकि बच्चों को जो है ना और फैमिलियों को थोड़ी सी सहूलत मिले और वो आकर एंजॉय करें। तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, राज साहब गफूर का दिल से शुक्रिया अदा हूँ कि जिन्होंने मुझे फोन किया और इसमें दावत दी। राय साहब अल्लाह हाफिज।
1: सामने नाज़रीन ये थे चौधरी वहीद साहब जिनकी आपने बात सुनी, उन्होंने जो कुछ कहा वो आपने सुना, आपको मालूमात मिली है। चूंकि ये मालूमात का लोकल प्रोग्राम है, ये लोकल इन्फॉर्मेशन थी, चूंकि हर कम्यून से लोग जाते हैं स्पेशली कोपेनहेगन से फ्रेडरिक्सबर्ग से और जो साथ साथ जो चीज़ें लगती हैं कम्यूने वहाँ से अल्बर्टसन से भी लोग बहुत जाते हैं, तो इसलिए जाते वक्त आप लोगों को खुद भी कानून का एहतराम करना चाहिए, میں علماء سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ جمعے کے جب خطابات آپ کرتے ہیں تو وہاں بھی قانون قاعدے کی بات کیا کریں، ڈسپلن کی بات ان کو بتایا کریں کہ اس ملک نے ہمیں بہت ساری سہولیات دی ہیں، اس نے ہمیں بہت ساری جمہوری رائٹس دیے ہیں، تو جب ہم کو حقوق ملے ہوئے ہیں تو ہمیں بھی ان کا احترام کرنا چاہیے۔ سامعین ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا۔
2: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान। सामने नाज़रीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त जो है वो धूप और गर्मी अपने जोबन पर है, सियासत जो है वो छुट्टियों पर है, लोग जो है वो सियासतदान छुट्टियों पर चले गए हैं और जो बाकी पार्टियों में वो भी छुट्टियों में हैं, तो लेकिन कुछ लोग जो है अपनी कम्युनिटी को, अपने लोगों को मालूमात देने के लिए फिर भी अपना कीमती टाइम निकालते हैं और वो शेयर करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। इस वक्त तजिया निगार अदनान अली अमीन जो हमेशा की तरह आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ भी देते हैं। तो अदनान, एक बार फिर आपको अदारा आपकी आवाज़ पर खुश आमदीद कहते हैं।
2: वालेकुम अस्सलाम राजा साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। आप कैसे हैं राजा साहब?
1: अल्लाह का एहसान है। कैसा है मौसम? तो आज माशाल्लाह बहुत गर्म है, सियासत तो ठंडी हो चुकी है चूंकि छुट्टियों पे चली गई है।
2: हाँ राजा साहब, ये तो है, मौसम कहते हैं समर थोड़ा आगे, यही क्या कहते हैं, और सियासत जो है वो तो अब थोड़ी बहुत ठंडी हो जाएगी। तीन कह रहे हैं 1 मंथ, तकरीबन जुलाई का मंथ और जून का एंड है, तो अगस्त में जाके शुरू होगा। मगर अब कह रहे मेले का सीजन आ गया, हर हफ्ते मेले लगने हैं।
1: हाँ, 12 हफ्ते मेले लगने हैं और एक दूसरे से डेटें भी पूछी जा रही हैं।
2: हाँ जी, ये तो है कि बंदा कह सकते है कि 27 जून से लेके 19 जुलाई तक सारे वीकेंड बुक हो गए हैं, तो अब देखते हैं कि किसका पारा पारी होता है।
1: लेकिन आप क्या समझते हैं कि मेले खिदमत खल्क के लिए होते हैं या कि इनकम का जरिया होता है?
2: दरअसल इसमें तो दो राय, देखें, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि मेले का ये होना चाहिए कि लोगों को जजमेंट मिले और लोग खुश हों, लोग इकट्ठे हों और इससे अपने अपना जो कल्चर है उसका पता चले। और समर में तो यही बंदा कह सकता है कि हम जो पाकिस्तान की एक खूबसूरत चीज़ है मैंगो, उस पर मेले लगने लग पड़े। जैसे आपको मालूम है, हम व्यूअर्स को बता देते हैं, 27 जून को एक अबरूंदी में, 4 को है एक एब्जलोन में और 11 को भी एक एब्जलोन में है, और सब फिर जो 19 को डी पैक बड़े लगा रहे हैं एक हॉल के अंदर, शादी हॉल के अंदर, तो देखते हैं अब किसका। इसमें तो यही बंदा कह सकता है कि लोगों को शो करे और इस पे ये तो ब्रेकिंग मेरे पास तो मैंने नहीं अभी तक देखा, मगर मुझे कल ही पता चला था किसी से, क्योंकि मेरा पार्टिसिपेट होता हूँ एक में, कि ये टैक्स वालों ने कुछ नज़र रखी हुई है इस पे, तो मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों नज़र रखी हुई है इस पे, उनको प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, मगर देखते हैं अब इसका क्या।
1: लेकिन टैक्स की आपने बात की है, तो टैक्स ने किस चीज़ पर नज़र रखी हुई है? हालांकि लोग वहाँ तो जाते हैं, वो कोई टिकट वहाँ नहीं होता, लोग फ्री विली लगाते हैं, स्टॉल लगाते हैं और उन्होंने पेमेंट पे जो है स्टॉल लिए होते हैं, ये तो कोई छुपी चीजें होती नहीं है।
2: दरअसल साहब, मेरे ख्याल से मसायद ये है कि मैं तो इस चीज का एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो इसलिए मैं इस पे बात तो नहीं कर सकता कि टैक्स लॉ क्या है, टैक्स का सिस्टम क्या है। मुझे बस ये पता है कि जो होता है ना, एक सर्टन इनकम होती है और टैक्स वालों की नजर हो तो पता नहीं वो क्यों उनकी नजर है, ये समझ रहे हैं कि लोग काफी पैसे कमा लेते हैं और उससे टैक्स नहीं दिया जाता, और क्या वजह है ये मुझे नहीं पता, मगर थोड़ा बहुत उनका नजर तो है इस पे। मगर मैं इंशाल्लाह ताला ये कह सकता हूँ कि अभी तो कुछ नहीं होगा, कुछ कपल ऑफ मंथ, क्योंकि अभी ये प्रायोरिटी नहीं है गवर्नमेंट की, मगर उनका हो सकता है यही हो कि इस पे से टैक्स नहीं जाता, तो इसलिए उन्होंने क्या कहते हैं नजर रखी हो, बाकी मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि इस और क्या वजह हो सकती है।
1: अदनान, देखें, छुट्टियां होती हैं, फैमिलीज को जो है वो उनकी भी बेचारियों की छुट्टियां होती है, उन्होंने भी किसी से मिलना जुलना होता है, बाहर जाना होता है, तो स्टॉल लगते हैं, रौनक लगती है। अब देखें, सबसे पहला जो प्रोग्राम अभी 27 को होने जा रहा है, तो उन्होंने कोई टिकट नहीं रखा हुआ, मैं किसी ने भी कोई टिकट नहीं रखा हुआ, लेकिन स्टॉल के लिए थोड़ी बहुत ही वो खर्चे के लिए होता है कि सफाई वगैरह का जो इंतज़ाम होता है। अब स्टॉल वालों को भी चाहिए ना कि इसको भी वो भी तो अपनी सर्विस देना, खाली इसी नीयत में ना रखे कि हमने स्टॉल लगाया है और इसमें हर तरह से जो है वो पैसे ही कमाने हैं।
2: नहीं राजा साहब, देखिए, हर एक की अपनी नीयत होती है कि हर आपका अपना क्या कहते हैं वेयर होता है कि लोगों ने कैसे करना है, جس چیز کے اندر میری کافی سالوں سے پارٹیسپیشن رہی ہے، اور میں نے پچھلے سال بھی جب یہ سمر فیسٹیول کرایا تھا مینگو کا اگست میں، تو ہمارا تو یہی تھا کہ لوگوں کو اکٹھا کرنا اور لوگوں کو کیا کہتے ہیں بتانا ہے کہ اس کے اندر کلچر ہی کیا کلچر ہے، اور کہ لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں، کیونکہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ لوگوں کا ہوتا ہے کہ عورتیں مرد اور یہ بڑے سارے مسائل ہوتے ہیں کہ ہم علیحدہ کرتے ہیں، اور یہ تو اس کو پھر ہم ایک نظر سے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ نہیں ہے اس طرح جیسے آپ دیکھ رہے ہیں رکھا رہے ہیں. 11 جولائی کو جب اس پر ہم کرنے کے کر رہے ہیں، جہاں پہ میں شاید اس سال معلوم نہیں ہے کہ میں اس میں ہوں گا کہ نہیں ہوں گا، کیونکہ مجھے ایک صبح ہی ایک دن کی انویٹیشن آئی ہے اسلو سے، وہاں بلایا گیا ہے پروگرام کے سلسلے میں، تو میں سوچ رہا ہوں کہ شاید وہاں چلے جاؤں، دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے. میں نے ان سے ریکویسٹ تو کی ہے کہ وہ 12 جولائی کو کر لیں، مطلب وہ پہ میرے کام کے ساتھ کلیش ہوتا ہے، تو پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. مگر میرا تو یہی ہے کہ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ کیا ہے، اور لوگوں کو اپنے کلچر کے بارے میں بتانا چاہیے، کیونکہ میں آپ کو ایک بار بتا دوں کہ اس سال پاکستانیوں کو تو کمپٹیشن بھی ملنا ہے، کیونکہ جو انڈین کمیونٹی ہے وہ بھی کرنے لگے ہیں اپنا انوینٹ بہت بڑا ہاؤس پلیس پہ. ابھی تک انہوں نے کنفرم نہیں کیا کیونکہ کوئی ٹیکنیکل ایشوز ہیں، تو سر ہمارا بھی بنتا ہے کہ ہم ان لوگوں کو بتائیں اور دیکھیں.
1: ان کی کوئی سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں نا ملک میں؟
2: نہیں، راجہ صاحب
1: ون ایجنڈے پہ اکٹھے ہوتے ہیں نا.
2: راجہ صاحب ان کا ایک بات میں کہوں گا کہ آج مجھے لگتا ہے میں ایک چیز کہوں گا کہ پاکستانی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا، ان کا ان کے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس سے بندے کو غور سے دیکھنا چاہیے. اور آپ دیکھیں گے، آپ نے بات ویسے صحیح کی، بڑی اچھی بات کی ہے کہ وہ ایک ہے. دیکھیں انہوں نے اپنا کتنا اسٹرانگ انفیکٹ رکھا ہوا ہے ڈینس گورنمنٹ پہ بھی، ڈینس کمیونٹی پہ بھی، ڈینس سوسائٹی پہ بھی، اور اسی لیے ان کے مسائل جو ہیں نا وہ کیا کہتے ہیں بڑی جلدی حائل بھی ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک خبر بتانا چاہتا ہوں کہ کل ہمارا جو ویلنگ منسٹر ہے اور انفارمیشن منسٹر ہے وہ ایک اسٹال پہ گیا ہوا تھا، اور میں سپیلتی اپنے دوست کے ساتھ وہاں سے گزرا، تو میں نے اس کو دیکھ لیا، تو وہ میرے دوست ٹینس دوست کے ساتھ اس کے بڑے اچھے تعلقات ہیں اور اس کو جانتا ہے، میں تو اس کو بہت سالوں کے بعد ملا ہوں، اس کو پہچاننے میں بھی تھوڑی مسئلہ پڑا ہوا تھا. تو میں نے اس سے بات 2 منٹ بات کی، میں نے کہا میں نے تم سے ٹائم لینا ہے، مجھے اتنے سال ممبر ہو گیا ہوں، میں تم سے ٹائم لے کے بات کرنا چاہتا ہوں، میں یہ 5-10 منٹ کی بات نہیں کرنا چاہتا. تو مجھے کہتا ہے مجھے پتا ہے کہ تم کون ہو، میں نے تمہیں پتا ہے مجھے، یہ بندے نے مجھے بتا دیا تم میرے پاس ٹائم لے کے آنا، تو تم کس چیز پہ بات ویسے کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا میں 3-4 چیزوں میں بات کرنا چاہتا ہوں، یہ جو آپ لوگوں نے اتنا سخت ٹریٹمنٹ شروع کیا ہوا ہے مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ میں ہوتے ہیں سوال کے پچی میں کیا فرق ہے. میں نے کہا ایسے لگ رہا ہے کہ آپ دونوں نے میچ شروع کیا ہوا ہے، یہ جیسے ہوتا ہے کہ 3-3 ہے تو آپ نے اس کو اس کے اوپر سے گول جانا ہے نا. تو وہ ہنس پڑا. تو دوسرا سوال میں نے اسے پوچھا، میں نے کہا مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ 2020 میں جب مچھیس جسپائب تھا انٹرنیشنل اور ریلین منسٹر، اس وقت بھی ہم نے پاکستان کی بات کی تھی کیٹیگری 5 کی، مسئلہ کیا ہے کہ پاکستان کیٹیگری 5 میں ہے. اس وقت تو پاکستان ماشاء اللہ اتنا بڑا میڈیٹ رول کر رہا ہے ایران اور یو ایس اے اور اسرائیل کی کانفلکٹ میں، تو ہم وائی آر وی ان دا 5 کیٹیگری؟ کہتا ہے وہ میں تمہیں بتا سکتا ہوں. میں نے کہا بتاؤ مجھے کیا ہے. کہتا ہے ایک آپ کی سوسائٹی کٹھی آتی ہے. میں نے کہا چلو گاڑی ختم کر دیتی. میں کہا میں اس کو کیا جواب دوں، میں نے کہا اس کو میں کیا جواب دوں. اس نے مجھ سے یہ پوچھا نا، کہتا ہے آپ کٹھے آ جائیں تو دیکھ لیتے ہیں پھر. میں نے کہا دیکھ بات بڑی اچھی کی ہے. یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے ان سکشوں میں اس طرح سے کر بات کی تھی ہماری کیٹیگری 5 کے بارے میں بھی، وہ یہی کہہ رہا تھا کہ اس پہ بندہ بات کر سکتا ہے مگر اس کی کافی وجہ ہے، اور وہ کہہ رہا تھا کہ سمر کے بعد جب ہم ملیں گے تو پھر اس پہ بھی بات کر لیں گے. میں نے اسے کا ریکویسٹ کی تھی ٹائم کی، تو اس نے کہا تھا میں ٹائم دے دوں گا تمہیں.
1: لیکن یہ مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا عدنان؟ اس پہ تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں، آپ بھی کوشش کرتے ہیں، امبیسی بھی کوشش کرتی ہے،
2: राज साहब, इसमें ना मैं एक रफ नहीं लूंगा, मगर मसला पता है क्या होता है, इसमें ना मसाइल ये होते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान की कम्युनिटी और एम्बेसी है ना, इनको थोड़ा बहुत डेवलप करना पड़ेगा। और मसला ये पड़ जाते हैं कि जब आप अपनी सोसाइटी के अंदर, अब मुझे पता है कि बड़े सारे लोगों ने नाराज हो जाने और इस बात पर गुस्सा करने, मगर इसके अंदर ये भी होता है कि कुछ नेगर्स और डेमोस्ट्रेशन हो जाए या कोई ऐसी चीज हो जाए ना अपने मुल्क के बारे में भी, तो फिर उसको भी ये गौर से देखते हैं। तो इसके अंदर काफी पैस्पेट है जिनको बंदे को देखना पड़ेगा और उन पे काम करना पड़ेगा, ताई बंदा बाहर निकलेगा इस चीज से।
1: चलें, आपने बात की तरफ इशारा कर दिया। तो अदनान, आपने देखा कि बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं, जमहूरी तरीके से हल हो जाते हैं, आप अच्छी अप्रोच करें, जिस तरह आप इंटीग्रेशन मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, दूसरे लोगों की भी बात कर रहे हैं, तो ये सारे काम अप्रोच से चलते हैं, पीआर बनाने से, लॉबी बनाने से चलते हैं। लेकिन जब तक हम अपना निकलते ही नहीं है, मैं किसी सियासी जमात के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं कभी जमहूरियत के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन अगर रहना हमने है, बच्चों हमारे ने यहाँ रहना है, हम यहाँ की सियासत नहीं करते, ज़्यादा हम प्रेफर करते हैं पाकिस्तान की सियासत जिन्होंने डिवाइड कर लिया है, जमातों के सब गुरु बार होते हैं।
2: सर देखिए, पाकिस्तान की देखिए, मैं आपको यही कहूँगा कि जिस तरह से सूरत हाल बनती जा रही है ना, और जिस तरह से चीजों को हो रहे हैं मुल्क में, अब देखिए एक इशू है अबीवा मेशम जो है, उसके रेक्टर और जो प्रिंसिपल हैं, उसने परसों चौथे एक आर्टिकल लिखा था एलनेस की सुनने में मुसलमानों के, क्योंकि ये जो नमाज पढ़ना चाहते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता कि उसके बारे में मैंने बस फेसबुक पे छोटा सा एक क्लिप लिखा लोगों को कि आपने फ्रीडम में वो पढ़ना चाहे तो क्या मसला है। मुझे हैरानगी थी कि मुझे इनकी सपोर्ट आई है, मगर किसी हमारे वाले ने उस पे कहते हैं सपोर्टिंग में सपोर्ट पे नहीं कमेंट लिखा कि इस पे आपको क्या है। तो पाकिस्तानी जो सियासी जमातें यहाँ पे है, उनको ये भी गौर से काम करना चाहिए कि हम लोगों को मिलके अब एक मुसलमान प्लेट बनाना पड़ेगा, क्योंकि मुसलमानों का एक किस्म का, मैं आपको बात बताऊं, मैंने 2001 बाद जब से ये आया था कि आनंद सुभाष ने, उसने कहा था कि उल्लेखनीय पुलची बड़ी सख्त होनी चाहिए, वो था इस वर्ल्ड कप 25 के साथ था, मगर मैंने 2026 के इलेक्शन के बाद कभी एक्सपेक्ट नहीं था किया कि एक रेड गवर्नमेंट आएगी तो क्या कहते हैं इतना क्या कहते हैं हैवी अटैक्स होंगे जितने इस वक्त हो रहे हैं। आप देखिए डेली दो या तीन स्टेटमेंट गैर मुल्कों पे आ रहे हैं, हाँ ना ना। इसलिए हमारी सारी जमातों को खड़ा होके एक पेज बनाना पड़ेगा जिसके अंदर हमें सोचना पड़ेगा कि हम इस बात को कैसे टैकलिंग करें, क्योंकि ये इस वक्त ना बड़े क्या कहते हैं, मुझे लगता है ये कंफ्यूज हो गए हुए हैं, डेस्परेट हो गए हुए हैं, हम करें क्या, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रही कि हमें अटैक करते हैं, मगर वो आगे से भी क्या कहते हैं अटैक करते हैं, मगर हम इनको बताने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तानी सियासत जमातों को ये भी सोचना चाहिए कि हम अब चौथी पांचवी जनरेशन यहाँ आ गए हैं, तो हमें यहाँ की सियासत में भी उसी तरह पार्टिसिपेट करना चाहिए जैसे हमें पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान के अंदर जो सियासत है वो तो सबको पता है कि कैसी है, मगर उस तरह की सियासत कहते हैं बंदा इस तरह की तो यहाँ पे नहीं है, मगर काफी चीजें सोचने की जरूरत है।
1: लेकिन अदनान, एक इस पे करेक्टर बड़ा जो है वाजे होना चाहिए। आप देखे ना, आपको अदनान कभी किसी ने कहा नमाज क्यों पढ़ते हो, कभी किसी ने कहा आपको ज़कात क्यों देते हो, कभी किसी ने कहा आपको नेकी का काम क्यों करते हो, सोशल काम क्यों करते हो, जब सारी चीज़ों में आपको आज़ादी है सारे काम करने की, तो फिर पाबंदियां कहाँ से आ गई?
2: पाबंदियां आनी नहीं ना चाहिए। देखें, आपको एक बात देखनी चाहिए कि कोई बंदा अपनी फ्री टाइम में काम कर रहा है, कोई चीज आपको कर रहा है, तो आप उसको करने दें। आप देखें, सबको पता है कि ये जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, पूरे स्कैंडिनेविया में जो रह रहे हैं, बेसिकली तो ये हमारा इस्लाम पे सिस्टम है ना, जो हम अनफॉर्चुनेटली अपने मुल्कों में नहीं कर सके, तो हमने यहाँ आगे कहते हैं उसको पाया देख लिया, तो फिर हमें तो रिलीजन इस्लाम को भी देखना चाहिए और हर चीज को देखना चाहिए।
1: देखें, जब उलमा भी हमें बताते हैं, दीनी मजहबी लोग भी बताते हैं, और मैं कहता हूं कि हर बंदे को जवाब भी नहीं देना चाहिए। जब मजहबी अदारे बने हुए हैं तो कोई इस तरह का मसला हो जाए तो सियासतदान जो हमारे लोकल सियासतदान होते हैं, कमून में होते हैं, तो अगर उनको किसी चीज़ का जवाब देने पे अबूर नहीं है, उनको समझ नहीं है, तो उन्हें चाहिए जाएँ यहाँ इस्लामी इदारे बने हुए, जा उनसे जाकर सवाल करें, हमने तो सियासत करनी है।
2: देखिए धारा साहब, मसला पता क्या होता है, मसला ये है कि जो हमारे बहुत सारे सियासतदान हैं ना, उन पर भी बड़ा प्रेशर पड़ता है, क्योंकि जो हमारी कम्युनिटीज है ना, उनकी एक्सपेक्टेशन भी बड़ी होती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो सियासी बंदे हैं ना, जो जिस तरह से हम जो कैंडिडेट बनना चाहते हैं, जो बन चुके हुए हैं, हमें ये बताना चाहिए कि हम कौन कौन से काम कर सकते हैं और कौन कौन से काम नहीं कर सकते। और जब हम ये लोग इन्फॉर्मेशन देने लगेंगे ना लोगों को भी, और सबको बताने लगेंगे, तो फिर लोगों को समझ आएगी थोड़ी बहुत कि हम क्यों नहीं उस चीज पे काम कर सकते। और इस चीजों से लोगों को क्या कहते हैं, बड़ा इंफॉर्मेशन का होता है।
1: इंफॉर्मेशन आपकी बात को मैं ऑन करता हूँ। देखिए ना अदरान, आप लोगों ने जिसने भी किया मिलकर एक जो है फेस्टिवल का जो मस्जिद के सामने प्रोग्राम बनाया, स्टार लगे, सारा कुछ हुआ, लेकिन जो पार्किंग का डेफिनेट पार्किंग का मसला होता है, उस मसले को आप सब ने मिलकर हल करने की कोशिश की, और आपको कम्यून ने या साथ वाले रहने वाले लोगों ने आपको इजाज़त दी। अब जिस तरह अब ये ब्रॉन्डबी में होने जा रहा है, ये मैंगो फेस्टिवल होने जा रहा है, डेफिनेट फैमिलीज जाएंगी, रश होगा, लोग गाड़ियों पर जाएंगे, और लोगों को ख़ुद भी एहतियात करनी चाहिए, जो करीब रहते हैं वो गाड़ियों पे ना जाए, लेकिन जो बाहर से जाते हैं उनको तो पार्किंग के लिए जगह चाहिए। तो जो कम्युनिटीज होती हैं, जो उस पर सिटी काउंसलर्स होते हैं, मेयर्स होते हैं, डिप्टी मेयर्स होते हैं, तो उन्हें चाहिए ना कि वो ख़ुद भी इनिशिएटिव लें। जब तक तरजीह उनको नहीं पता होता कि लोग आएंगे तो इनके लिए ये मसाइल होंगे।
2: देखिए राजा साहब, हर चीज़ का ना एक होता है, मैं आपको बता दूँ, आप सही बात की है। ब्रॉडबी स्थान वालों का मैंने पिछले साल देखा था और उन्होंने भी बहुत अच्छी इंतजामिया की थी, और इंशाल्लाह ताला मुझे पता है कि इस साल वो अपना प्रोग्राम काफी अच्छा करेंगे। और मुझे ये भी पता है कि उन्हें, क्योंकि वो बुहारी साहब भी वहां पे इन्वॉल्व हैं और इरफान गिलानी भी वहां पे हैं, तो वो दोनों मिलकर इंशाल्लाह ताला इस पार्किंग के इश्यूज को हैंडल भी करेंगे, और अल्लाह ताला इनको कामें भी देगा, और कोई क्या कहते हैं नहीं है। मैं ये भी कह सकता हूँ व्यूअर्स को कि जो 4 जुलाई को होगा, उनके पास भी पार्किंग का इतना ज्यादा इशू नहीं होगा, क्योंकि वहां पे मैं आपको एक बात बता दूं, बच्चों का एक मैनिफेस्ट हुआ जो वाहिद अब्दुल्ला कमून कराती है, वो पार्किंग के एरिया बना गए होते हैं, तो बंदा उनकी फोटो कवर जाकर ले ले और उनसे एडवाइस कर ले, तो वहां पे भी इंशाल्लाह ताला कोई मसला नहीं पड़ता पार्किंग का। पर 11 को भी वो तो फिर हम लोग हैं, वो तो हमने पहले ही कमूनों से रबते कर लिए हुए हैं और उसका हल हम निकाल लेंगे, इवन इधर ना भी हो तो निकाल के जाएंगे कि पीछे से हमें कोई क्या कहते हैं उंगली ना उठा सके। मगर आपकी बात सही है कि हम लोगों को बड़ी पार्किंग के इश्यूज होते हैं, मस्जिदों में भी होते हैं और दूसरी जगह पे भी होते हैं, और ये आपको शायद इल्म भी होगा कि ये मस्जिद की एक पार्किंग के इशू की वजह से ही सिंगम में एक मस्जिद को मना हो गया था बनाने से। तो फिर बंदा देखिए ना, इन चीजों को बंदे ने साथ रख के और करके करना होता है, मगर बात वही होती है कि हम लोगों को जैसे बाहर निकल के समझाने की जरूरत होती है कि किस तरह की चीजें होती हैं। अब जहाँ पे ये 11 जुलाई को मेला लगना है, उसके अंदर जो जगह थी उसके अंदर बुला के जब उनसे कुछ काम कराना था, तो फिर उस बंदे को बुलाया गया था, तो फिर उस बंदे ने जब मैंने कोशिश की थी, मगर इनको उस बात की नहीं थी समझ आई, मगर जब फिर गोरा आया था तो फिर उसने वही बात बताई थी ना, ऑलमोस्ट जो मैंने बताई थी कि कमून के सटली एक बजट नहीं होता, उनके काफी बजट होते हैं, कि जैसे वाइट पार्क जो है इनके 3-4 बजट होते हैं और वो अपना अपना बजट से चलाते हैं। तो जब आप लोग इस तरह की इंफॉर्मेशन देंगे ना लोगों को कि कौन कौन सा बजट है और कौन कौन से बजट से पैसे बाहर निकलेंगे और कौन कौन से खुलिए से निकलेंगे, तो लोगों को क्या कहते हैं अपने आप पता चलेगा कि कौन सी चीज कैसे चलती है कौन सी चीज कैसे नहीं चलती। आधे से ज्यादा लोगों को मालूम होना चाहिए कि जब ये जो कम्यून के अंदर काउंसलर बैठे होते हैं इनका काम होता है मोस्टली वॉच करना। नीचे जो होते हैं ना काम करने वाले उनका काम होता है कि वो लॉ की इवनिंग को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, और इनका होता है एक किस्म का वॉच की तरह करना कि कोई काम कानून के बगैर तो नहीं ना कर रहा, कानून के अगेंस्ट नहीं ना कर रहे। तो ये बड़ी जरूरी चीजें होती है कि बंदा इन चीजों पर ध्यान रखे।
1: देखिए, कानून का एहतराम करना चाहिए। आप आखिर में आप क्या कहेंगे, ये जो हम लोग स्टोरों में जाते हैं, मस्जिद में, पहले मस्जिद की बात करूँगा, हर जुम्मे पे जाते हैं, हर नमाज पे लोग जाते हैं, वजू इस तरह कर रहे होते हैं जैसे मस्जिद ने या कल्चर सेंटर ने उनका कोई उधार देना कि हमने पानी को जो है बहाना ही बहाना है, टाइल्टें इस्तेमाल करनी करनी हर हालत में, जैसे फराइज में लिखा हुआ कि ये काम हमने करना ही करने हर हालत में। अब स्टोरों में जाकर देख रहे हैं, वहाँ भी यही हाल होता है, क्या क्या होता है, क्या क्या हम लोग कर रहे होते हैं। जहाँ जहाँ कोई चीज़ इस्तेमाल करनी है उसे बिल्कुल आराम से कानून कायदे के साथ इस्तेमाल करें, तो मैं नहीं समझता कोई मसला होता है।
2: दरअसल दो चीजें, सबसे पहले तो पानी को ज़ाया नहीं करना चाहिए क्योंकि जो पानी ज़ाया होता है उसका बिल भी उतना ही उनको मिलता है। अल्लाह ताला ने आगे पानी की प्रॉब्लम्स होती हैं तो अल्लाह ताला को सोच समझ के इस करना चाहिए। बंदे ने अपना साफ खुद ही पानी का भी देना होता है हर चीज का। और दूसरी बात स्टोरों पे, हाँ स्टोरों पे बंदे को भी थोड़ा बहुत देख के रहना चाहिए क्योंकि हर बंदे को नजर होती है अपनी, क्या कहते हैं, रिस्पेक्ट अपने पास ही हो तो बेहतर होता है।
1: बिल्कुल, आपने बजा फरमाया अदनान। आखिर में अदनान आप क्या कहेंगे?
2: मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबको अच्छी हो, समर वेकेशन सबकी हो, और जल्द ये जो मेले आ रहे हैं उनको सपोर्ट करना, उनको क्या कहते हैं उन पे जाना और खुश होना और शामिल होना और अपने कल्चर को प्रोवाइड करना, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला सबको खैरियत में रखे और सेहत सबको तंदुरुस्त दे। अल्लाह
1: अजान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया।
2: हाफिज़।
1: सामान नाज़रीन, ये थे अदनान अमीन अली जो कि आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। सामान नाज़रीन, आपको पता है छुट्टी का दिन है, कितना प्यारा मौसम है, लोग इस मौसम को तरसते हैं, दुनिया में लोग कितने पैसे लगा कर जाते हैं, और आपको ये इतना प्यारा मौसम मिला हुआ है, इसको इन्जॉय करना चाहिए। बच्चों के साथ इन्जॉय करें, फैमिली के साथ इन्जॉय करें, जो जो भी आपको इवेंट आ रहे हैं, क्योंकि ये लोकल प्रोग्राम होते हैं, लोकल कम्युनिटी के प्रोग्राम होते हैं, लोकल लोगों के होते हैं, तो आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, अच्छे तरीके से कानून कायदे का एहतराम करना चाहिए। आप गाड़ी लेकर जाते हैं तो आप उसी जगह पार्क करें जहां आपको पार्क करने की सही जगह, किसी के लिए कोई मसला मसाइल बने ना, ताकि लोग आपकी तारीफ़ करें। सामान नाज़रीन, हमारे साथ साथ रहिएगा।
3: सामईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामने नाज़रीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में अपनी टीम के साथ हाजिर है। हमारे इंट्रो में हमने सुबह आपको बता दिया था, लेकिन इस वक्त हमारे जो थिंक टैंक है सैयद तौकीर हसन बुखारी शाह साहब, जो कि अपनी मसरूफियात के बावजूद मुहर्रम के दिन है लेकिन फिर भी वो अपना टाइम निकालते हैं अपनी कम्यूनिटी के साथ, जो उनके पास मालूमात होती हैं, जो उन्होंने मालूमात ली होती हैं या पढ़ी लिखी देखी होती हैं उस पर वो बात करते हैं और अपना तजिया भी करते हैं। तो ये साल साल से बातें करते भी रहते हैं, मौसम के लिहाज से भी, बीमारियों के लिहाज से भी, वो भी बातें सुनते हैं, हम भी बातें सुनते हैं। हर आदमी को अपनी बात कहने का हक है। इस मुल्क में हम रहते हैं, ये जमहूरी मुल्क है, इस मुल्क के कानून कायदे का हमें एहतराम करना चाहिए, हमें इस मुल्क के जज्बात का भी जो है वो ख्याल रखना चाहिए। अगर आज़ादी मिली है तो उस आज़ादी को भी इस्तेमाल करते वक्त भी कानून का जो है वो ख्याल रखना चाहिए। समय नाज़रीन, इस मुल्क में हम रहते हैं, यहाँ बेशुमार जो है डायनेस्ट सियासी जमातें हैं, किसी को भी कोई मना नहीं किया जाता, कोई भी आप अपना फॉर्म फिल करके आप उसके मेंबर बन सकते हैं। अगर कोई पार्टी आपको नहीं लेना चाहती, तो हमने आज दिन तक सुना नहीं किसी ने किसी पार्टी में जाने की कोशिश की और उसको पार्टी का मेंबर ना बनाया गया हो। और शाह साहब से ये भी पूछने की कोशिश करेंगे, कभी ऐसा वाकया हुआ कोई मेंबर बनना चाहता है तो उसको मेंबर नहीं बनाते? यहाँ की सियासत करें, अगर अपने बच्चों के मुस्तकबिल आपको अजीज है तो इस मुल्क की सियासी जमातों के मेंबर बने, इस मुल्क की सियासत में, कम्यून की सियासत में हिस्सा लें, पार्लियामेंट की सियासत में हिस्सा लें। जब तक ये चीज़ें नहीं करें, जहाँ भी दुनिया में जिस मुल्क में आप जाकर आबाद हुए उस मुल्क के कानून कायदे का एहतराम करें, उस मुल्क की ज़बान सीखें, उस ज़बान पर अबूर हासिल करें, तालीम हासिल करें। आप जैसे लोग, वो जिनके बच्चे इन ममालिक में नहीं पढ़े, मैं उससे बदकिस्मती कहूँ तो और क्या कहूँ, जो बच्चे यहाँ पढ़े नहीं, जिनके वालदैन बेचारों ने मजदूरी की, इस मुल्क को ढूंढा, मजदूरी करके बच्चे जवान किए, उनको स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में पढ़वाया, अगर उसके बावजूद बाकी लोग ये काम नहीं कर सकते तो इस पर यह भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। किसी निज़ाम से आप फ़ायदा नहीं उठाते, ये निज़ाम आपके लिए है। आप हर वो नेगेटिव बात करते हैं, जिन ममालिक में रहते हैं, जिनका खाते हैं, जिनका पहनते हैं, उनके हर वक्त आप खिलाफ लगे रहते हैं, कोई उनके कानून कायदे का हम इतराम नहीं करते, मांसवाय गिले शिकवे करने के अलावा हमारे पास कोई नहीं है। भाई आपको जमहूरी निज़ाम शाह साहब बताते हुए ज़माना इनका गुजर गया है, ये अपने तजर्बे की बुनियाद पर बात करते हैं। अगर तौकीर हसन शाह साहब आपको अच्छे नहीं लगते, लेकिन वो जो बातें उन पर भी तो आप गौर कर सकते हैं, या और कोई अच्छी बात करता है, कोई सियासतदान बात करता है, कोई दानश्वर बात करता है, तो उसकी अच्छी बात पर यकीन कर लें। अगर बंदा आपको पसंद नहीं है तो छोड़ दें उसको, बंदे को क्या करना, आपने बंदे को क्या करना है, आपने उसकी अच्छी बातों को लेना है। तो शाह साहब एक बार फिर आपको अदारा आपकी बात पर खुश आमदीद कहते हैं। मैंने अपनी तमीद में आपके लिए बहुत सारे सवाल छोड़ दिए हैं।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा फूर साहब, आपको, आपकी टीम, आपके लिस्टर नाज़रीन सबको अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपने कहा कि हम मौसम की बात करते हैं, इस वक्त बाद जगह 27, बाद जगह 28, बाद जगह 29 डिग्री तक मौसम है। ये है कि जहाँ आप बहुत ज्यादा अमारात होती हैं वहाँ थोड़ा सा टेम्परेचर हाई होता है, वहाँ गर्मी ज्यादा होती है, और जो खेतों के नजदीक हो या जहाँ बागात हो या समुंदर का इलाका, तो वहाँ थोड़ा सा टेम्परेचर जो है हवा कूल होती है। कूल से याद आया कि

इसी तरीके से कान का जो अंदरूनी फिल्टर होता है, एक बाहर वाले फिल्टर होते हैं नोज फिल्टर, ये वो तो आप सर्विस कराते हैं, वो चेंज कर लेते हैं, लेकिन जो आपके हैंड्स का जो अंदर अंदर स्पेशल जिसके अंदर आपके कागजात रखे होते हैं हैंड्स को, वो उसके अंदर जो है एक फिल्टर होता है, वो फिल्टर आपके जो कैबिन होती है गाड़ी की उसके एटमोसफेयर उसकी हवा को जो है वो साफ करता है। तो वो बाजू का गंदा हो जाए तो वो 50-60 करोड़ का मिलता है। तो अगर आप महंगा ले लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा बोश का या किसी अच्छी कंपनी का ले लेंगे तो वो आपको जो है 100 करोड़ तक मिल जाएगा, लेकिन सस्ते जो है वो 50-60। तो आप अगर वो चेंज करेंगे तो उससे आपकी जो एसी और जो अंदर की हवा है वो आपको बेहतर महसूस होगी, इससे आपके लंग्स जो है वो मजबूत होंगे। और ये याद रखें कि जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो आप एसी फौरन मत लगाएं, एसी जो है गाड़ी के 3-4 कम से कम 3 मिनट के बाद आप एसी लगाएं, और एसी लगाने के साथ आप थोड़े से अपने हुआ जो है जो अपने विंडो से है उसको थोड़ा सा नीचे करके फ्रेश एयर को आपको अपने कैबिन में आने दें, फिर उसके बाद आप उनको बंद करके तो आप टेम्परेचर को जो है कूल जितना भी आपने करना वो लगा लें, क्योंकि ये चीजें तो बहुत ज्यादा लोगों ने आजमाई हुई है, देखी हुई है, एक्सपर्टीज इस पर बात कर चुके हैं कि आपको जो टखनों की यानी कि पंजाबी या घुटने गिट्टे इसकी जो टांगों में दर्द होती है, ये जो तेज इस मौसम के अंदर हम तेज एयर कंडीशन लगाते हैं तो वो आपकी टांगों का खून जो है उसको सर्द कर देते हैं, और जब आप बाहर निकलते हैं तो आप एकदम गर्म हवा और में आते हैं तो गाड़ी से बाहर उससे आपके जो है ना वो जो खून की शारीरिक होती है उसके ऊपर असरात पड़ते हैं। तो राजा साहब ये है कि लोगों को हम एजुकेट करते हैं, कोशिश करते हैं कि उनको बताएं, वो अपने डॉक्टरों से रिव्यू कर सकते हैं, खुद अपने देखभाल कर सकते हैं, घर में सोने के वक्त बिल्कुल नजदीक अपने चेहरे के बिल्कुल करीब पक्का या एयर कंडीशन लगा के मत सोएं, क्योंकि इससे जो है आपके लंग्स मुतासर हो सकते हैं, थोड़ा सा फासले पे रखें और ये बेहतर है आपके लिए। तो बाकी राजा साहब आपने ये बात की कि यहाँ पे लोग सुनते हैं या नहीं सुनते, देखिए जिन्होंने नेगेटिव बात करनी है उन्होंने उन्होंने जहन शुरू से ही नेगेटिव बनाना, उन्होंने ये नहीं कहना कि क्या आप ये देखें कि हमने ऊबर के ऊपर शो डाला तो हमने कहा कि ऊबर को रहने दे इस मुल्क के अंदर, अपनी गवर्नमेंटशिप जो है अपना पुराना लॉ है उसको बचाए, लेकिन किसी ने बात नहीं सुनी। अब मैं आपको ये हलफन कह देता हूं कि बहुत सारे मुल्कों में इवन इंग्लैंड में अमेरिका में मेरे अपने खुद घर के अंदर गाड़ियां 80-80 गाड़ियां आ चुकी हैं जिसको आप घर में बैठे हुए हैं उसके अंदर एड्रेस फीड कर दे वो जाके वहां से बगैर ड्राइवर के वहां से चीज को आपके घर तक लेके आ सकती है, और ये इतनी ज्यादा मॉडरेट हो चुकी है। लेकिन इसके ऊपर स्वीडन ने बहुत बड़े स्वीडन की गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा जो है टेस्ला के ऊपर इस उसके जो जो कंप्यूटराइज सिस्टम है इसके ऊपर अतराजात उठाए हैं, उसने कहा है कि इसकी जो स्पीड कंट्रोल है जब ये चल रही है एक स्पीड पे तो सडनली इसके आगे कोई चीज आ जाती है तो इसकी स्पीड कंट्रोल नहीं होती, उससे हादसा जो है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, लिहाजा ड्राइवर को जो है वो बीच में बैठना चाहिए और उसको मुताहत होना चाहिए, इसका कुछ हल होना चाहिए। और ये स्वीडन ने सिर्फ अपनी गवर्नमेंट तक नहीं रखा बल्कि उन्होंने यूरोपियन यूनियन के पास ये बात भेजी है, और ये मैंने बकायदा इसकी जो अखबारी और इसकी जो टेक्निकल रिपोर्ट थी वो आपको भेजी है ताकि कोई बंदा ये कहे कि ये ऐसे ऐसे ऐसे है तो वो हो सकती है। लेकिन अब ये कोशिश हो रही है कि डेनमार्क के अंदर मेजोरिटी टैक्सी जो है उनको बिल्कुल उसी तरह से ड्राइवर लेस कर दिया जाए, आप टेलीफोन करें कंप्यूटर जो है वो ऐप जो है वो आपके घर टैक्सी भेज देगी, आप उसके अंदर बैठेंगे जो एड्रेस आपने अपनी ऐप में फीड किया वो आपको वहां पे ले जाएगी और उसके बाद जो पेमेंट है वो आप कर देंगे बैंक के थ्रू कार्ड के थ्रू। तो ये चीजें जो है इससे ये होगा कि कल को जो है आवाज से जो है वो बढ़ जाएगी, वोमनों का अख्तियार जो है वो कम हो जाएगा, कंपनियां जो है वो ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां अपने अपने मतायद कर लेंगी, अपने अपने कंपनियां जो है वो कहेंगी कि हमें अब ड्राइवरों की जरूरत नहीं, हम बैठ के तो 100-150 गाड़ी को जहां दिल चाहे भेज दें लोगों को, हर जगह से जो है वो गाड़ियां चलेंगी। और यह से दूसरे मुल्कों में हो रहा है, इस तरह अगर डेनमार्क में हो गया तो ये छोटा सा मुल्क है, बहुत सारे लोग जो है वो विदाउट वर्क हो जाएंगे, फिर ये कहां जाएंगे क्योंकि

0: यहाँ पे तो एजुकेशन बहुत बड़ी जरूरी है। कंप्यूटर कोर्सेज तीन तीन चार चार साल के कोर्सेज है, और वो भी जो उम्र से थोड़े से ज्यादा है उनको कोर्स करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा लगता है, तो वो कहाँ से जाएंगे। सवाल बड़े उठते हैं कि क्या हमारे जो सियासतदान हैं क्या वो अब भी सत्तू पीकर, जैसे शेख रशीद कहता है सत्तू पीकर सो गए हैं, क्या वो सत्तू पीकर सो चुके हैं। हम लोग बहुत ही, आपने खुशानदा बात की कि हम लोग पाकिस्तानी सियासत को यहाँ पे बहुत ज्यादा मुलव्वस करते हैं। ठीक है, करें पाकिस्तानी सियासत को मुलव्वस, लेकिन ये ख्याल करें कि आपकी जो फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है, वो डेनिश है, उनको उनको यहाँ के माहौल और यहाँ के इस मुल्क में उन्होंने रहना है। आपने अगर नहीं रहना तो कल को हम आज अभी बैठे हुए सुबह का, मेरा पता नहीं कि मैं जिंदा हूं या नहीं, लेकिन कम अज कम मुझे जो अपने आने वाली नस्लें हैं उनका सोचना चाहिए कि मैं उनके लिए क्या बेहतरी करके जा रहा हूँ, क्या बेहतरी नहीं कर सकता। हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे इतने ज्यादा डॉक्टर्स हैं, हमारे साइंटिस्ट हैं इस मुल्क के अंदर, हमारे इंजीनियर्स हैं फॉरेन मिनिस्ट्री में, हर जगह पे बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी पोस्टों पे, यानी कि यहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जज जो है हमारे पाकिस्तानी है, हाउसलाल की फ्री प्रोसेस में भी पाकिस्तानी बैठे। लेकिन लेकिन इसके बावजूद क्या हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, हमारे वकील हैं, क्या हमारे वकील आकर कोई ये कह रहे हैं कि आए हम आपको फ्री प्रोसेस में आपको मशवरा देते हैं, हम गवर्नमेंट से हेल्प लेते हैं, हम आपके कल्चर को ठीक करते हैं। नहीं राजा साहब, यहाँ पे मसाइल बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं और इतने ज्यादा मसाइल हो गए हैं कि आप अगर मुझे इजाजत दें तो मैं उन पर बात करूंगा, क्योंकि ये मसाइल जो है अभी हमारे दीनी मसाइल यहाँ पे बहुत ज्यादा गंभीर हो चुके हैं, लेकिन हमारे लोग ये कहते हैं जी कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, लेकिन मसला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जी राजा साहब,
1: शाह साहब आपने तजिया करके बताया, तो शाह साहब आपने सियासत की बात की कि सियासत हम लोग यहाँ की नहीं करते, आपने इशारतन कहा वहाँ की सियासत करते हैं, कि हालांकि उसका कोई फ़ायदा होता या नहीं होता हम नहीं कहते, लेकिन जिनके पास अथॉरिटीज़ होती है उनको तो फ़ायदा होता है कि जब आप लीडरों को 45-45, 40-40 लाख के, 15-15 लाख के, 10-10 लाख के, 17-17 लाख के जब तोहफे देंगे टेलीफोन की शक्ल में होंगे या किसी और शक्ल में होंगे, तो वो आपको तो वेलकम करेंगे, आपको चाय पानी भी बताएंगे पिलाएंगे, लेकिन उस लीडर का, उस पार्टी का क्या रह जाता है कि जो रिश्वत की बुनियाद पर जिनके लीडर इस तरह की रिश्वत लेते हैं, तो शाह साहब क्या यहाँ रिश्वत दी जाती है यहाँ की पार्टी लीडरान को?
0: जी ये मुझे नहीं समझ आ रही, ना मुझे कोई कॉल आ रही थी ना कुछ, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ जो हमारे इस वक्त अख्तियार से बाहर है, क्योंकि ये चीजें जो है कि आजकल कुछ ममालिक में बैठ के हमारे नंबर जो है डेनिश नंबर ये यूज किए जा रहे हैं, और ये कंप्यूटराइज है ये नंबर, और जब आप एक दफा इनको हेलो कर देते हैं या इनको इनसे बात करने की कोशिश करते हैं तो वो जो ऑटोमेटिक कंप्यूटर है वो आपकी सारी जो डाटा है आपके टेलीफोन के अंदर वो निकाल लेता है। तो ये मैंने अलग
1: लेकिन शाह साहब इस पर लोग आवाज क्यों नहीं उठाते, यहाँ के सियासतदान
0: कुछ भी नहीं
1: क्यों
0: कर
1: नहीं उठाते, यहाँ की हुकूमत क्यों नहीं आवाज उठाती?
0: ये हुकूमत के, ये सियासतदानों का काम है कि वो इस पे एक्शन ले, यहाँ इसके ऊपर जो है वो बड़ी से बड़ी जो कंपनी है उन सब ने इनको पुलिस मेल भी किया, उसके बावजूद कुछ नहीं हो सकता। कि वो कहते हैं कि ये जी ये मशीनें हैं, कंप्यूटर हैं, कंप्यूटर कहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं, कोई कहता है जी किसी मुल्क से हो रहे हैं, कोई कह रहा है जी कहाँ से हो रहे हैं, तो ये पीछे से जो कंप्यूटर कंट्रोल कर रहे हैं इनके तक ये पहुंचना चाहिए कि हमारे डैनिश नंबरों पर ये कॉलें कैसे आती है, ये किस्सा हमारे टेलीफोनों को सुन रहे हैं। यकीन कीजिए कि मैंने 2 दिन जो है मुतवातर अपने टेलीनोर को टेलीफोन किया और उन्होंने कहा कि यह है, फिर उन्होंने बिल्कुल इसको नुल स्टिल किया, यानी कि इसको जो फैब्रिक नुल स्टिल होता है वो इसको मेरे टेलीफोन किया, और फिर मेरे जो इंफॉर्मेशन थी वो दोबारा इसके अंदर मेरे टेलीफोन में डाली, और उनको कम से कम 1.5 घंटा लगा इस प्रोसेस के अंदर।
1: तो
0: वो कहने लगे
1: जो
0: अगर हम
1: हमारे सियासतदान है ये बोलते क्यों नहीं?
0: ये इनका काम है ना, ये आवाम का काम है, जब आप इनको वोट देते हैं, जब आप इनके खाने पे जाते हैं तो आप इनसे ये बात नहीं करते, आप वहां पे बैठ के टोलियों की शक्ल में आप अपने गांव के राग लाते हैं, आप अपनी अपनी बात करते हैं जी मैं फलाना गया था पाकिस्तान, ये आया फलाना आया इसके लिए, तो वहां पे कोई ऐसी बात नहीं होती कि यहाँ पे जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उसको लेके चले। आपको पता है कि इस वक्त मुहर्रम है और आज 5वीं मुहर्रम का दिन है और रात 6ठी होगी, तो आपको पता है कि इस दफा इन्होंने मुहर्रम के अंदर भी पहले 7वीं 8वीं मुहर्रम को यहाँ पे जुलूस निकलते थे नहरों में, तो इस दफा उन्होंने जुलूस निकलने की ममानत कर दिया, पुलिस ने इजाजत नहीं दी और उन्होंने कहा कि बड़ी मुश्किल से ये 10वीं वाले दिन जो अशूरा का जुलूस निकल रहा है इसकी इजाजत जो है वो चंद एक अरबियों को मिली है, और उन्होंने कहा कि आप सब लोगों को इजाजत नहीं हम दे सकते, आप बड़ा जुलूस नहीं निकाल सकते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मैंने आपको ये अखबारों के और जो फेसबुक की कटिंग थी ये मैंने आपको रवाना की थी पिछले हफ्ते, उसके अंदर वाजह तौर पे फेसबुक ग्रुप है एक जो मुसलमानों के खिलाफ है, तो उन्होंने कहा कि ये अगर उस दिन निकालेंगे तो हम नारोप्रो और ये मुल्क हमारा है हम इनके खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। तो इसी तरह आप देख रहे हैं कि
1: तो
0: वो
1: शाह साहब फिर
0: बीजी
1: बदनामी किसकी होगी, हम वो काम ही ना करें जिसे हमारे ऊपर ज्यादा आए।
0: देखिए जी जो हमारे आलमे जिनको हम आलमे दीन कहते हैं जिनको हम मौलाना हजरात कहते हैं जो उनके साथ रिलेटेड जो लोग उनके साथ कमेटियों में बैठे हुए हैं उन लेक ऑफ नॉलेज होने की वजह से वो इस बात को जो आज जिस नेच पे हम पहुंच चुके हैं जिस जगह पे हम पहुंच चुके हैं ये इनकी नेगलिजेंस की वजह से हुआ है, ये इन्हीं की खराबियों की वजह से हुआ है। और जी असि सब कुछ जान रहे हैं, साढ़े दो काउंसलर हैं जी बस वो हमें बता देते हैं कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा। आज ये नौबत पहुंच चुकी है कि आप देखें कि मनाजु कुरान के मौलवी को उसकी नेशनलिटी मंजूर हुई उन्होंने खत्म कर दी, इसी तरीके से उन्होंने यूलैंड में 3-4 की कैंसिल की, उन्होंने काफी लोगों की जो नेशनलिटीज हैं वो वापस मंगवा ली है, और अब ये जो मजहबी तौर पे ये बात कर रहे हैं इसके ऊपर भी। अब आप ये बताएं कि जब आप कल्चर सेंटर का नाम लगा रहे हैं तो कल्चर सेंटर की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती, कल्चर सेंटर को किसी वक्त भी बंद किया जा सकता है। हमारे लोगों को डैनिश की 0.0 पॉइंट मैं कहूंगा, मुझे गालियां दे जो मर्जी करे लेकिन मैं ये कहूंगा इनको समझ नहीं कि आइन क्या कहता है। भाई आइन ये कहता है आप डैनिश जबान बोलते हैं आप डैनिश जबान समझते हैं लेकिन आप आइन को नहीं समझते। आइन ये कहता है कि अगर आप देखें यहाँ पे एक चर्च है उसकी हफाजत गवर्नमेंट का काम है, उसकी जितनी भी काम उसके अंदर बाहर होता है उसका हिसाब किताब गवर्नमेंट देती है, गवर्नमेंट देती है पैसे उसके अंदर जो लोग आते हैं जैसे भी उसकी सफाई हर चीज मरम्मत का काम जो है वो लोकल कम्युनिटी और गवर्नमेंट करती है। इसी तरह यहाँ सिनेगॉग्स बने हुए हैं यहूदियों के, उनको जो है वो जो उनकी जो सफाई मरम्मत है वो सारी गवर्नमेंट करती है। हम लोग जो है हमारे सिर्फ यहाँ पे 2 मस्जिदें जो है मुसलमानों की वो रजिस्टर्ड है, बाकी जो है वो सारे के सारे कल्चर सेंटर। लेकिन वो कहते हैं जी वो छोड़ो जी तानू की पता असी मस्जिद ही हाँ जय अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर नहीं है, अल्लाह का घर है तो फिर लिखो कि अल्लाह का घर है, कल्चर ना लिखो, हमारा हमारा इस कल्चर से कोई तल्लुक नहीं है, हमारा एक दीन है हम एक दीन के प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं उस दीन को लेके आगे चले। वहां पे आपका फिरका जो भी है उसको आप एक साइड पर रखें, पहले अपने दीन को तो यहाँ जो है उसका सर्टिफिकेट ले वहां उसके ऊपर बात करें और इसको आगे लेके चले। तो ये लोग ये बात नहीं कर रहे जिससे जो है अब बात बहुत
1: तो
0: ज्यादा बढ़
1: शाह साहब
0: चुकी है।
1: यहाँ की जो सियासत है, यहाँ की सियासत पर आपको क्या, कोई आपका जिंदगी का तजुर्बा क्या कहता है कि इन लोगों को कैसे रागब किया गया है कि ये यहाँ की सियासत करें, यहाँ के आह्वानों में जाएं, अपनी आवाज को बुलंद करें, अपने हकूक के लिए बोलें। यहाँ साहब शाह साहब आप देखें ना, किसी के पास जमहूरियत की ताकत है उसे कोई रोक सकता है?
0: देखिए अगर हम यही कोशिश करते रहेंगे कि हमें एम्बेसी में परेशानी होगी, हमें बड़ी बड़ी महफिलों में शादी ब्याह में बुलाया जाएगा जी कि हम लोकल काउंसलर्स हैं हमारी इज्जत होगी रिस्पेक्ट होगी, तो इसको ये फजूल है। आपको अवाम का नुमाइंदा बन के इसके लिए काम करना पड़ेगा, आप बाहर आए लोगों को इन्फॉर्म करें, आपने जिनसे वोट लिए हैं कम अज कम उन उस इलाके के लोगों को ये तो बताएं कि भाई हमारे कम्युनिटी के अंदर क्या क्या कौन कौन से कानून लागू है, क्या क्या हो रहा है क्या क्या नहीं हो रहा, हमारे पैसे कहाँ जा रहे हैं। आप ये देखिए कि यहाँ के जो अब गवर्नमेंट्स हैं ऐसा में तब्दीली आ रही है, सोशल डेमोक्रेट के अंदर भी तब्दीली आ रही है, और सोशल डेमोक्रेट के अंदर जो है वो इतनी ज्यादा तब्दीली आ रही है कि वो अब जो है वो जो यंगस्टर्स हैं वो काफी तब्दील होकर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम लोग जो है इसको वापस लाएंगे। एक तबका कह रहा है कि हम इसको लाएंगे वापस जो पुरानी सोशल डेमोक्रेट थी, और एक जो इस वक्त रूलिंग तबका है वो ये चाहता है कि हम पावरफुल हैं, हम ही रहेंगे और हम ही हर सूरत में जिस तरह भी हमें ये गोभी मूली यानी कि पॉलिटिक्स में जो भी हमने बेचना है, फॉरनर्स के खिलाफ बात करनी है, मुसलमानों के खिलाफ बात करनी है या किसी और के लिए बात करनी है, तो हम जिस तरह भी है वोटर को मुतमिन करके हम इसके ऊपर छाए रहे। तो इस तरीके से हुकूमतें नहीं बनती।
1: तो यहाँ पे मुसलमानों का सिर्फ मुसलमान लेना, नाम लेना ही तो काफी नहीं होता। कमर बात को मुसलमानों की बात, आपकी बात में बड़ा वजन है शाह साहब। इस बात को मैं खबर की शक्ल में भी दे रहा हूँ कि सोशल डेमोक्रेट अपनी बाकायदा तैयारी कर चुकी है कि वापस अपने सोशल डेमोक्रेट के पुराने दौर में वो नौजवान बच्चों को तैयार कर रही है। आपकी बात खबर ठीक है।
0: देखे ना यही चीज है कि अगर आप इनको देखते हैं कि क्या हो, आप देखेंगे ग्रीनलैंड का क्या हुआ। कल ट्रंप ने और उसके जो नायब सदर है उसने ये वाजा कर दिया है कि ग्रीनलैंड जो है ये ग्रीनलैंड ये हमारा है। उन्होंने उन्होंने ये नहीं कहा कि ये डेनमार्क का, उन्होंने कहा ये हमारा है और हम इसको ये भूल जाएंगे डेनमार्क वाले। तो हमारी गवर्नमेंट जो है ये क्यों नहीं बात कर रही है, क्यों इतना सरमाया यूक्रेन के अंदर और दूसरे ममालिक के अंदर लगा रही है, अपने यहाँ के जो हमारे बेकार पड़े हुए हैं लोग जो यंगस्टर्स हैं इनको क्यों नहीं अपना फोर्सा में इनको जॉब देती है, इनको लेके जाते हैं, इनको जाके ग्रीनलैंड में सेटल करें, इनको फैमिलियों को पैसा दें, इनको अच्छे से अच्छे कामों पे वहां जॉब पे लगाएं। देखिए वहां पे आगे भी पाकिस्तानी रह रहे हैं ग्रीनलैंड के अंदर, वहां पे काफी
1: इसका हाल तो जमहूरी तरीका ही होता है ना। देख रहे ना आप, शहर घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं, सारे कम्यूनों में को आप जानते हैं। अगर आप कोपेनहेगन शहर की बात कर रहे हैं तो अगर आप जाएं तो वहाँ गाड़ी चलाते वक्त आपको पार्किंग नहीं मिलती, आपको किसी जगह भी आपका कानूनी हक है, आप जो रोड टैक्स पे कर रहे हैं, इंश्योरेंस दे रहे हैं, सारी चीजें आपकी लाइसेंस एवरीथिंग इज ओके, लेकिन उसके बावजूद जो आपका हक है आपको पार्किंग नहीं मिलती। तो शाह साहब कहीं से कोई आवाज उठी, कोई बंदा खाली बयान देने से सारे काम ठीक नहीं हो जाते, कोई ऐसा जमहूरी हक हुआ, किसी ने जाकर टाउन हॉल के सामने अपना हक मांगा हो, किसी तंजीम ने, किसी सोसाइटी ने, किसी सियासी जमात ने, किसी डैनिश सियासी जमात ने, किसी पाकिस्तानी लोकल सियासी जमात ने या गैर मुल्कियों ने कोई ऐसी बात की। हर वक्त शाह साहब जो इन्वायरमेंट बनी हुई है उसकी तरफ आप तवज्जो करें कि हम लोग सोच क्या रहे हैं।
0: देखिए ये हमारी सोच बहुत ही जीरो है, मैं दिल से ये बात कर रहा हूँ, मुझे बहुत रंज है अपने यंगस्टर्स पे और उन सियासतदानों पे जो जो डेनिश सियासत को अभी तक समझ नहीं पाए। वो यही समझते हैं कि हमें जुबान आती है और हम बहुत बड़े सियासतदान हैं, ये कुछ भी नहीं समझ सके। असल में मसला ये है कि सबसे ज्यादा वोट इनिशिएशन को और एसएफ को दिए गए शहर के अंदर से, कोपेनहेगन के अंदर से, वेस्ट आइन के अंदर से, इन लोगों को सोशल डेमोक्रेट को, इनको सबसे ज्यादा फॉरनर्स ने वोट दिया। क्या इन्होंने जो टैक्सियां चलाते हैं, बसें चलाते हैं, जो ये वाहन चलाते हैं, ये सारे फॉरनर्स हैं, क्या इनके लिए कोई सहूलत इन्होंने रखी, जैसे आपने अभी पार्किंग का कहा, ये सड़कें इन्होंने तंग करके अपने साइकिलिस्टों के लिए इन्होंने सब कुछ काम कर दिया है। इन्होंने साइकिलिस्ट जो है, जो साइकिल वाले हैं, उनके लिए इन्होंने बहुत काम कर दिया है। अब आप ये देखिए कि ये जो इलेक्ट्रिक साइकिल है, बाइक है, ये इससे इतने ज्यादा एक्सीडेंट हो चुके हैं, इतने ज्यादा बूढ़े लोग और दूसरे साइकिलिस्ट जो है वो हादसे में जख्मी हुए हैं, कारों के साथ ये टकरा जाते हैं, लेकिन नहीं, कोई ऐसा कानून नहीं। जहां भी प्रॉब्लम है, कार वाला प्रॉब्लम है या वो जो पैदल चलने वाला है वो प्रॉब्लम है।
1: साइकिलिस्ट की आप बात करते हैं, इनके लिए जगह बड़ी की जाती है, इनको सहूलियात दी जाती हैं, इनको जो राइट्स जो है बहुत ज्यादा होते हैं। अगर एक्सीडेंट हो जाए इनको रास्ते में अपना फुटपाथ पे भी उनको सबको सहूलतें मिल जाती है, जेबरा क्रॉसिंग पे भी मिल जाती है, दाएं बाएं मुड़ने में इनको सहूलियात दी जाती हैं। अगर गलती हो जाती है तो वो गाड़ी चलाने वाले की गलती है। तो शाह साहब ये आप शहर में खुद जाकर देख लें कि साइकिलों ही की वजह से शहर की ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो धर्म भरम है।
0: इसीलिए कि ये कहते हैं कि ग्रोने ट्रैफिक, मैंने आपको पहले कहा ना कि इसके अंदर ग्रीन ट्रैफिक जो ये चलाना चाहते हैं, जो ये इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलाना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक बसें चलाना चाहते हैं, विदाउट ड्राइवर्स के, इसके अंदर बहुत ज्यादा मसाइल बढ़ चुके हैं और ये उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो यही चाहते हैं कि हर एक चीज है, हम बैठे हैं टेस्ला गाड़ी या कोई भी कंप्यूटराइज गाड़ी हमारे पास है, हम स्टीयरिंग पे आगे फ्रंट पे हमारे कोई तवज्जो नहीं, हम बैठे हुए कंप्यूटर पे बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लिख रहे हैं, उसके बाद हम मोबाइल पे बात कर रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। खुदा सडनली कोई बंदा भागे आगे आ जाता है, गाड़ी खुद ऑटोमेटिकली ब्रेक नहीं मार सकती, उसका डिस्टेंस होना चाहिए। एक ऑब्जेक्ट आपके सडनली सामने आ जाता है तो आपके पास तो चार, आप तो हर गाड़ी जो है बेशक उसके ऊपर आप ड्राइवर भी है, जब तक आपके आंखें काम नहीं कर रही, आपके हर जगह से फोकस, ये कहते हैं जी फोकस, उसके बावजूद जो स्वीडन ने अब क्लियर किया, इससे पहले नॉर्वे ने किया था, उससे पहले दूसरे ममालिक ने किया, तो ये चीजें जो है इसके ऊपर हमें गौर करना चाहिए। सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पे हमें जो इस्लामिक नजराती लोग हैं उनको फ्रंट पे आना चाहिए। यहाँ पे हमारे DMU है या हमारे DMC है, DMCI है, ये कहाँ चले गए हैं, ये क्यों अपनी नजरियात में खुद ही गुम है, कहते हैं कि हमें तो कुछ नहीं हुआ हम क्या करें। देखिए जब कानून बनते हैं तो वो आपकी इसी खामोशी की वजह से कानून बन रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कि इनको दबाओ, इन कानूनों को बनाने के पीछे कौन लोग हैं, ये सबको वाजह है कि कौन यहाँ पे पावरफुल है, कौन यहाँ पे माफ चाहता है, कौन यहाँ पे ताकत चाहता है। तो जब तक आप उनको तंग किए बगैर अपने आप को पावरफुल नहीं करेंगे तो आप कभी भी अपना मसाइल लेकर नहीं आएंगे। मैंने आज तक कभी भी किसी डिबेट के अंदर कभी भी किसी बंदे को ये सुनते हुए नहीं देखा कि ये चीज जो है ये खिलाफ आइन है और इसके अंदर आपने ये लॉ फोर्सेस लेके आया ये गलत है। यहाँ पे लोग कहते हैं जी नहीं जी हमें कुछ नहीं है जी, हम सब कुछ कर लेंगे और खुद जो है वो उनकी कोई रसाई तक नहीं होती। तो ये बात ये है कि यहाँ पे हमारे यंगस्टर जितने भी हैं, आप देख रहे हैं अल्बर्ट रोड कम्यून में देख रहे हैं, आप विदोवर में देख रहे हैं, आप कोपनहेगन में देख रहे हैं, क्या ये बाहर निकलेंगे इन सड़कों के ऊपर जब ये मंजूर होते हैं, ये बिल मंजूर होते हैं तो ये इनके बकायदा कमेटियों से मंजूर होके आते हैं, इनके सामने इनकी फोर्स ले रखी जाती है कि अब हम फलानी फलानी सड़क को तंग करने जा रहे हैं, क्या जी बहाना क्या जी, वहां पे स्कूल है वहां पे बच्चे, अब बच्चे जो हैं वो पैदल तो चलते नहीं है, वो तो जाते हैं कारों में आते हैं, कारों में बैठ के चल जाते हैं, अगर वो बाइक चलाते हैं तो वो बाइक जो है उनके लिए सिक्योरिटी बहुत बड़ी है, वो तो उसके ऊपर आसानी से चले जाते हैं। और ये कितने घंटे का काम होता है, ये एक घंटा सुबह एक घंटा दोपहर को, ये शाम को जब वो घर में जाते हैं, बाकी तो सड़कें तंग होती हैं और जब लोग ट्रैफिक के अंदर फंस जाते हैं। अब आप ये देखें कि इस वक्त इतनी खुदाई हो चुकी है, इतना वाया अबाइड हो रही है पूरे कोपनहेगन के अंदर, आप यकीन नहीं करेंगे कि आप टाइम पर पहुंच नहीं सकते। मैं अगले दिन जा रहा था, क्या नाम है, मैंने शहर जाना था तो मैं जा रहा था, तो मैं वायलेंट सली के अंदर से मैं जब गया तो मुझे वो उसके अंदर से मुझे गुजरते हुए इतनी तकलीफ हुई और दूसरी जगहों से कि भाई मैं क्या करूं, वायलेंट सली बिल्कुल अमा में बंद थी। और
1: शाह साहब क्या कहीं से आवाज उठी है कि गाड़ियों पर पाबंदी लगाई जाए?
0: जी बिल्कुल, ये इसीलिए तो ये साइकिलों को ला रहे हैं, ये इसीलिए तो ऑफलाइन ट्रांसपोर्ट को ला रहे हैं।
1: सब साइकिलों से भी तो ज्यादा रश होता है, एक्सीडेंट होते हैं, छोटी गाड़ियों को शहर में रखे हैं, बड़ी गाड़ियों क्यों शहर में रखते हैं, इसी तरह इजाजत क्यों देते हैं, अगर मुल्क गाड़ी की स्पीड आप शहर के अंदर 30 या 40 मैक्सिमम रख सकते हैं तो आप गाड़ी वो क्यों आती है शहर में कि 200 किलोमीटर की स्पीड में 250 किलोमीटर की स्पीड में दुनिया की मॉडर्न तीन और बड़ी गाड़ियां शहर में घूम रही होती हैं, वो जो कहते हैं जी इलेक्ट्रिक है इजाजत है, पेट्रोल की गाड़ी नहीं होनी चाहिए, डीजल की गाड़ी नहीं होनी, अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी को शासा में इजाजत है तो वो भी तो छोटी होनी चाहिए।
0: बिल्कुल आपने सही बात कही, पेट्रोल और डीजल गाड़ियों से बड़ी गाड़ी है, बजरी गाड़ी है, लेकिन मसाइल जो है ये किसने हल करने हैं, ये हल करने हैं कि आप वहां पे फोर्स लेके जाएं, आप वहां पे उनसे बात करें। यहाँ पे बड़े बड़े दिन होते हैं, हमारे लोग बच्चों को लेके अपनी समर फेरिये पे आगे पीछे जाते हैं और किसी ने, अब एक मैं ये सुन सुन के तंग आ गया हूँ जी, मैंने फलाना आर्टिकल लिखा। उस आर्टिकल्स के ऊपर ये होता है कि कुछ लोग जो होते हैं ऑलरेडी जो बैठे होते हैं अच्छे आर्टिकल्स के ऊपर डिबेट करने के लिए, वो आपके ऊपर लिखते रहते हैं और 90% जो लोग हैं वो ऐसी डिबेटों को फेसबुक को और दूसरे सोशल मीडिया को पढ़ते ही नहीं है। वो कहते हैं जी ये हमारे पास की बात नहीं। उनके लिए क्या है? उनके लिए यह है कि रेडियो उनके लिए है, मीडिया जो वॉइस है। अभी मैं गाड़ी चला के कहीं जा रहा हूँ तो मैं सोशल मीडिया को सुन नहीं सकता, अपना वॉइस मेल जो है वो सुन सकता हूँ, लेकिन मैं पढ़ नहीं सकता, मैं उसको बिल्कुल कोई कमेंट्स नहीं लिख सकता। लिहाजा अगर मैं सुन रहा हूँ, रेडियो को सुन रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी। मैं उसको मेरा जहन जो है, मेरा दिमाग जो है वो काम करेगा, मैं उसको सुनता रहूंगा कि ये बातें हुई। लेकिन क्या हमारे लोगों ने ये सोचा है कि आज ये फलाने के साथ हो रहा है, कल हमारे साथ होगा? आप देखें कि बेलफास्ट आयरलैंड में क्या हुआ, वहां एक सूडानियन अफ्रीकन ने एक बंदे का गला काटा तो वहां पे कितने हजार लोगों के घर जला दिए गए और कितने सौ लोगों को जख्मी कर दिया गया। तो क्या ये वहां इतनी बड़ी गवर्नमेंट जो है उसको आयरलैंड के अंदर, बेलफास्ट के अंदर वो कंट्रोल नहीं कर सकी? तो ये जब हादसात होते हैं तो ये लोगों को जब आप तंग करते हैं, मैंने ये देखा है कि हमारे जो ये राजा साहब, यकीन करें आप भी गाड़ी चलाते हैं, बाद ये जो हमारी वागोन होती है ना 3500 का किलो वाली, ये इनको देखा कि जो इन्होंने बीच में वो रेड बैंड बनाया होता ना, जिसके ऊपर कोई एमरजेंसी हो तो आप गाड़ी खड़ी कर सकते, ये उसके आगे लाइने लगी हुई है, उसके ऊपर से क्रॉस करके जो आगे फ्रंट पे चले जाते हैं। और इतना खौफ आता है कि अगर ये किसी दूसरी साइड से आने वाली गाड़ी से टकरा जाए या किसी कोई बच्चा भाग के सड़क क्रॉस करता हो तो उसके नीचे नहीं परवाह, टांगे रखी हुई है डैशबोर्ड पे, सिगरेट पी रही है, टेलीफोन लगाया हुआ है और कानों से, और फिर कहते हैं जी कि ये कौम जो है ये बुरी है।
1: शाह साहब एक चीज को देखिए आप, हर जगह खाने पीने की चीजें मिलती हैं, हर कोने खतरे में, हर स्टोर में अब खाने की चीजें, अब होटल बन गए हैं, सारा कुछ बन गया, जहाँ भी स्टॉल वगैरह लगते हैं लोगों का रश होता है, सब कुछ होता है। और उसके बाद शाह साहब आपने देखा कि स्टालों पे एक ही दस्ताना पहना होता है दोनों हाथों में, और उसके बाद एक ही कलर का, एक ही जो ट्रेड का पहना होता है, वो हर जगह वही हाथ मारते हैं, वो सुबह से लेकर शाम तक उसी दस्ताने से सारे काम करते हैं। तो शाह साहब बैक्टीरिया होता क्या है?
0: इनसे कभी पूछेंगे, इन्होंने हाइजीन कोर्सेज किए हैं क्या वहां पे? इन्होंने जाके तो ये चीजें सीखी हैं कि भाई हम कितने कोर्सेज पे जाएं, हमने किस तरह पानी किस तरीके से हाइजीन को खत्म करना है। आपको ने बात किया तो मैं अभी आपको ये बता दूं कि पिछले हफ्ते बहुत बड़ा एक जगह पे एक बाजार के अंदर छापा पड़ा, तो वहां पे सुंडिये किए, सुंडिये जिसको कहते हैं, वो गोश्त के ऊपर, मुर्गी के गोश्त के ऊपर आपको मैंने भेजी थी वो अखबार की कटिंग जो उन्होंने गवर्नमेंट ने भेजी है, 75,000 डॉलर को जुर्माना हुआ और जितना भी गोश्त वाला था वो सब कुछ उसका हर चीज उठा के ले गए वहां से, वो उसको लाखों का नुकसान हो गया। तो ये क्या करते हैं, उसका कीमा बना लेते हैं। आप कभी जाएंगे गोश्त वाली दुकानों पे, ये जो पलड़े जिसको कहते हैं और दूसरे गोश्त जो आपके वो उतारते हैं, आप रान लेते हैं या कोई चीज लेते हैं बकरा साहब का, उसके वो ऐसे करके टेबल पे फेंकते जाते हैं, उसके साथ कितने वायरस और जरासीम जो है वो लग जाते हैं। अगर वो जमीन पे गिर जाता है तो उसको ये वॉश नहीं करते, धोते नहीं, उसको डाल के तो उसकी कीमा बनाकर ये जो है वो सस्ता कीमा बेचते हैं। मैंने जिंदगी में एक दफा इस तरह का एक पाकिस्तानी दुकान से मैंने देखा, तो ईद के दिन वो हरा नीला ये कीमा निकाल के तो उसको जब मशीन में डाल रहे थे तो वो आगे से रेड होके निकल रहा था, तो मैंने कानों को हाथ लगाया, मैंने कहा आज के बाद मैं कभी भी कीमा इनसे नहीं लूंगा, बल्कि खुद गोश्त लेके खुद का कीमा बनवा के लेके जाऊंगा। और उस दिन से, और उनको मैंने कहा कि यार, मेरे एक दोस्त को मैंने बात बताया, उसने कहा ठीक है, उन्होंने उनकी दावत कर दी कि आओ हमारे घर आके खाना खाओ, तो उन्होंने कहा यार हमने तो कीमा, हमने उनको नहीं बताया कि हम किस तरह कीमा बनवाते, उन्होंने कहा, वो कहने नहीं हम कीमा नहीं खाएंगे, हम दूसरा दाल चावल कोई आया तो दूसरी चीज हम खा लेंगे, ये नहीं खाएंगे, क्योंकि उनको पता था कि किस तरीके का कीमा वो बेचते हैं। तो हम लोगों को ये हराम चीजें जो है ये कभी भी जगत का रास्ता नहीं बनेगा, ये सबसे बड़ा ये रास्ता है जो रुकेगा।
1: लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान तो कहते हैं ना,
0: हजार दफा के आप नमाजें पढ़े, कलमे पढ़े, जो मर्जी, लेकिन जब आप हुकूक अल अल्बाद के अंदर ये धोखा दही करेंगे, आप इस तरह के काम करेंगे तो आप कभी भी जन्नत का रास्ता आप पा नहीं सकते।
1: शाह साहब, जिस मुल्क में मीर जाफर, जिस कम्युनिटी में मीर जाफर, मीर सादक जैसे लोग हों, कितना भी मुल्क एस्टेब्लिश हो, कितने भी लोग समझदार हों, लेकिन उसके अंदर मीर जाफर सादक हों, तो क्या वो मुल्क चल सकते हैं?
0: देखिए जी, ऐसे लोग जो हैं वो मुल्क को नुकसान तो होता है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है, और इन्हीं की वजह से मुल्क जो है वो उसके ऊपर दूसरे लोग छा जाते हैं। अब आप ये देखें कि मैं आपकी बात को आगे लेके चलता हूँ कि इंग्लैंड के अंदर जब आज से 10 साल पहले वहां पे ये वोटिंग हुई कि आपने यूरोपियन यूनियन में रहना या यूरोपियन यूनियन से बाहर निकला है, तो सबसे ज्यादा वहां पे जो यूरोपियन यूनियन की मुखालफत की गई वो फॉरनर ने की। उसके अंदर पाकिस्तानी भी शामिल थे, इंडियन भी, दूसरे सारे, उन्होंने सबसे ज्यादा वोट बढ़ चढ़ के दिया कि हम किसी सूरत भी जो है हम यूरोपियन यूनियन के साथ ही रहना चाहते। लेकिन अब जो वो कह रहे हैं कि किसी सूरत से भी है हम वापस जाएं यूरोपियन यूनियन के अंदर, इस वक्त 57-58% लोग जो है वो कह रहे हैं कि हमें जबरदस्त, जो यंगस्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि हमें यूरोपियन यूनियन से बाहर रहने से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, हमारी इकोनॉमिक हब्जा खत्म हो रहा है, हमें हमारा सत्यानाश हो गया, और हो सकता है कि आज या कल इनका प्राइम मिनिस्टर जो है उसको उतार दिया जाए। उसको पार्टी ने कई दफा कहा कि तुम रिजाइन कर दो, लेकिन प्राइम मिनिस्टर रिजाइन नहीं कर रहा, लेकिन रात को उसके ऊपर काफी मसाइल उठे हैं, और हो सकता है कि एक दो दिन में वो उसको जबरदस्ती पार्टी के फॉर्मेनशिप से उतार दिया जाए। तो ये जो चीजें हैं, बाज लोग जो हैं वो दूसरों के कहने के ऊपर चलते हैं, वो इस तरह मीर जाफर सादक बनते हैं, अपनी कौम को नुकसान जरूर देते हैं। यहाँ हमारे डेनमार्क में मैं अपने यंगस्टर से यही बात करूंगा, इससे पहले कि ये लोग हमें मामूली मामूली बात पे हमें निशाना बनाए, हमें ये करें, हमें चाहिए कि हम आगे आए। अब जो लोग कहते हैं जी कि हम फलाने डेलीगेशन के अंदर गए, हमने जाके फलानी जगह पे इस्लाम की बात की फलानी, पहले तो हमें ये बात करनी चाहिए कि क्या हम अपने फिरके की बात कर रहे हैं या हम पूरे मुसलमानों की बात, मुसलमानों की बात जब होती है तो वो दीन इस्लाम की बात होती है, वो कुरान की बात होती है। क्या हम इस्लाम को यहाँ रजिस्टर्ड कराने में हम कामयाब हो सके? मैं कहता हूँ जीरो। आज तक हम लोग यहाँ पे इस्लाम को रजिस्टर नहीं करा सके, क्योंकि जब भी हम जाते हैं तो हम फिरकों में और दूसरे कल्चर सेंटर क्या है?
1: क्या वजह तो ये तो नहीं हो सकती? आप देखें जितनी भी तंजीमात बनी होती हैं, सियासी कह लें, मजहबी कह लें, तो लेकिन इनके गुरु यहाँ नहीं होते, इनके गुरु बाहर बैठे होते हैं।
0: बिल्कुल ही, इनके जो गुरु बाहर बैठे हैं वही गुरु तो इनका सत्यानाश कर रहे हैं। उनको तो पेमेंट हर जगह होती है, इनके गुरु देखे जहाँ दिल चाहे जाए, जिस मुल्क में जाए उनको असाइलम मिल जाएगा, वो जाके रहते हैं, उनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं सबके, लेकिन इनको इनको क्या मिलता है? इनको कुछ चीज नहीं मिलती। इनके इन्होंने बजाय यहाँ पे ये शुक्र करने का कि हमें एक अल्लाह का घर बनाने में, देखे यहाँ पे वहां पे कल्चर सेंटर है, वहां पे इमाम बाहर का, कौन सी सवाए दो मस्जिद के, एक अली मस्जिद एक कतर वालों की, कौन सी मस्जिद यहाँ पूरे डनमार्क के अंदर रजिस्टर्ड है मुसलमानों की? कोई नहीं। अब ये कौन से है कि वो फिरकों में बैठे हुए हैं। अब फिरकों में जब आप बैठे हुए हैं तो फिर आप एक प्लेटफॉर्म पे कहते हैं वो यार मैं अमेरिका वाले मस्जिद को क्यों आगे आने दूं, वो कहते हैं जी अल्बसरा मस्जिद क्यों आ गया है, ईसाई मस्जिद क्यों आ गया है, और ये अली मस्जिद क्यों? ये जब तक ये इत्तफाक नहीं करेंगे, ये इसी तरीके से
1: ये सब अल्लाह के घर हैं, बड़े खूबसूरत बने हुए, लेकिन इसमें यकजहती होनी चाहिए।
0: ये अलग घर नहीं है, ये अलग अलग अलग का घर तो मेरा घर भी है, मैं इधर डेली नमाज पढ़ता हूँ, मैं पांच वक्त तहज्जुद भी पढ़ता हूँ, पांच वक्त की नमाज भी पढ़ता हूँ, हर बंदा जो है वो अपने घर में अल्लाह की नमाज पढ़ता है। ये जब तक आप उसको अल्लाह के नाम पे नहीं रखेंगे, जब आप उसको किसी और के नाम पे चलाएंगे तो वो अल्लाह का घर तो नहीं है। अल्लाह का घर तो वो है जहाँ सुन्नी शिया वहाबी हर कोई आगे अल्लाह की इबादत कर सके, जहां पे कोई तफरका ही नहीं, वो हर एक के लिए मेक नो डिफरेंस के कौन सा इमाम आगे नमाज पढ़ा रहा है, पीछे जो भी खड़े हैं वो अल्लाह का घर है, और बाहर लिखा होना चाहिए कि ये अल्लाह का घर है, हम इसके अंदर सिर्फ इबादत करने के लिए आते हैं। कल्चर सेंटर्स और ये चीजें हमारे लिए आजादी बात नहीं है, ये हम कहीं भी बना सकते हैं, किसी को घर लेके कहीं बाहर कोई जगह लेके कमरा लेके वहां अपने कल्चर बना सकते हैं, ये हमें इस गवर्नमेंट ने इजाजत दी है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि अल्लाह के घर की, तो फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए कि हम सब एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हैं, हम सब मुत्तफिक हैं और हम दीन अलाई के सवा दूसरी कोई बात नहीं करते। ठीक है, हमें फिरके बने हुए हैं,
1: शाह साहब बात तो हम सब करते हैं। आप देखें ना कि ये जितनी भी जगह बनी हुई है, मस्जिद है या कल्चर सेंटर है, जो भी है, साफ सुथरे माहौल में आप जाते हैं, आपको साफ सुथरे कारपेट मिलते हैं, इंतजामिया के लोगों ने बाथरूम और उसके बाद वजू करने वाली जगह सारी साफ होती हैं। लेकिन जब हम जाते हैं तो हम उन चीज़ों को इस तरह इस्तेमाल करते हैं जैसे ये सारा मुफ्त का माल है, ये हमारे, हमें हर चीज़ के पानी भी हम ज़ाया कर सकते हैं, गीले पाँव जो हम कारपेट पे भी मार सकते हैं। तो शाह साहब हम अपनी कोई जिम्मेदारी पूरी करना नहीं चाहते। मैं किसी को कह रहा हूँ, कोई दूसरा किसी को कह रहा है, कोई तीसरा किसी को कह रहा है, शाह साहब ये तो इंडिविजुअल हर बंदे को ठीक होना पड़ेगा।
0: जब ये मस्जिद ये कल्चर सेंटर बने थे उस वक्त हर किसी के जहन में ये बात थी कि ये हमारे तफदीन की जगह, ये हमारे अल्लाह के आगे सदर नशीन होने की जगह, हम सब लोग यहाँ पे भाई भाई हैं, यहाँ कोई गुजराती नहीं, लाहौरी नहीं, क्वेटा का नहीं, हजारे का नहीं, कोई, हम सब यहाँ पे नमाजें पढ़ेंगे, यहाँ पे ये करेंगे। अब इनको सियासी दर्जा बहुत ज्यादा मिल गया, अब ये इलेक्शन में इसको मिस यूज कर रहे हैं, ये फलाना है वो फलानी मस्जिद में उसको सपोर्ट मिल रही है, उससे किसी और को सपोर्ट नहीं मिल रही। और ये वाजह इंडिकेटर्स जो हैं, जिन लोगों के साथ ज्यादती हुई है, जिन लोगों को वोट नहीं मिले, बड़े बड़े काबिल लोग थे जो आगे नहीं आ सके, उसकी वजूहत यही चीजें बनी है। और हम लोगों को, मैं तो लोगों को एडवाइस कर रहा हूँ कि इस चीज को आप खत्म करें, आप सब लोगों को लेके चले। अगर आप किसी को बुलाते हैं तो आपके एक एडवाइजरी काउंसिल होनी चाहिए कि आप हर कम्यून के अंदर, आप जितने भी आपके पॉलिटिशियंस हैं या एक्स पॉलिटिशियंस हैं, वो ये नहीं कि वो किस जमात से तलक रखता है, अब उन सबको बुलाएं। कभी कोई बेवकूफ आदमी जो है वो भी अकल की बात कर देता है, कोई ऐसा बंदा जो
1: आखिर में दो मिनट, आप भी कहीं सफर में जाना है आपने, शाह साहब देखें 1400 साल पहले आजादी मिली, लोग आजाद हो गए, तो आपको क्या समझते हैं आज भी लोग किसी न किसी शक्ल में गुलाम नहीं है?
0: बिल्कुल जी, यही तो आज ये जो मुहर्रम का महीना शुरू हुआ है, ये हमें दूर कर रहा था अपने दीन से। तो इसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने जो कुर्बानियां दी वो इसलिए दी कि आपको गुलामी से आजाद करने के लिए, आपको दीन अलाई के अंदर तरफ मुतवजो करने के लिए उन्होंने ये कुर्बानियां दी। और इसके लिए कोई ये नहीं था कि उनको सतरत चाहिए थी या कोई चीज चाहिए, उनको सिर्फ ये था कि जो अल्लाह का हुक्म है वो पूरा करे। और इनसे हमें गुलामी से आज कोई भी हमें ये नहीं कह सकता कि आप गुलाम है। मैंने बारहा ये कहा है कि ये जो हमारी सोच है ना कि फलाना कमी है, फलाना ये है, फलाना देखो जी गाँव में फलानी चीज करता था, इससे हमें बाहर निकलना चाहिए। ये इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है, मसाजिद में भी ये होना चाहिए कि ये जो जिनको आप छोटे समझते हैं ये आपसे बड़े हैं, इनका इनका एहतराम करें। ये जरूर है कि आप अल्लाह ताला ने कबाइल बनाए हैं, लेकिन उन्हीं कबाइल के लोग जो है अगर वो कोई गुर्बत में आ जाते हैं और वो ईमानदारी से कोई ऐसा काम कर बैठते हैं जो उनकी जात से नसर किया जाता, तो ये गलत बात है। आप उसको वो आप कलमा वो भाई है आपका, आप उसको ये नहीं कह सकते कि भाई तू ये है तू ये है। हाँ, कोई किसी के अंदर कोई बुराई है तो आप उसको उसकी उसको अच्छाई की तरफ लेके जाने की कोशिश करें, उसको समझाए। ये तो बड़े बड़े लोगों में भी बुराई है, उनमें सबसे ज्यादा बुराई होती है, लेकिन लोग उनसे खौफजदे इसलिए होते हैं कि वो बड़ी बिरादरी के लोग हैं या उनके पास पैसा बहुत है, वो ताकत में है, तो उनकी वो बात जो है बुराई बुरी बुरी चीज को भी वहां करते हैं। तो राजा साहब आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब तक अब हमने ये इस माह मुहर्रम से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत और उनके साथियों की शहादत से हमने कोई दर्स और कोई सबक नहीं लेना और हमने झूठ पे झूठ ही बोलते जाना, तो फिर हमारा कोई रास्ता नहीं, हमारा कोई उल्वेल नहीं है। हमें अपने यंगस्टर्स को इकट्ठा करना चाहिए, इनको बुलाना चाहिए, इनसे बात करनी चाहिए कि हमें किस तरीके से रिस्पेक्ट करना चाहिए दूसरे लोगों की भी। जी राजू,
1: شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے قیمتی ٹائم شیئر کیا.
0: اللہ حافظ. اگر کسی کا دل دکھا تو اسے معذرت. اللہ حافظ.
1: سامعین ناظرین, یہ تھے سید توقیر حسن بخاری شاہ صاحب. سامعین ناظرین, ہمارا کسی سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے, کوئی بات کرنا چاہتا ہے, اپنی رائے دینا چاہتا ہے. ہم جمہوری ملک میں رہتے ہیں, ہر آدمی کو اپنی بات کہنے کا, اپنی رائے دینے کا حق ہے. وہ ہم سے رابطہ قائم کر سکتا ہے, اپنی رائے دے سکتا ہے.
2: سامعین کرام, ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: औज़ु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामान नाज़रीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सामान नाज़रीन, हमने कहा था आपको साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। आपको पता है कि मौसम के लिहाज से, सियासत के लिहाज से, और कोपेनहेगन के देख लें या जितने जितने बड़े शहर हैं, डेनमार्क पूरे की बात कर लें, तो ये जो टैक्सी ब्रांच है इसमें बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। इसमें 10-12 टैक्सियों के भी मालिक हैं, 2 टैक्सी के भी मालिक हैं, 1 के भी मालिक हैं, तो ये वॉन मैन गिने जाते हैं लोग जो है ना। इस पर बड़ा काम हुआ, ये एक बहुत बड़ा जो है उसे कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी फर्म है जो मुख्तलिफ नामों से चलती है, और ये बड़े मजबूत लोग हैं, ये कमज़ोर लोग नहीं हैं, इनकी बड़ी पावर है टैक्सी ब्रांच की। और डेनमार्क में टैक्सी के बगैर निज़ाम ही नहीं चलता, गो के बसें चलती हैं, ट्रेनें चलती हैं, मेट्रो चलती है, लेकिन उसके बावजूद ये ब्रांच जो है साला साल से नुकसान की तरफ जा रही है। इसको नुकसान कैसे हुआ? बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियां आ चुकी हैं, लेकिन दिन ब दिन जो है ये नुकसान की तरफ जा रहे हैं, ये इनके हकूक जो है वो कम से कम होते जा रहे हैं। तो इस ब्रांच को नुकसान जो है वो किसने दिया और इसको नुकसान कैसे पहुँचा, तो यही कुछ जानने के लिए, आपको बताने के लिए हमने कोशिश की है कि हमारे साथ शायद नसीम हैं जो कि खुद भी इस ब्रांच से वाबस्ता हैं और बहुत सालों से इस निज़ाम को समझते हैं, बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं। बाकी भी कोई शामिल होना चाहता है तो उसके लिए भी कोई मसला नहीं है। तो शायद नसीम, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं।
0: जी हाँ, आपको भी खुश आमदीद।
1: शायद मैंने कुछ काफ़ी तमीद बांध दी है। सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं। मौसम आज बहुत अच्छा है, गर्मी ज़्यादा है, और ख़ासकर जो काम करने वाले हमारे भाई हैं टैक्सी ब्रांच से, लिसनर हैं, वो सुन भी रहे होते हैं। तो ये आपकी ब्रांच को दिन ब दिन क्यों नुकसान हुआ और नुकसान किसने दिया, इसकी वजूहात क्या है, ये ज़रा सारी कहानी और सारी तारीख तो बताएं।
0: जी राजा साहब, आपने बहुत अच्छी तमीद बंदी, आपने खुद ही बता दिया कि इस ब्रांच के मतलब थोड़ा सा। तो मैं इस ब्रांच के मतलब खासकर डेनमार्क और कोपेनहेगन में ये बताता चलूं, मैं 26 साल पीछे जाता हूं, ताकि 26 साल से जो है सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाए। थोड़ा सा उसको जूम आउट करें, जूम इन नहीं रखना चाहिए, हर चीज को जूम आउट करके भी देखना चाहिए ताकि आपको पता लगे कि ये कहां से शुरू हुआ। सबसे पहले तो मैं बताता चलूं कि टैक्सी ब्रांच में इस वक्त से लेके लास्ट 25-26 सालों से हमारे पाकिस्तानी भाई जो इसमें सबसे ज्यादा, यानी कि आप कह लें इस वक्त तो 90% से भी से ऊपर है इस ब्रांच में, ड्राइवर भी हैं और वो क्या कहते हैं बोनमैन भी हैं, जो बोनमैन का मतलब है कि ये इसके कितने मालिक हैं। और आज से 25-26-27 साल पहले भी पाकिस्तानी काफी थे, लेकिन वो आप कह सकते हैं कि 50% या 40% से या 35 से 40 कर लें, बाकी दूसरे जो इनवानता थे जिनके अंदर अरबी और दूसरी नेशनैलिटियां इन्वॉल्व थी वो थे। उसके बाद फिर डैनिश थे, डैनिश तो उस वक्त 50% थे, वो हो गए थे आज से 27-30 साल पहले की बात कर रहे हैं, मैं 40 साल ही नहीं पीछे जाता। तो मैं सबसे पहले ये शुरू करूंगा जो मुझे याद है, जो मैंने अपनी आंखों से देखा, क्योंकि मैं खुद भी इसे मुंसलिक था, मेरे वालिद भी टैक्सी बॉनमैन थे और उन्होंने भी 40-45 साल इसके साथ मुंसलिक रहे हैं और पैसा भी कमाया इज्जत के साथ, और भी जो हमारे कुलीग्स हैं आज वो ये काम कर रहे हैं। मैं 26 साल पीछे ऐसे जाऊंगा कि मुझे याद है कि इसी चीज से जो आजकल हो रहा है, कोपेनहेगन एयरपोर्ट में पहली दफा स्वीडिश टैक्सी को उन्होंने अपनी जगह यहाँ पर बनाई कि हम अपने कस्टमर यहाँ से लेके जाएंगे और हमें जगह दी जाए ताकि हम अपनी गाड़ी खड़ी कर सकें। इसके ऊपर वावेला हुआ डैनिश जो थे वॉनमैन और ड्राइवर, जिन्होंने इसके ऊपर शोर मचाया। जब शोर मचाया तो फिर उन्होंने एक अपनी फाइनिंग बना ली, एक छोटी सी एक फाइनिंग जिसे कहते हैं आप, एक फाइनिंग का मुझे नहीं पता उर्दू में क्या निकल गया जहन में, एक
1: यूनियन बना ली,
0: यूनियन चलिए इंग्लिश में कर लें, यूनियन बना ली अपनी फौरन। वो बना के उन्होंने, क्योंकि इसके अंदर आपको ये बताता चलूं कि जो ए, ए, ए, क्या कहते हैं संसाल होते हैं जहां से आपको टूर आते हैं, वो भी उस जमाने में चार पांच किस्म के थे, छह कर लें, और वो इसके अंदर बिल वास्ता या बिल वास्ता बराह रास्त इन्वॉल्व नहीं होते, तो उनकी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं। तो उसमें ये था कि जब ये जो मैंने देखा वो इनका ये इनको यहाँ पर जगह नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है, ये अपनी जगह ठीक थे, कोई काफी खदशात थे उनको जो ये पूरे नहीं कर सके, एयरपोर्ट वाले भी और हाँ और चक्सन नेन वाले भी, मैं भी चक्सन नेन के भी ऊपर भी आता हूँ कि वो क्या था। तो क्या हुआ कि उसमें मैं उधर आऊंगा जहाँ अभी आपने पूछा हमारे मतलब हम यानी कि पाकिस्तानी और हम लोग और हम इनवान था सारे, उसमें उन्होंने स्टैक जो एक फाइनिंग थी फॉरन बनाई यूनियन, इसमें ड्राइवर भी वोमन भी इन्वॉल्व थे, और उन्होंने बाइकट कर दिया स्वीडिश टैक्सियों का एयरपोर्ट पर खड़ा ना करने का, और एक बाकायदा ऐलान हो गया एक दिन कि हम एयरपोर्ट में कोई टैक्सी आने नहीं देंगे, ना ही अपनी टैक्सी। उस दिन एक समझ लें कि एक या दो दिन का एक स्ट्राइक थी कि एयरपोर्ट से कोई टैक्सी टूर नहीं लेगी, स्वीडिश टैक्सी तो टूर आ ही नहीं सकती और हमारी भी टैक्सी, ये क्योंकि एक प्रेशर बिल्टअप करना था अथॉरिटी के खिलाफ एयरपोर्ट के खिलाफ, और ये जैसे ये जमहूरियत यहाँ पर आपको एहतजाज करना बताती है, और उसमें इन्होंने स्वीडिश टैक्सियां उल्टाई भी थी, उल्टी उस वक्त की हवारों में भी आया था यानी उल्टा दी थी बिल्कुल, वो भी डेनिश लोगों ने, डेनिश ड्राइवर्स ने, वॉनमैन ने। उसमें ये हुआ कि जिस दिन स्ट्राइक थी, एक दिन स्ट्राइक का ऐलान हो गया, कोई गाड़ी एयरपोर्ट में नहीं आ रही, एयरपोर्ट में रश है, बंदा है, उस वक्त कोई मेट्रो नहीं था, मैं ये 2000 की बात कर रहा हूँ, पहला मेट्रो 2002 में खुला था आपका क्या कहते हैं फर्स्ट पे से, कोई मेट्रो नहीं था, किसी किस्म का कोई सिस्टम नहीं था, लोग ज्यादातर वहां से टैक्सी लेते थे या अपने जो एयरपोर्ट से बसेस चलती थी उसके जरिए वो जाते थे, और उसमें बिजनेस तबका भी था, उसमें हर किस्म का तबका जो टैक्सी लेता है सुबह शाम दोपहर और वो आते हैं, तो आगे स्ट्राइक थी। ये क्या करते थे हमारे जो लोग हैं, वो जो लोग थे जो बाहर आ रहे हैं जिनको टैक्सी चाहिए, वो एयरपोर्ट से फिर बाहर आ जाते थे रोड के ऊपर जहां पर पहले होता था मैरिट होटल, आज वो मैरिट होटल उसका नाम नहीं है, उसका नाम गालिबन कोई और होटल है, मुझे उसका निकल गया, मुझे एयरपोर्ट के सामने था सबसे पहले जो बना था, उधर लोग आ जाते थे चल के, क्योंकि तब तो मेट्रो कोई नहीं था, बहुत से लोग हमारे भाई, इन्होंने स्ट्राइक की हुई थी क्योंकि वहां से बंद किए हुए थे रस्ते, डेनिश ड्राइवर्स ने, वॉनमैन ने और कुछ इनवन तभी आए थे, कुछ थे हमारे जो भाई हैं, हमारे जो वॉनमैन ड्राइवर्स जो पाकिस्तानी खासकर जो खुद देखा है मैंने आंखों से, उसमें दूसरे इनवान था भी थे लेकिन सबसे ज्यादा पाकिस्तानी, 35% तो उस वक्त पाकिस्तानी थे ना, तो बाद में दूसरे इनवान था थे, ये बाहर से टूर उठाने शुरू कर दिए इन्होंने, वहां से बाहर से ना, ये स्ट्राइक में हिस्सा लेने की बजाय काम आप करें, वो ये नहीं कह रहे थे आप काम ना करें, कहते एयरपोर्ट से टूर ना उठाएं कोई आके, क्योंकि यही हमारा स्ट्राइक, यही हमारा यही हमारे क्या कहते हैं मामले तय हुए हैं। मैंने देखा अपनी आंखों से, बचपना था, हैरान हुआ, मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हैं, एक तरफ स्ट्राइक का कह रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं उनका साथ दे रहे हैं हम, और ये आपके लिए आने वाली फ्यूचर के लिए भी अच्छा है, क्योंकि जब आप प्रेशर बिल्डअप करते हैं तो फिर आप मजबूत होते हैं, और दूसरा दूसरे को ये नेक्स्ट टाइम चांस नहीं देते कि वो आपके ऊपर हावी हो। अच्छा ये बात खत्म हो गई, ये हमारे पाकिस्तानी के अंदर 80% मैं ये नहीं कहूंगा सारे, 85% कह लें, बिल्कुल दोगले या दो दो दो चेहरे थे इनके, एक तो ये हो गया क्योंकि एक तरफ स्ट्राइक कहते थे और एक तरफ जब स्ट्राइक का टाइम आया तो उसे ये भाग गए, ये हो गया। अब आ जाए चक्सन नेन, चक्सन नेन डेनमार्क में खासकर कोपेनहेगन में इनका फ्लेस्केचो यानी कि फिस्केचो के सॉरी फिस्केचो नहीं क्रिल्पिन उसके फ्लेस्केचो कहते थे, उसके अंदर इनका कंचो होता था, ये दरअसल टैक्सी जो सिस्टम है जो आप टैक्सी का फेयर कार्ड लेते हैं वो सारा उनके जरिए होता था, एक तो शख्स फेयर कार्ड है वो तो पुलिस के जरिए, लेकिन जो फेयर कार्ड है वो आपको उधर से पास करना पड़ता था, और वो एक अदारा बनाया हुआ था वो कंट्रोल करता था कि आपको कोपेनहेगन का जो रूट होता था वन, उसके नीचे तीन नंबर होते थे, कोई भी 20-20 कर लें, 36 कर लें वगैरह वगैरह, चार नंबर, एक नंबर होता था कोपेनहेगन का जो एरिया पूरा, उसको रूट रूट कह लें, रूट तख्ती होती थी ग्रीन रंग की 10x10 की, वो लगती थी आपकी गाड़ी के पीछे, तो इस तरह फिर रॉस किल्डे आगे निकल जाए उनकी तख्ती यही थी, लेकिन 2 नंबर पे 3 नंबर वगैरह वगैरह। चक सरनेन उसको कंट्रोल करता था कि कितनी टैक्सी, क्योंकि उनके पास हर साल आते थे टोटल, हर साल टूरों के टोटल सारे संचाल से वो लेते थे, जितने भी संचाल थे जिसमें कोडान थी उस वक्त, ओइवन पील थी, अमोपो थी, खेपनाउन चाक्सा थी, नोवेस वेस्ट टैक्सी थी वगैरह वगैरह, इनसे वो टोटल जो टूरों की जो उनके पास होती थी उनके रिकॉर्ड में कंप्यूटर में, वो उनको वो पहुंचा देते थे कि इतने इतने लाख या इतने मिलियंस टूर जो है।

की रेशियो देख के, टूरों को वो देख के कि इतने टूर जो हैं, इतने मिलियन आए, उतनी टूरों की हमें जरूरत है, ज्यादा हो गए हैं जो है, तो जो टैक्सी कम हुई है 200, कोई वोमन छोड़ गया, कोई मर गया, कोई रिटायर हो गया, तो वो फिर 1800 से 1600 आ गई, फिर वो 200 बेवलिंग निकालते थे, और उसमें वो क्यू सिस्टम होता था, आप एंशनिंग यानी कि दरखास्त अपनी अप्लाई करते थे, और वो उस हिसाब से होता था कि जब किसी ड्राइवर ने 4 साल से या 3 साल से ज्यादा चलाई होती थी और वो लगातार इसको चलाता आ रहा था, तो वो उस एंशनिंग का यानी दरख्वास्त दायर करने का होता था मजाज, और वो उस सिस्टम के अंदर आ जाता था, और फिर जब वो निकालते थे तो आपकी एप्लीकेशन जो आप अपनी वो देते थे दरख्वास्तें, तो उसके अंदर आप आ जाते थे, 200 में से अगर 400 लोगों ने अप्लाई किया है तो जिस जिसका अपने साल के हिसाब से साहब है, वो हिसाब से फिर उसको उसकी बिलिंग मिलती थी, जो रह गए फिर अगली बार उस सिस्टम के अंदर आ जाते थे, इस तरह चलता था, और वो कंट्रोल ये करते थे कि टैक्सी ज्यादा रोड पे ना हो, जितने गाहक हैं उसके मुताबिक चले, थोड़ी सी बल्कि टैक्सी कम हो ताकि इतना गंद ना पड़े, और टैक्सी भी, और हाँ, और ज्यादातर टैक्सी ये टेंस की टैक्सी होती थी, क्योंकि टेंस ट्रेनिंग शख्स वोमन जो उस वक्त डेनिश ज्यादा थे, 50% डैनिश थे, वो उनकी फाइनिंग स्टैक थी, वो स्टैक थे, स्टैक से मुराद ताकतवर थे, और वो अच्छा था, वो टैक्सी को खराब करने नहीं देते थे, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने हम लोगों ने ज्यादातर अवलर्निंग हो गए फॉरनर्स पाकिस्तानी, इन्होंने टैक्स लेने के खिलाफ चिंगमुई शुरू कर दी, उसके खिलाफ हो गए, इसको खत्म होना चाहिए, इन्होंने 2016-17 में किसी कुछ पॉलिटिक्स के पॉलिटिशियंस जो डैनिश थे, इन्हें लिस्ट के वाले पर मुझे नाम याद नहीं है, उसको एंगेज किया, उसको एंगेज करके मुझे नहीं पता किसने किया, मुझे किसी का नाम याद नहीं है, किया और उसको बताया कि ये छक्स उन्हें खत्म करें और इसको ओपन करें ताकि हम सारे बिविलिंग ले सकें, यानी कि सिस्टम को भी खत्म कर दें, उसको ये बात अच्छी लगी, वो पहले ही उसका उसका पहले ही कोई रवाइज था इनके साथ, ये इस अदारे के साथ किसी के साथ, उसने जनाब इस बात को उठाया और वो उसने इसको इसको करवा लिया, और वैसे भी जब उन्होंने करवाना हो तो वो ये काम करते हैं, वो करवा लेते हैं, हर उन्होंने इसको ये करवा लिया। मैं इसको इधर रख के, अब इस बात को यहाँ रख के ना, तो मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूँ ऊबर की तरफ, ऊबर गालिबन अभी नहीं आई, आप कह रहे हैं कि 2025 के फरवरी में आई, नो, ऊबर 2015 16 में इधर डेनमार्क में आ गई थी, और वो जैसे ऊबर का कंसेप्ट है वो उसी तरह चले थे, वो बगैर टैक्सामीटर के प्राइवेट गाड़ियों में हर कोई बंदा, उनका अपने लोगों ने, क्योंकि डैनिश तो अपनी बात में कायम रहते हैं, मैंने खुद देखा वो जब करते हैं तो फिर वो अपनी वो उस चीज के ऊपर कायम रहते हैं, ये बात उनमें है, जो एक चीज है वो एग्री जब करते हैं वो उसमें वो कायम रहते हैं। इन्होंने टूर उठाने शुरू कर दिए एयरपोर्ट से जाके बाहर से, यानी कि लोग जो यानी कि जो कस्टमर आ रहा है उसको टैक्सी तो चाहिए, वो बाहर आ रहा है रोड के ऊपर, वो जो कहते हैं लोफ्टोन बुलवार्ड है या लोफ्टोन बाय है या क्या नाम है उसका, जो मेरिट के पास है, उधर तक लोग आ गए, क्योंकि उस वक्त मीटर तो कोई नहीं था, वहां पर बस है थी, चलती थी, तो उधर लोग आ रहे हैं, तो इन्होंने वहां से ना, क्योंकि अंदर से बाहर से तो एयरपोर्ट बंद किया हुआ था उन्होंने, जो जो डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे सारे शफे और वो थे, तो ये जो ड्राइवर थे, ये जो वॉनमैन थे, जो कहीं आज रिटायर हो चुके हैं, कहीं आज 80 साल के हैं, 85 के हैं, 70 के हैं, और कहीं आज मेरी एज के भी हैं, इन्होंने जनाब वो वहां से बहुत ज्यादा, उन्हें मैं 35% पाकिस्तानी थे उस वक्त इस ब्रांच में, 15% दूसरे वो लर्निंग थे, 50% डैनिश थे, इन्होंने जनाब वो टूर वहां से बाहर से लेने शुरू कर दिए, तो वो जो डेमोन्स्ट्रेशन है डैनिश, हालांकि कितने स्टैक हैं, वो डेमोन्स्ट्रेशन तकरीबन हमारी नाकाम हो गई, हमारी अपनी वजह से, हमने साथ नहीं दिया भरपूर, वो डेमोन्स्ट्रेशन इसलिए थी जैक्सन ने उन और लुफ्तों के खिलाफ कि ये अजारादारी फ्यूचर में कायम ना कर सके हमारे ऊपर, ताकि ये उस तरह चलें जिस तरह हमारे भी हकूक हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हैं, वॉनमैन है, वॉनमैन के भी हकूक हैं, टैक्सी ड्राइवर ये की बात है, टैक्सी चलाते हैं आपकी, आपके लिए सर्विस मुहैया करते हैं, ये लोग सर्विस मुहैया करते हैं आपको लेके जा, अगर ये नहीं होंगे, क्योंकि अब तो 95% ऊ लर्निंग है, उसमें से 90% अब आज 2026 में, और 90% पाकिस्तानी है, ये आपको आपका डैनिश कोई नहीं टैक्सी चला रहा, अब बिल्कुल जो रह गए हैं 1% से भी कम वो

0: आज ये खत्म कर दें आपको यहाँ पर आपको वारे के आपके वारे नियारे नहीं होंगे, आप बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे कि क्या हो गया, क्योंकि टैक्सी। अच्छा, अब वो हमारी जो डेमोन्स्ट्रेशन है जो डैनिशों ने मिलकर की थी, उसका मकसद ये था कि स्वीडिश टैक्सी को पीछे किया जाए, वो वहां से ही हमारे टूर लेके जाना चाहते हैं, इनको आप क्यों लेके आ रहे हैं वगैरह वगैरह, और जो उसमें काफी चीजें थी जिसके ऊपर वो एग्री नहीं हुए, तो उसके बाद ये डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हुई। जब और उस वो डेमोन्स्ट्रेशन नाकाम हो गई, हमारे अपने लोगों की वजह से, वो डेंशियों को भी पता लगा कि यार ये लोग किस तरह के हैं, ये लोग अपनी किसी बात पे कायम नहीं रहते, ये ही लोग जो इस ब्रांच में आ गए हैं। उस वक्त उन्होंने ये बात की थी कि आप टैक्सी को आने वाले वक्त में आप लोग तबाह कर देंगे, हम लोग तो चले जाएंगे, हम लोग तो टैक्सी तो नहीं रखनी सारी उम्र, हम लोगों ने इनके जो आगे से औलादे आनी है, जो अब आई है, 25 साल एक जनरेशन गैप है, इसमें से किसी ने टैक्सी नहीं चलाई, ना टैक्सी चला रहा है, क्योंकि वो आप पढ़ लिख के गए हैं और वो दूसरी जगह में चले गए हैं, उनको पता लग गया कि ये ब्रांच इन्होंने खराब कर दी है और ये इन्होंने करनी है। अब मैं आ जाता हूँ छक सर ने उनके ऊपर, मेरी आवाज आ रही है ना आपको क्लियर?
1: बिल्कुल आ रही है।
0: अब मैं छक सर ने उनकी जो छक सर ने एक अदारा था जो टैक्सी को कंट्रोल करता था, जो मैं जो आज समझता हूँ कि वो होना बहुत जरूरी था, वो भी हमारी हमाकतों की वजह से खत्म हुआ जाके 2018 में। ठाकसा नयन जो था वो ये करता था कि फेयर कार्ड वो देता था, फेयर कार्ड जिसे कहते हैं, ठाकसा लाइसेंस लेने के बाद आपने फेयर कार्ड, पहले ये इनका ऑफिस फ्लैश के छो यानी कि फिस के छो सॉरी खु पी के अंदर था, अब फिर पीए के तो हमारे नोवे स्वाय में आ गया। 2018 में ये खत्म हो गए हमारी अपनी हमाकतों की वजह से, हमारी अपनी क्या कहते हैं दोगलेपन की वजह से हमने इसको खत्म करा के छोड़ा। ठीक है, ये खत्म हुआ, ये कंट्रोल करता था कि कितनी टैक्सी किल यानी कि आपकी रोड के ऊपर होनी चाहिए, साल के साल बाद उनको तमाम संचालनों से आपके टूरों का बायोडाटा मिलता था कि कितने मिलियंस टूर जो रेडियो टूर है, रेडियो टूर उसके बाद किल छुआ, वो आपको लुफ्तों से और दूसरे स्टेशनों से, बड़े स्टेशन से लेकर दूसरे स्टेशन से मिल जाते थे। केल छुआ का भी जो है वो रिकॉर्ड होता था संचाल के पास, वो सारा मिला के कितने मिलियन टूर निकले हैं या कितने मिलियन टूर गए हैं, 1 मिलियन या 2 मिलियन, और कितनी टैक्सी इसके लिए चाहिए, क्योंकि वो पूरे इसके ऊपर वो होमवर्क होता था, उस हिसाब से वो टैक्सी रखते थे केल में। तब टैक्सी चलती थी 1600 से 1800 के करीब टैक्सी होती थी हर वक्त, जो आपकी उन्होंने इजाजत दी, वो उनके बगैर कोई टैक्सी केरल में आ ही नहीं सकती थी, क्योंकि ओना शख्स ने उनके अंदर था, और वो रूट होता था क्यूपन होम का रूट था, 1 नंबर था रूट का, सबज रंग की तख्ती थी 10 बाय 10 की, वो आपकी टैक्सी के पीछे प्लेट लगती थी, वो रूट नंबर उसे कहते हैं, उसे कहते हैं पवेलिंग, और नीचे 3 हिस्से होते थे या 4 कह लें, 16 20 6 27 ऐसे 3 16 ऐसे टैक्सी का, जिस जो बंदा बोनन बना तो
1: मतलब
0: उसको
1: हर
0: वहां से
1: चीज
0: वो
1: जो है वो कंट्रोल में थी। अब टैक्सी कितनी है?
0: टैक्सी मैं बताता हूँ कंट्रोल में थी, और वो जैसे डेनिश सिस्टम है इनका, हर तरह का इनका सिस्टम दुनिया में बड़ा जबरदस्त सिस्टम है, वो कंट्रोल में रखते थे, और वो दारा था, और वो गवर्नमेंट के अंदर नहीं था बिल्कुल, वो एक लेजर से दारा था, और उसके अंदर डेनिश बोनन सबसे ज्यादा थे, और वो ही स्टैक थे, और वो ही इसके बेनिफिशियरी तो नहीं आप कह सकते, लेकिन वो ही जो है उसको हावी रखते थे चाकसा को, चाकसा ब्रांच को, किसी दूसरे के बनिस्पत कोई बाहर से ना आ जाए उसको वो हावी रखते थे, और उनको पता था, उन्होंने कहा था जिस दिन आप लोग आ गए आप इसको बर्बाद कर देंगे, आज बर्बाद हो गई है। इस वक्त 4000 साढ़े 4000 से ज्यादा टैक्सी है, और 600 700 टैक्सी आपकी और आ रही है इसी गर्मियों के बाद, अगस्त सितंबर को 5000 से, मैंने ये बात कही थी इन सबको, आप लोगों की टैक्सी 2028 तक सड़कों में 10000 हो जाएगी, सबसे ज्यादा उसमें हमारे पक्ष निभाई है, फिर उसके बाद दूसरे उलनिंग, डेनिश बहुत कम है ना होने के बराबर है, आप कह लें इतने ज्यादा उलनिंग होके इतने ज्यादा आप पीछे हैं, इधर भी आपके ऊपर कंट्रोल अभी भी यही लोग कर रहे हैं, चंद लोग हैं 10 50 60 ये आपके ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, और आप जो हैं इतना ज्यादा वॉनमन होके इतने ज्यादा, मैं ये एक दूसरी बहस है कि मैं ये कहूँ कि जी आप लोग टैक्सी में क्यों आ रहे हैं, मैं दूसरा जो है यहाँ पर आपके दूसरे भी तो है ना, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, श्रीलंका से हैं, काफी वो तो नहीं है उनके, यंग, मैं यंग की बात कर रहा हूँ, मैंने यंग लोग देख पढ़े लिखे नौजवान ब्लैक उबर। मैं किसी को यार ये नहीं कर रहा कि वो आप क्यों कर रहे हो, लेकिन मैं हैरान हो गया हूँ। चलें, कोई अंकल, कोई मेरा बुजुर्ग, कोई भाई मेरे जैसा, कोई भी चला रहा है, 50 साल का है, 60 का हो गया है, ये एक दूसरी बहस है। क्योंकि वो लगा हुआ यार 25 साल का लड़का, 24 का दूसरे नहीं यार, मकडोन के लोग निकल गए हैं, जो ये जो है अपना बाल्कन लैंड के जो लोग होते थे, काफी चलाते थे उस वक्त, यूगोस्लेवियन होते थे वो भी काफी थे टैक्सी ब्रांच में, मैं यही बात कर रहा हूँ, वो निकल गए हैं, उनका कोई जवान नहीं आ रहा। यार आपने ऊबर को कामयाब कर दिया यहाँ पर, ऊबर ऑलरेडी यहाँ पर 2015-16 को आ गई थी, लेकिन उनका कंसेप्ट दूसरा था, वो बगैर क्या कहते हैं टैक्सी नंबर या किसी चीज के, वो प्राइवेट गाड़ियों में लोगों ने लगाया, और उसमें भी सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों ने उनको वेलकम किया था। एक एक बंदा जो अभी जो काम करता कहीं किसी जगह में, कोई किसी जगह में फेस्ट काम करता था, वो रात को अपनी प्राइवेट गाड़ी में ये लगा के चला रहा है। खैर वो फिर वो खत्म कराया गया, क्योंकि यहाँ पर इलीगल है, इलीगल इसलिए यहाँ पर टैक्सी चलैल से सारा कुछ मीटर वगैरह सारा कुछ, क्योंकि वो होना चाहिए, उसके बगैर आप नहीं कर सकते, ये दूसरे मुल्कों में कंसेप्ट चलता है। वो केस चला, बात मुख्तसर करता हूँ, वो केस चला, वो केस जो है ये ऊबर हार गई और यहाँ से वो उसको जाना पड़ा। उसके बाद 2025 फरवरी को, या ऑलरेडी 2024 को, हमारे ही लोगों ने ऊ लेनिंग इसमें कह सकते हैं, कुछ दूसरे मुल्क के लवाल थे और कुछ अपने थे, इन्होंने ईमेल दे के उनको वेलकम किया कि आप आए और आपको हम तरीका कार बताते हैं आप कैसे आए। वो आ गए हैं, उन्होंने आके आपको आपकी सारी मार्केट ले ली है,
1: शायद आप बात कर रहे हैं 2024 की आप बात कर रहे हैं। तो अब देखें तो असलम साहब जो है गालिबन दो बार रहे, वो टेक्सास ब्रांच के सदर रहे, उसके बाद मियां साहब आगे गालिबन वो भी दो बार या तीन बार रहे, अब जो आगे दूसरी बार है ये भी पाकिस्तानी निसाद, तीनों पाकिस्तानी निसाद डैनिश है, तो तीन बारियां तो 6-8 साल की तो मुझे याद पड़ती है। तो ये तो कंट्रोल में रही, जो सदारतशिप थी, लीडरशिप थी, ये तो हमारे लोगों के पास रही।
0: नहीं आप उसको मिक्सअप कर रहे हैं, ये भाई कोई भी इसमें से कुछ शख्स का यूनियन का या किसी आप बात कर रहे हैं उसका कोई वो शेफ नहीं रहे, या वो सिर्फ रही हैं एक यहाँ पर काफी संस्थान है, अब तो डैन चैक्सी है, आमो यूपो है, अभी भी है, बोल्ट है, उबर है, वो भी संस्थान हो गया, और एक क्यूपनोन शख्स जो सबसे बड़ी होती थी, वो अब तो सबसे छोटी हो गई है, उसके अंदर ये फोरमैन थे हमारे एक भाई, अब एक भाई दूसरे हैं, समरेश नाम है उनका अगर मैं गलत नहीं हूँ, वो हैं फोरमैन। फोरमैन होके भी तो आपके ऊपर तो डैनिश बैठे हुए हैं दो, आप हैं टैक्सी हैं वहां पर भी इसी संचाल में, क्यूपनोन शख्सा में, संचाल में 1000 से ऊपर गाड़ी होती थी, 1200, और वो सबसे ज्यादा फॉरनर्स की और फिर पाकिस्तानियों की होती थी, लेकिन कंट्रोल आपको ये कर रहे हैं, और फिर उन्होंने एक छोटा सा आपको लॉलीपॉप दिया होता है, लो जी उन्होंने किसी ने बच बना देने हैं फोरमैन खुश हो जाए, ये भी उन्होंने एक शुरू किया, पहले तो डैनिश ही फोरमैन होता था, तो वो उसे तो यार उससे क्या कामयाबियां मिली है, कुछ भी नहीं, उल्टा आपका हालत देख लें। चलें मैं उसके ऊपर उन शख्स की बात कर लेता हूँ, उनके सारे अवैव खोना, जो उनके बिजनेस कस्टमर, छोटे कस्टमर सारे चले गए हैं, और वो सारे के सारे तकरीबन सीधी बात करनी चाहिए 95% के कस्टमर जो हैं वो सारे के सारे डैन टैक्सी ले गई, और ऊबर डैन टैक्सी और ऊबर एक ही है, क्योंकि वो डैन ऊबर ने डैन टैक्सी खरीद ली थी, और डैन टैक्सी जो है उस वक्त 2-2.5 हज़ार से उनकी ज्यादा गाड़ियां हैं पूरे शेलन में, वो बल्कि शेलन से भी ऊपर यूलैंड तक जाते हैं वो, तो मैं शेलन की चलो बात करूंगा, तो इसका कोई वो उन्होंने वो चांद जो दो ऊपर जो है वो डैनिश हैं, जो ऊपर सबसे बड़े हैं, उन्होंने आपको कंट्रोल किया हुआ है, क्यों प्राउन छाक की बात कर रहा हूँ, तो इससे कोई उसमें क्योंकि हमने करना ये पता क्या है, ये है कि हमारी अपनी कोताहियों की वजह से हम नहीं कर सकते, हम दिहाड़ी लगाने वाले लोग हैं, हम किसी मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकते, हमने वो मीटिंग अटेंड करनी है जिसमें हमारा जाती मफाद हो, हमने ये नहीं करना, ये नहीं देखना कि फ्यूचर क्या है हमारे लिए, अगर आपने इसी ब्रांच में रहना है तो सर, अगर इसी ब्रांच में रहना है तो फिर आपने ये चीजें करनी होती हैं, ये पाकिस्तान नहीं है, ये वो मुल्क नहीं है जहाँ पर चलो जी हैरा मेरी है कर लेंगे, यहाँ पर हर चीज सिस्टम के मुताबिक पेपरों के पेपर वर्क के साथ चलती है, हर चीज डॉक्यूमेंटेशन होती है, हर चीज को वो कानून और उसके मुताबिक वो कहते हैं चला जाता है, और आपकी दलील के साथ चला जाता है, ये नहीं होता कि आप उठो उधर चल पड़े उधर उधर चल पड़े, तो ये हुआ है फ्लेयर। मेरा ये कहने का मकसद पता क्या है, मेरा ये कहने मेन मकसद मेरा ये है, फ्लेयर छल यानी कि अक्सरियत होने के बाद भी हम पीछे हैं इधर भी, यानी कि अक्सरियत आपकी है, कंट्रोल वो कर रहे हैं आपको। मैं ये बात कर रहा हूँ।
1: लेकिन शायद मैंने एक चीज देखी है, इस ब्रांच में हमारे तो खैर बहुत सारे लिसनर हैं, लेकिन ये पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, साल साल से काम भी कर रहे हैं, सारी चीज़ों को समझते भी हैं, शौर भी रखते हैं डेनमार्क की सियासत का, अपने मुल्क की सियासत का। तो लेकिन जब इन्हें पता कि ये हमारा रोज़गार है, हम इस पर काम करते हैं, तो ये इतने मजबूत होने के बावजूद भी ये क्या ये अपनी फोनिंग अलहदा नहीं बना सकते, ये अभी बना ली है
0: अपनी फोनिंग, ये पिछले 40 साल से बना रहे हैं सर अपनी फोनिंग। क्या कहते हैं बनाने के लिए कोई कोई कोई वो रॉकेट साइंस थोड़ी है, ये गोरे लोग बना लेते थे, ये कोई इसके लिए आपको मुतखिद होना होगा पहले, ये तो मुतखिद ही नहीं है। अपनी फीलिंग कैसे बनाएंगे ये तो एक रात बैठ के किसी जगह में किसी कोने में बैठ के कॉर्नर मीटिंग करते हैं, अगले दिन ये सारे खली बली अपने अपने वो कहते हैं दिहाड़ियां, पता ही कोई नहीं है। बिल्कुल बनती है इनकी इनकी फीलिंग, इनका सारा कुछ बनता है, वो एक रात के लिए होता है, सुबह खत्म, पता ही कोई नहीं कोई किधर गया किधर गया, ढूंढ रहे हैं आप उसको। तो ये सिर्फ दिल भगाने के लिए होता है।
1: मुस्तकबिल है इस ब्रांच का,
0: इस ब्रांच का मुस्तकबिल मैं एक और बता दूं, एक और एशिया से एक ग्रीन के नाम से कोई फर्म है बड़ी, और उनका जो फंड है $38 बिलियन, उसको आप जरा दे लें 7.5 से 7 देने से कितने $100 बिलियन उन फंड, यानी कि वो एक फर्म जिनके पास पैसा है। 600 टैक्सी खड़ी है उनकी तैयार मुंचेंग के लिए ग्रीन, यानी कि वो वियतनाम पीछे से वो कहते हैं उनका जो उनका उनका मालिक है वो वियतनाम से है। 600 टैक्सी आपकी,
1: तो लेकिन टैक्स का निजाम कैसे चलेगा फिर?
0: मैं आगे बता दूं आपको टैक्स का निजाम, ये भी मुझे बुरी बात का लेने दे। 600 टैक्सी मुंचिंग हो रही है ग्रीन के नाम से, और वो किसी वॉनमैन के लिए नहीं है, वो खुद ही वॉनमैन होंगे और वो खुद ही यहाँ पर एंसिट करेंगे शफिया, और वो फैसले देंगे। ये मैंने अभी तक पढ़ा है, और ये डेनमार्क में अब स्कैंडिनेविया में बल्कि पूरी आ रही है, वो ऑलरेडी काफी यूरोप के एशिया में तो आई है काफी मुल्कों में। उन्होंने उनसे किसी ने पूछा कि आप इतना पैसा जाया करेंगे, कहते नहीं हम यहाँ पर पहले एक साल तो पैसा फेंका है हमने 2-3 मिलियार्ड, ये कैसे फेंका ऐसे कि हमने कस्टमर जो है लेके आने हैं, कस्टमर कैसे लेके आने हैं वो उनको पता है, वो उन्होंने नहीं बताया। ये सही बात है, तैयारी तो उनकी होगी ना कोई ना कोई, और वो 600 है ना, 600 से 1200 करेंगे जो आज तक आपकी वॉनमनी भी यहां से खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो खुद ही वॉनमन होंगे, वो किसी को अपनी टैक्स ही नहीं देंगे। वो जो अदारा ना ग्रीन, वो खुद ही मालिक है टैक्सी का, वो गाड़ी जो है जो गाड़ी है ना इक्विपमेंट से कहते हैं गाड़ी, ये उनकी होगी, उसमें सिर्फ आप एनसेट होंगे 3 ड्राइवर 8-8 घंटे, 8-8 कोई ये 30 घंटे नहीं एक ड्राइवर चला रहा है 18 घंटे, नो नो 8 घंटे की वक्त सुबह दोपहर शाम की और रात की 24 घंटे हो गए उन्होंने ये पैसा फेंका। ये बात ये बिल्कुल ऐसे हो रही है, ऐसे ही उबर ने किया था तो ये मानते नहीं थे। और ये अब आपका सफाया डेनिश जो थिंक टैंक है जो बैठे हुए हैं पीछे, उन्होंने जिस जगह फॉरनर ज्यादा आ जाएंगे ना और उनमें तफाक नहीं होगा, तफाक नहीं तो आपकी कोई स्टैक यूनियन नहीं बनी कोई ताकतवर, जब वो बनी नहीं उनको पता लग गया और फॉरनर ज्यादा थे उन्होंने आपसे वो छीन लिए सारी की सारी ब्रांच। तो ये पीछे इन्वॉल्व है, आपकी स्टेट इन्वॉल्व होती है ऐसे, वो जो आ रहे हैं बाहर से ये सारे ऊपर पीछे इन्वॉल्व है।
1: लेकिन ये जो बड़ी कंपनी बताते हैं कि ये छैगांव फिया छाल या छैगांव फेमस छाल, ये कौन सी बड़ी बड़ी कंपनी है?
0: छैगांव फेमस छाल तो एक डेनिश कंपनी थी, है ना, अभी तो इनके तो टैक्सियां 400-500 रह गई हैं, 400 या 500 में गलत नहीं, इससे ज्यादा नहीं है। तो अगर आप बड़ी कंपनी है तो अब ऊपर है वो डैन है, डैन टैक्सी ऊपर एक है, बड़ी कंपनी तो बोल्ट है इधर आ गई हुई, उनके पास गाड़ी है, मैं बता रहा हूँ 4500 4400 जो गाड़ी है वो इसमें से आप 400-450 टैक्सी की निकाल दे, बाकी 4000 उनकी है इस वक्त रोड पर, तो बड़ी कंपनी कौन सी हुई?
1: चलें वो कंपनी आ गई जो अपनी 600 गाड़ियां ला रहे हैं, वो आगे प्राइवेट ड्राइवर रखेंगे, एनसेट करेंगे, मालिक कोई नहीं होगा, मालिक वही होंगे, फिर क्या होगा?
0: मैं जो देख रहा हूँ फिर ये क्या होगा, वो उनके पास तो पैसा है, ऊपर से भी ज्यादा पैसा है, उन्होंने अपना यहाँ पर स्कैंडिनेवियन में ये यही चीज वो नॉर्वे में करने जा रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर मार्केट देखी है पहले। ये कहाँ सर जी, ये लोग ये जो बड़ी बड़ी कंपनी, अमीर जो लोग होते हैं, अमीर जो कंपनी होती है, वो हर चीज पहले रिसर्च करके, हर चीज को उसको पूरा रिसर्च करके वो फिर आती है पूरा होमवर्क करके कि हमें यहाँ से क्या आएगा, कितनी बड़ी मार्केट है, क्या चक्कर है इधर, फिर वो यहाँ पर अपना पड़ाव डालते हैं। तो उनको ये भी पता है कि अभी हमने दाना फेंका है, अभी हमने 6 महीने साल हमारा पैसा लगना है, उसके बाद हमने, ये भी हो सकता है कि उनका उनका उल्टा ख्याल हो, वो 6 माह 8 माह या साल पैसा लगने की बजाय शुरू में पैसा आना शुरू हो जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन वो ये तैयारी करके आते हैं कि हमने पैसा लगाना है अभी।
1: लेकिन जबकि कोपन अगर में गाड़ियों का दाखिला बंद हो रहा है, जो ये सड़कें आपने देखा तंग हो रही हैं, साइकिलों के लिए ज्यादा जगह बना रही है, तो गाड़ियां तो फिर कम हो जाएंगी, ये 600 गाड़ियां कहाँ चलेंगी?
0: मैं आप पॉइंट नहीं समझे, ग्रीन टैक्सी इलेक्ट्रिक गवर्नमेंट के साथ उनके रबते हैं आपकी स्टेट के, उस वक्त सिर्फ बस होगी इलेक्ट्रिक और यही गाड़ी होगी ग्रीन बस। ये आज से, ये जो कंसेप्ट है ना, मैंने आज से 15 साल पहले सुना था, ये कंपनी हम बात नहीं मैं कर रहा, वैसे ही कि किसी डैनिश ने बताया था मेरे से बात हुई, वो कहता है कि फिम्त नोच पे चो चोशन इल्व, कि हम ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर टैक्सी का कंसेप्ट खत्म ही कर दें, ये जो फलां चल रही है, हम एक ही ले आए ग्रीन टैक्सी और वो इलेक्ट्रिक की, और वो उसे को चाहे स्टेट उसको करे या स्टेट अपने नाम से बना ले, या कोई बड़ी अमीर कंपनी आ जाए, चाहे डेनिश हो या कोई हो बाहर से। ये 15 साल पहले इसने बताई थी बात मुझे, इससे वैसी बात चल रही थी मेरी, आज देखें उन्होंने 15 साल पहले की ये चीजें सोची होती हैं, उन्होंने ये कर लिया है और ये होना है, जबकि वो आ गई है। और अभी भी राजा साहब, अभी भी हमारे लोग कह रहे हैं, उबर आई थी ना, उबर भी कहा था उन्होंने, अब ये साल पहले आई थी उबर, कहते इधर गालिबन 1.5 साल हो गए हैं कि ओए उबर हमारा कुछ नहीं कर सकती, VX से सेल, ये क्या था कपनोन चाक सर के में जो लोग काम करते
1: ये
0: हैं।
1: अक्सर हमारे थिंक टैंक शाह साहब बताते रहते थे, फिर काफी लोग क्रिटिसाइज करते थे कि शाह साहब
0: शाह
1: झूठ
0: साहब
1: बोल रहे हैं।
0: बिल्कुल ठीक बात करते थे, शाह साहब क्रिटिसाइज लोग करते, अब भी ग्रीन टैक्सी आ रही है ना, अब भी ये कह रहे हैं ओ कुछ नहीं हो सकता, ये है सोच हमारी, लोग तैयारियां करके बैठे हैं, पैसा बहा रहे हैं, और आप लोग यहाँ पर एक ब्लैक उबरे चला रहे हो, आप लोग यहाँ पर इनके नीचे काम कर रहे हो, हालत ही कोई नहीं है आपकी, मैं आप बीच में मैं भी हूं, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, शाह सब अकेले क्या कर सकते हैं, बता ही सकते हैं ना, 2-4 बंदे 10 हो क्या कर सकते हैं अकेले, इसके तले सारों को मुतहद होना पड़ता है, ये है हमारी सोच। कोई बात बता रहा हो शाह साहब बताते थे ना, या आपने खुद ही बताया, मैंने भी सुना था, मैं बता रहा हूं, ये आगे से उसको टीज करते हैं, टिचकर करते हैं, ये लोग नहीं ऐसे करते, ये जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ब्रांच आपके पास थी, सबसे ज्यादा आप हैं, कब्जा वो कर गए हैं आपके ऊपर आके, और वो चला भी नहीं दे, उनका कोई मालिक टैक्सी नहीं चला रहे, जो बड़ी बड़ी फर्में हैं वो आप चला रहे हो, आपको आगे जोता हुआ है, लेकिन क्या कहते हैं, कब्जा उनके पास है, सारा मार्केट सारी उनके पास
1: तो
0: है।
1: शायद अगर तारीख को देखा जाए तो जब अंग्रेज आया था इंडिया पाकिस्तान में तो उनके भी लोग बहुत कम थे।
0: आपने आज फिर मुझे वो बात याद दिला दी है, जब अंग्रेज आया था ये इंडो पाक में, ये सब कंटिनेंट में उसने कदम रखा था, वो फौजी थोड़े थे, वो तो एक बिजनेस, वो ताजर थे, उधर आए थोड़े से लोग थे, ये उनके पास हाथ जोड़ के चले गए, इन्होंने जाके एक दूसरे की शिकायतें लगानी शुरू कर दी, गोरा देखा उन्होंने, जब चमड़ी पहली बार देखी, ये जो पूरा ये पूरा हिता था, ये इकट्ठा ही था ना, पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश, ये जब पूरा हिते ने देखा इन लोगों ने, इन्होंने जाके उनके आगे हाथ फैला दिए, उन्होंने फिर जाके अपने वहां पर बर्तानिया में जाके बताया कि वहां ये हालत है, आप क्या कर रहे हो, आप तो उधर उधर अफ्रीका में या दूसरे मुल्कों में आपका राज है, इधर भी आ जाओ, ये तो बहुत बड़ा एक सब कॉन्टिनेंट, एक बरसगीर बहुत बड़ा है। वो अंग्रेज क्लेवर ताकतवर तरीन एम्पायर था, उन्होंने जनाब शिप भरा, शिप लिया, उसमें 1,000-1,200 बंदा था, आए उन्होंने फिर आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता कब्जा ट्रैक नहीं किया, उन्होंने फिर जाके इनके दिमाग स्कैन किए, मैं आपको इसलिए ऐसे बता रहा हूँ पूरी डिटेल के साथ, ऐसे हुआ था इनके जब दिमाग स्कैन किया, उन्होंने कहा ये तो सारे के सारे जो हैं तकरीबन, बल्कि सारे को, ये तो सारे एक दूसरे के खिलाफ हैं और एक दूसरे के टांगे खींचने वाले हैं, ये तो अपने मुल्क, ये बरसगीर है, इसकी सके ही नहीं है, ये तो सब, मैं गद्दार लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा, बड़ा फिर सख्त हो जाता है,
1: चले
0: ये
1: मीर
0: एक
1: जाफर
0: दूसरे के
1: मिर्जाफर
0: है ही नहीं।
1: कह लें।
0: हाँ मीर जाफर कहते हैं, ये तो मीर जाफर है, एक दूसरे के लिए सारे, ये तो हमें बता रहे हैं, एक दूसरे की शिकायतें, एक लगा के जाता है, एक वो और हम क्या है, उन्होंने कहा हम तो, वो अंग्रेज क्या था, एक आम इनकी तरह इंसान था, इन्होंने उसको अपना खुदा मान लिया। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको पता ही है, फिर उन्होंने जब इनकी कमजोरियां सारी उनके पास आ गई, उन्होंने फिर और इजी, उन्होंने कहा ये लोग है आई, ये तो अफ्रीका से भी इजी है, पहले तो अफ्रीका इजी टारगेट था, अफ्रीका के लोग देखे क्या हाल है, कब्जा किया हुआ अभी भी, ये कहा ये तो अफ्रीका से भी इजी है ये लोग, ये तो मुनाफिक भी है, मीर जाफर भी है, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। फिर जनाब उन्होंने इनके डीएनए भी खराब करने शुरू कर दिए, खराक इनको ना सही, जब गुलाम बनाया ना, जब गुलाम बनाते हैं ना अगले, फिर उन्होंने 200 साल
1: बातें तो आपकी दुरुस्त हैं, लेकिन यहाँ डेनमार्क में, डेनमार्क तो ये एक वेलफेयर स्टेट है और ये खासकर लेबर पे चलता है, तो लेबर में बहुत सारे लोग होते हैं, टैक्स तो उनकी तरफ से जाता है, तो ये मुल्क तो चलता ही टैक्स से है।
0: आपको पता है कि डेनमार्क के पास जब ये आया था कोरोना, तो उसके ऊपर बहुत बहुत बड़ी फर्मों को, छोटी फर्मों को, बहुत से उसमें से काफी फर्में थी जिन्होंने फाके लिए थे, कितने कितने कई बड़ी फर्मों ने कितने कितने मिलियंस के, और डेनमार्क ने उस वक्त 800 मिलियन से लेके 800 बिलियन, मिलियन नहीं 800 बिलियन ये फाके दिए थे स्टेट ने, तकरीबन सारे के सारे फाके वापस ले लिए उन्होंने, तकरीबन। उनमें से बहुत से लोग थे, बहुत सी फर्में थी जिन्होंने झूठ बता के लिए थे अपने फाके, और ये जो अभी आप बता रहे हैं टैक्स का, इनका सबके ऊपर नजर होती है, ये सबको खाने देते हैं इसको उन से करो, लेकिन ये बड़े आराम से आते हैं और आराम से आके पकड़ते हैं, छोड़ते नहीं है ये। तो वो उन्होंने अपने 800 नहीं तो कम से कम 600 बिलियन डॉलर वापस, तकरीबन सॉरी डॉलर नहीं करोन वापस ले लिए या आ चुके हैं उनके अकाउंट।
1: लेकिन ये जो आप साथ साथ कह रहे हैं, ये कंपनियां सारी बाहर से आ रही हैं।
0: बाहर से ऐसे नहीं आती, आपकी स्टेट इसके अंदर एग्री होती है, बाहर से आना अच्छा शुगन है, आपका सरमाया बाहर से आता है, ये सरमाया जब बाहर से आ रहा है, गाड़ी आई है ना आपकी 600 800 12, वो सारी खरीदी गई है इधर से, टैक्स दिया है उसका, मम्स दिए गए हैं यहाँ के मुताबिक, जो जो उनके प्रोटोकॉल हैं, मुझे नहीं पता जो बाहर से कोई फर्म आती है उनके साथ इनके क्या रिलेशन है, उनका क्या प्रोटोकॉल है, उनका क्या इनके साथ आउचेल है या अग्रीमेंट है, ये तो वो जानते हैं, ये या ये जानते हैं, ये तो आप मेरे ख्याल पढ़ भी सकते हैं जाके बिजनेस अफेयर जो उनके उसमें आप मेरे ख्याल सच चीजें खुली रखी हुई हैं तो उनके साथ, लेकिन ये बाहर से सरमाया आता है और बाहर से सरमाए को ये उसकी कदर की निगाह से देखते हैं। जब तक आपके मुल्क में बाहर से सरमाया नहीं आएगा, आपका मुल्क नहीं चल सकता। आप ये राजा साहब, इन्होंने अपना मुल्क टिकटॉक और कहते फोटो इश्तेहारों में थोड़ा चलाना है, कभी देखा है डेनमार्क फोटो इश्तेहारों टिकटॉक में चल रहा है?
1: टैक्स हर हालत में लेना ही लेना है,
0: टैक्स हर हालत में लेना ही लेना है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो सड़क छाप है, चाहे जो ही उस वापिस मार्केट में वाया ना, चाहे उसने एक रुपया भी कमाया हो, टैक्स छोड़ना नहीं है उन्होंने आपसे, ना मम्स छोड़ने हैं। तो वो बातें ये गलत हैं, ये छोड़ते नहीं है, चाहे उसको 4 साल बाद पकड़े 10 साल पकड़ लेते हैं ये। तो ये हालत होती है
1: की बात आप कर रहे हैं, इस ब्रांच की आप बात कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे लेबर लोग काम करते हैं, तो उसके तो देखें बड़े बड़े जब स्टोर बनते हैं, बड़ी बड़ी दुकानें खुलती हैं, 2 साल 3 साल रहती हैं, बंद हो जाती हैं, साल रहती है, अगर आप एक बार नहीं साल बाद दूसरे स्टोर में जाएं तो वो दुकान वहाँ मौजूद नहीं होती, ये क्या होता है? या किराया कम रखते, इसी तरह ये सहूलियात तो गवर्नमेंट नहीं देती, वो कहती है हम तो टैक्स और मम्स ले रहे हैं लेकिन इनको सहूलियात दें, कुछ अरसे के बाद वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं।
0: राजा साहब ये चीज़ें तो ये जो बड़े बड़े शोरूम्स होते हैं, शोरूम्स होते हैं किसी ब्रांड के शोरूम्स, उनको इससे कोई सरोकार नहीं है, वो आए हैं चाहे यहाँ पर 10 लाख किराया चाहे 5 लाख करोड़ किराया महीने का वो देते हैं, उसमें वो शोरूम का ये मतलब नहीं होता कि यहाँ पर आपकी कोई सेल हो रही है, क्योंकि सेल तो उनकी ऑलरेडी नेट के जरिए दूसरी दुकानों जो दूसरी छोटी दुकानें हैं जो उन्होंने खोली हुई हैं वो ज्यादातर ये फ्रेंचाइज होती हैं, तो जो शोरूम्स होते हैं वो बड़े बड़े वो सिर्फ वो डिस्प्ले ही आप समझ लें, वो डिस्प्ले होते हैं दिखाने के लिए, वो बंद भी हो जाते हैं, खुलते हैं किसी और जगह मूव हो जाते हैं। ये बताता चलूं कि डेनिश गवर्नमेंट दुनिया की अमीर तरीन स्टेट में से एक स्टेट है, इनके बहुत बहुत पैसा है टैक्स का इकट्ठा किया हुआ, इन्होंने बहुत पैसा इकट्ठा किया 2000 के बाद, इनके पास इतना पैसा है कि आपकी सोच से, हालांकि इनके पास तेल नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, मिसाल दे रहा हूं, तेल के बगैर, मादनी जहायर के बगैर इन्होंने पैसा इकट्ठा किया है इनके पास। हाँ बड़ी कंपनी इनकी अपनी है, नोवो नॉर्डिस्क उनके पास जो मेडिसिन बनाती है सबसे बड़ी कंपनी है, जो बहुत ज्यादा जिस जो जो ना सरमाया लेके आती है, यानी कि दूसरे मुल्क मुल्क अपने दूसरे ममालिक में अपनी दवाइयां जो है ये वो बेचते हैं, और उसके पास और भी छोटी मोटी दवाइयों की कंपनी है जिससे डरमारों को बहुत फायदा होता है। लेकिन ज्यादातर इनका जो पैसा है वो टैक्स जो कलेक्ट है वो होता है, और वो लोग इनकी टैक्स देते हैं वो खुशी से। और इनकी जो लोग हैं वो जो अमीर हुए हैं वो 2000 के बाद, आम लोग जो अमीर हुआ है जिसके पास पैसा आया आपके सामने है वो सब, अब तीन तीन गाड़ियां, किसी के पास चार चार गाड़ियां, दो दो गाड़ियां आम हो गई हैं। ये मैं डेनिश लोगों की बात कर रहा हूँ, और 8-10-15 हजार तनख्वाह नहीं है, 60-60-70-70 हजार वो बचेल, 50-50 हजार वो बचेलता है, यानी के टैक्स कार्ड के पैसेदार हो रहे हैं। इतना इतनी इन्होंने तरक्की की है, और तलीम में भी ये लोग बहुत आगे गए हैं। इनके बच्चे, आप 90s वाला 80s वाला डेनमार्क जो है वो बिल्कुल उसको लाके तस्वर में, तो आज का डेनमार्क देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि यार इन्होंने 25-26 सालों में तरक्की की है, कैसे की है। और वो यही है, आपके 25-26 सालों में बाहर से कंपनियां बड़ी आई हैं, और होटल आपके कोपनहेगन में 100-150 होटल तो मेरे सामने बना है, बड़ा बड़ा होटल, बड़े बड़े बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, आप भी जानते हैं इसको। कोई 90s 80s में कोई खास होटल नहीं थे इधर, मांसवाड़े वेस्टपो ईस्ट तक, ये कोपनहेगन की बात कर रहा हूँ, या थोड़ा बहुत इधर उधर, ये होटल सारे बने हैं क्योंकि उनको जरूरत थी। होटल इसलिए बनते हैं जब आपके मुल्क में सरमाया आ रहा है, बिजनेसमैन आ रहा है और टूरिस्ट आ रहा है, और लोग आ रहे हैं आपका मुल्क देखने के लिए। बिजनेसमैन आता है उसको होटल चाहिए होता है, टॉप के होटल बनाए हैं उन्होंने और बहुत ज्यादा बनाई है, और उसके बाद आपके मुल्क में टूरिस्ट आता है बहुत ज्यादा। हालांकि छोटा सा कोपनहेगन है, बस कल मैं भी सोचता हूँ क्योंकि मैं इधर ही रहा हूँ जंपल, यार इधर क्या है देखने के लिए, दो तीन जगह है, उधर चले जाओ, हाफू ट्वाली चले जाओ, या क्या कहते हैं उसको, वो न्यू हॉर्न चले जाओ, और मुझे तो और कुछ नहीं लगता इधर। तो लोग आते हैं, इन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट की हुई है, मशहूरी की हुई है, ये सिंसियर है अपने मुल्क के साथ, ये लोग, ये इन लोगों ने किया है, हम नहीं है, बात माननी चाहिए उसको। जब ये, हाँ मैं ये भी एक ऐड कर दूं, 100 साल पहले ये लोग भी बहुत परले दर्जे के थे, इसमें करप्शन थी, ये लोग जमहूरियत पसंद नहीं थे 100-150 साल, लेकिन इन्होंने फिर दूसरी कौमों से सीखा है, ये सीखते हैं, ये हाल ही क्या कहते हैं टिकटॉक मशहूरियां, फजूल किस्म के इश्तेहार, बड़े बड़े मेरी फोटो लग गई बाहर, लगी हुई है चराहों में, देखा कभी आपने डरमारे में किसी की चराहों में, इलेक्शन के बाद देखा किसी ने किसी मेयर की चराहों में फोटो लगी हुई है कि इन्हें काम कराया है, और लाना था काम तू कराया है, तेरा पैसा है, मैं काम कराया, ये तो कवाम का पैसे तो सहन किया ही कराया, तू काम वोट ले ही ना तो काम करा, हूं मैं काम कराया, पैसा मेरा है, मेरे मुल्क का पैसा है, खजाने का कट के, तो तू कहना मैं काम कराया, इस करके वोट लिया ना तू, ता फिर तू काम कराना है, तू सहन नहीं किया, ये है यहाँ की, ये है सियासत
1: आप
0: यहाँ के
1: बताएं
0: लोग।
1: आखिर में, हमारा टाइम अभी इजाजत नहीं दे रहा, 5-6 मिनट है, आप बताएं इसका हल क्या है आने वाले दिनों में अपने लोगों को। आप देखें, आपके स्वीडन में इलेक्शन भी होंगे, यहाँ का हाल तो आपने देख लिया, आप दोनों मुल्कों के शहरी हैं, यहाँ का हाल तो आपने देख लिया, कभी इस डेनमार्क में 40,000 की आबादी में हमारा कोई पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, और आपका भी जो है स्वीडन में कोई पाकिस्तानी शायद पार्लियामेंट का मेंबर है या नहीं है, मेरी नॉलेज में नहीं है। आने वाले सितंबर के इलेक्शन में अगर आपका भी वही हाल हुआ यहाँ जो डेनमार्क में हुआ, तो फिर आप क्या कहेंगे?
0: बड़ी अच्छी बात की आपने, आपने डेनमार्क की, फिर मेरे वो, क्योंकि मैं फिर कुछ वो आ जाता हूँ, थोड़ा जज्बाती हो जाता हूँ,
1: भाई वतन है
0: मैं फिर उधर
1: आपका।
0: चले जा, मैं कि ये क्योंकि एक 60 साल की एक एक वो हमारी वो इन वांता जो है वो बाव जायदाए हिस्ट्री है, 40-45 हजार बंदा है इधर पाकिस्तानी, और वैसे तो मुझे खुद भी, मैं अपनी बात करूंगा यार, किसी को मैं क्या ब्लेम दूं, को किसी को कहूंगा तुम्हारे तो लोग तो ये जो है तनकीद भी बर्दाश्त नहीं करते, इतने हम बेशर्म हो गए हैं, यानी कि जो चीज हुई है उसको तो बर्दाश्त कर लो ना, अब की है आप लोगों ने, यानी कि 5 के 5 बंदे हर गए यार। जब मैं इकट्ठा बैठा होता हूँ ना मैं अपना, तो मैं देखता हूँ कि यार अपने ऑफिस में बैठा, मैं अभी अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अपने दफ्तर बैठा हूँ मैं, 5 के 5 बंदे हर गए यार, फिर मैं देखता हूँ कि यार इस हारने के बाद भी हमने कुछ नहीं सीखा। ये नहीं कि उस हारने के बाद सीखना होता है ना, अपने दूसरों से सीखना कि मैंने क्या गलती की है। मैं अब स्वीडन की करूंगा बात, 2000 ये 26 सितंबर 13 सितंबर को इलेक्शन है गालिबा, यहाँ भी कोई पक्ष बदकिस्मती से, यहाँ कुछ किस्मती दिन में कहूंगा बदकिस्मती से कोई पक्ष नहीं यहाँ पर, कहीं कहीं भी नहीं है, किसी भी खाते में नहीं है। तो उसका जो है करूंगा बात तो लंबी तकरीर हो जाएगी, क्या वजह है ये सबको पता है, पता सबको है, लेकिन उसका हल जो है, हल ऐसे नहीं होना बातों से, हल आपने मुतहिद होके करना है। आपने डनमार्क की मिसाल ले लें, जीती है ना लड़की एक अफगान आजाद है, 86 84 85 में आए उसके बावजूद, इधर कितने अफगानी है डनमार्क में, 10,000 होंगे, 5,000 मैं गलत नहीं हूं, जीती है ना, आई है ना, उसके बाद वो मिनिस्टर है आज
1: लेकिन शायद एक
0: इंसाफ की
1: पहली
0: कुर्सी।
1: बार देखा है जो मेरी जिंदगी का तजुर्बा है कि वजीर बनने के बाद किसी ने बात की वो अलग चीज़ है, लेकिन गैर मुल्कियों ने उसके बारे में कोई बात नहीं की, खुशी महसूस की है।
0: मैंने खुद खुशी महसूस की, मैं ये तो बता रहा हूं, एक अफगानी गैर मुल्की जीत गई है, 10-5 हजार उनकी कम्युनिटी है, आप लोगों की तो 45 हजार है। बातें कम करते हैं ये जो लोग हैं ना गोरे, ये बातें कम करते हैं, खौड़ मुख्तसिर बात करके जो सियासतदान है खौड़ बात करता है और मुख्तसिर करता है, जैसे आनस फो खास मुजंदा। मैं आनस फो खास मुजंदा को पर्सनली 6 दफा मिला हूं, वो बात नहीं करता था, सिर्फ मुस्कुराता था, उसे जो भी बात मैं करता था वो मुस्कुराता था, कैसे देता था, कोई लंबी लंबी, उसको पता था लंबी लंबी बात मैंने करनी नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर जो डिस्कशन सेशन होता है वो एक और चीज है, लेकिन जब वो बाहर होता था, आपने मीडिया में भी उसको देखा हुआ है, बात कम करता था, मैं उससे मुतासर हुआ था, आनसो मेरा वो, मैं उस पार्टी से नहीं हूं लेकिन उससे मुतासर हुआ था मैं, तो लिहाजा आप जो हम जो लोग हैं ना बातें कम करें। यानी कि मैं वो मिसाल दूंगा तो फिर आप कहेंगे ये शाह साहब क्या कह रहे हैं, यानी कि करना कुछ नहीं तो
1: नहीं,
0: करना
1: लेकिन
0: भी
1: कहीं ये
0: होना
1: फिर
0: दिया।
1: इल्जामात ना आ जाए कि राजा साहब शायद से झूठ मरवाते हैं जिस तरह शाह साहब
0: हाँ
1: के
0: नहीं
1: बारे में
0: नहीं
1: करते थे।
0: ये तो मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं इसका बात कर रहा हूँ राजा साहब, नहीं मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप बातें खौट करें सारे और करें कुछ, लेकिन आप अब तो आपको 4 साल बाद, 4 साल से पहले तो आप इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते किसी भी, अब आप उस 4 साल में देखें कि आपने क्या कोताहियां की हैं, वो उसको उसका एनालाइज करें अपने आप से सारे, और फिर मैंने तो इलेक्शन में खड़ा नहीं होना, जिसने भी खड़ा होना है उसे करें कि क्या गलतियां हुई हैं उनसे, क्या गलतियां हुई हैं आने वाले 4 सालों के बाद, क्या क्या क्या गलतियां हुई थी जो मैंने अब नहीं करनी, छोड़ दें। मैं फिर कहूंगा जब आप डेनिश सियासत कर रहे होते हैं तो छोड़ दें उसके अंदर देसी टच देना, आप अपने यहां पर लोगों को जाके बताएं, पाकिस्तानियों को सबको एक एक एक एक एक वो एक जो होता है एक एक समझ के, एक ही झंडा वो है स्वीडन अपना डेनिश, जब आप डेनिश सियासत करें डेनिश झंडा, जब आप फॉरनर से मिलने गए हैं पाकिस्तानियों से फिर साथ पाकिस्तानी डंडा डंडा भी रख सकते हैं, क्योंकि आप इन वांता जो है उनको बताने जा रहे हैं, लेकिन जब आप दूसरी पार्टियों के वहां पर झंडे रखेंगे साथ पाकिस्तान के, फिर आप इलेक्शन हार जाएंगे, लोग आपको वॉच कर रहे होते हैं, ये है। इस तरह ही मैं स्वीडन की भी बात करूंगा, अगर स्वीडन में भी यही गलती की उधर भी कोई नहीं जीतेगा, चाहे वो स्टॉकहोल्म हो चाहे कहीं भी हो, लेकिन मैं पाकिस्तानियों को फिर भी कहूंगा स्वीडन में अगर लोग सुन रहे हैं, जब आप किसी से वादा करें वोट का तो आप उसको वोट डालें, जब आप वादा ना करें, ये भी होता है जैसे डैनिश कहते हैं, मैं बोलता डैनिश क्या कहते हैं, बिफोर से ही, वो तो बताते ही नहीं ना मैंने किसी को वोट देना है, वो जाते हैं हर जगह है तकरीबन बहुत से डैनिश, सुनते हैं सबको सुनते हैं, जब उससे कोई पूछते ना कि विम्स को तुस्तेम, बिफोर से यदि, या ये कहते हैं यदि मुझे नहीं पता अभी, आप ये भी कह सकते हो, आप ये तो नहीं कह सकते कि सामने एक बंदा आया तो उसको आपने कहा जी मैं तुहानू वोट पावांगा, दूसरा आया बेचारा कंपेन कर रहा है उसको भी आपने यही कह दिया, यार फिर ये तो गलत बात है ना, आप दोनों को इंशाल्लाह देखते हैं क्या होता है, ये भी कह सकते हो आप, फिर जिसके साथ आपने
1: लेकिन
0: वादा कर
1: शायद
0: लिया
1: आप
0: है मैं
1: देखें
0: वोट
1: ना,
0: वापस
1: हमारे
0: वोट ले।
1: पास कल्चर सेंटर है मस्जिद की शक्ल में, मस्जिद हमारे पास मौजूद है, टैक्सी ब्रांच तगड़ी अच्छी खासी मजबूत है, इसी तरह मीडिया क्लब बने हुए हैं, शायद आपके नॉलेज में होगा, मैं तो नहीं जानता, आप पता नहीं कितना जानते हैं, तो ये तरक्की याफ्ता तो हम है, ये कैसे कह सकते हैं हम तरक्की याफ्ता नहीं है?
0: राजा साहब, तरक्की याफ्ता सिर्फ हम अपने अपनी जो आप बात कर रहे हैं ना वहां तक है, बात तक है, प्रैक्टिकली कहीं भी तरक्की याफ्ता नहीं है हम, बातों तक है। पंजाबी च कही ना गल्ला करा लो जिन्नी मर्जी। मैंने अभी आपको टैक्सी का बताया क्या हालत कर ली हमारे, हम टैक्सी हमारी पास थी, पाकिस्तानियों के पास थी ये कब्जे में, अब आपसे जा रही है ये सारी ब्रांच, बल्कि चली गई है आपसे, अब आप सिर्फ स्लेव हो सारे, अब वोन मनी भी आपसे खत्म हो जानी है जो रह गई है। क्या ही अच्छा, आप इस बिजनेस के साथ साथ तब भी कोई और बिजनेस भी करते, जैसे डेनमार्क में आपको काफी उन्होंने चांस दिए थे, ये देती है गवर्नमेंट चांस, ये कहने को गलत है कि जी जब आप फेयर करेंगे काम, जब आप जेन में नियत रख के काम करेंगे, जेन में बदनीता नहीं होगा कि मैंने ये करना है, मैंने ये फ्रॉड करना है, जब फ्रॉड का जेन बना के कोई काम शुरू करेंगे तो फिर तो नहीं ना, फिर आपकी
1: आखिरी सवाल है, शायद आपसे आखिरी सवाल है कि यहाँ रहते हुए हम डेनिश सियासत करें या अपने मुल्कों की पार्टियों की सियासत करें?
0: अगर आपने इन मुल्कों में रहना ना, मैं आज चले आपने ये बात कर ही दी है, पहले आप इन मुल्कों की सियासत को समझें, इसमें हिस्सा लें, आप अपने आप को इतना बनाएं कि आपकी अपनी कोई इज्जत हो इधर, आप अपने आप को इतना बनाएं कि आपके बंदे ही पार्लियामेंट के अंदर हों, फिर आपको अच्छा भी लगता है अपने मुल्क की सियासत सियासी पार्टियों में करना। अगर अच्छा चलें ये भी मैं बात कर लेता हूं, अपनी पार्टियों की जो अपनी सियासत की बात की इधर की, यहाँ की जो मुल्क में रहते हुए अपने मुल्क की पार्टी की, उधर क्या कर लिया हमने, आपने देख ही लिया क्या हाल है उधर, उधर भी लड़ाई बजाई शैतानियां, अपनी अपनी पार्टियां बनाई हुई हैं, उसके अंदर भी सदर हैं, अलामती सदर जे, यानी कि पाकिस्तान दाखल हो लितर नहीं कोई मारदा नो, ते इत्थे अलामती सदर बनाया है, हर कोई एवं कागजा च मैं जी फलाना टमकी टमकाना मैं सदर हाँ, मैं जी मैं वो हाँ हजांची, मैं जी नायब सदर हाँ, उत्तो वा तेनू तो पाकिस्तान दाखल होंगे, तेनू तो लित्र नहीं कोई मारदा, ताकदा नहीं तेरे वाल, तो तू इत्थे सदर है। मैं सब पार्टियों की ये चीजें निकालनी है आपको, पहले यहाँ पर आप जमाए ताकि कुछ चंगा लगे तो काम कर दिया, कोई आपके पास कोई हो बताने के लिए दुनिया को कि हम इधर की पार्लियामेंट के अंदर भी हैं, इधर हम अमलदारों के अंदर हैं, हम इधर हम क्या कहते हैं हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, इधर हमारे पुलिस के अंदर हमारी जो इधर क्या कहते हैं इफ्ता खानिंग कुलसी उसके अंदर लोग बैठे हुए हैं, हमारे जज हैं लोग, फिर अच्छा लगता है कि आप अपने मुल्क की भी सियासत कर रहे हैं साथ साथ, आप इसके मुतहम्मल नहीं है, आपको नहीं अच्छा लगता, पैड़े लगते हो सारी, सबकी बात कर रहा हूं मैं, किसी का नाम नहीं मैंने लिया, सब पार्टियों की चंगे नहीं लगते, किसी तरीके से छिलक मजाक बनते हो, यानी कि आप कोई शक्लें देखें पहले, ना बात करनी आती है, ना खड़े होने की तमीज है, ना चलने की तमीज है, ना किसी महफल में बैठने की तमीज है, ना किसी मीडिया के सामने बात करने की तमीज है आपको। मैं अहदेदारों की बात कर रहा हूं जो बने हुए हैं अलामती, मैं तो नहीं ना अहदेदार ना बनना चाहता हूं ना बनूंगा, तो मेरे ये यही पैगाम है राजा साहब कि ये छोड़ दें ये चीजें, आप पहले फोकस करें यहाँ की जो लोकल डेनिश जैसे जहां पर रहते हैं उधर करें, और वो भी पता कैसे, बगैर किसी हरामजिदगी के, सॉरी टू माई वर्ड्स, बगैर किसी मकारी के, बगैर किसी लूमड़ बन के, ये जो लूमड़ी हैं जेन साफ करके बच्चे हैं हमारे यहां पर, बेचारे यहां पर सियासत में भी आना चाहते हैं, उनको ब्रेन वॉश ना उनके करें, उनके साथ शैतानियां ना करें जाके, की है पता है मुझे, तो उनको करने दें, जब वो यहां की सियासत मिसा लेंगे फिर वो यहां के मुताबिक चलेंगे, और वो फिर आपको लेके आगे आएंगे, आपको पाकिस्तान को रोशन करेंगे, लेकिन आप नहीं रोशन करने दे रहे पाकिस्तान को, क्योंकि खुद तुसी किसी जोगे नहीं रहे, किसी काबल नहीं है ये, देखिए इनकी वर्थ किसी की है बताएं मुझे, किसी एक की वर्थ बता दें राजा साहब, जीरो सिफर, तो यहां पर आके हम मार खा गए, जब मैं मुझसे ये कोई ऐसी बात करे ना मुझसे कि मैं ऐसे कर रहा हूं, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा जैसे डेनिश में मुझे सिखाया है, अगर मैं गलत, ये एक्सेप्ट नहीं करते, ये आगे से बगैरत बन के कहते हैं नहीं नहीं, जब आप गलती तस्लीम करके एक्सेप्ट करोगे आप कामयाब हो गए, यही अल्लाह ताला ने भी सिखाया चारों किताबों में, कुरान पाक में, बाकी तीनों किताबों में, तुरैत जंजीर से ज़बूर से लेके ये क्या कहते हैं बाइबल में भी, इन लोगों ने उसको अडॉप्ट किया है, सीखा है, ये लोग भी, मैं बताया ना, जंगजू लड़ने वाले जहालत में डूबे हुए, आपस में लड़ते थे ये। लेकिन वो था, उसकी मिसाल नहीं देनी कि वो भी अंजन असी अंज रहना है। आपने अब इनसे ये सीखना कि ये अच्छी जो बातें हैं, बुराइयां तो हर कौम में होती हैं, उसकी सजा मिलती है, पुलिस है हर माशरे में, लेकिन आपने इनसे अच्छी चीजें अडॉप्ट करनी है। वो नहीं हम कर रहे, हम नेगेटिविटी में है। सारा दिन एक कौम लगी हुई है टिकटॉक में, उन्हें राजा साहब की आगे बढ़ना है, और क्या उनकी क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। एक कौम सारा दिन सुबह से लेके 28 करोड़ का, 28 करोड़ बंदा टिकटॉक से बैठा था, खान नो रोटी नहीं है। 70% 80% जो है मर गए हैं, बिजली से, पानी से, हर चीज से। 3 टाइम की रोटी नहीं है पूरी, 8,000 कहते ने तनखा च गुजारा करो,
1: शायद एक बड़ा
0: 8,000 रुपए च कहते ने गुजारा करो, यानी कि हूं खून चो हूं खून च गुजारा कर लो। ये वे तुहाडी यानी कि इस कौम की कात, यानी कि शर्म नाल यार चुल्लू भर पानी च जाके इन्हें सारे ओ डुब जाओ सारे, जिन्होंने कह क्या गया 8,000
1: शायद
0: च गुजारा
1: एक
0: कर
1: बात
0: लो।
1: मैं आपको बताता चलूं, आप बातें कर रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूं, लोग भी सुन रहे हैं, हमारे समाज नाज़रीन भी सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं, लेकिन हर आदमी को अपना हक है। हम जमहूरी मुल्क में रहते हैं और जमहूरियत इसी तरह होती है, आप एक दूसरे को हक दें। लेकिन आप देख रहे हैं, आप इनको बुलाएं भी, इनके इंटरव्यू भी लगाएं तो वो लाइक नहीं करते अपने इंटरव्यू को, शायद मुझे कोई फायदा होगा। आप उस कौम की बात करते हैं,
0: राजा साहब मैंने किसी की इंडिविजुअली बात नहीं की, आप देख ले मैं ये जनरल बात कर रहा हूँ सबकी। आपने सवाल पूछा था कि यहाँ पर अपने मुल्क की सियासी पार्टियों को लेके चलना चाहिए ऐसे, मैंने उसका राय दी है, जब आप यहाँ की लोकल सियासत डेनिश में कामयाब नहीं है तो आप किस मुंह से अपनी पार्टियों को चलाओगे। ये नहीं कि आपको, आप इसके
1: यहाँ तो
0: मुखमल
1: आपको
0: है,
1: सदर कोई नहीं
0: आप
1: कहता,
0: इसके
1: वहां तो आप
0: ना,
1: सदर
0: आप
1: लिख
0: इसके
1: लेते हैं ना।
0: आप, मैं ये तो कह रहा हूँ, लामती सदर खुद ही लिखे दे, और पाकिस्तान जाओ लितर नहीं को मारना एक, मैं लामती सदर है जी पेपर च, वो फलान टमकाना सदर है, ओ जी वो की कहने ने, वो कहते नाइब सदर है,
1: चले शायद इस
0: वो
1: सलामती
0: गल
1: सदर
0: ही
1: पे,
0: गलत करने
1: इस
0: वाली।
1: सलामती सदर पे बात करेंगे। अब टाइम इजाजत नहीं दे रहा, अगले मेहमान है, तो इंशाल्लाह आपसे रابطہ रहेगा, फिर सलामती सदूर की बात करेंगे।
0: चलें ठीक है, थैंक यू जी, आपका शुक्रिया।
1: समय नाज़रीन ये थे शायद नसीम, जिनकी आप बात सुन रहे थे। समय नाज़रीन, हमारा किसी से मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है, हर आदमी को अपनी बात कहने का हक है, राय देने का हक है। हम जमहूरी मुल्क में रहते हैं, यहाँ कहने की बात करने की आज़ादी है। समय नाज़रीन हमारे साथ साथ रहिए, अगले मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं।
2: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सामान नाज़रीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। सामान, छुट्टियां हो चुकी हैं बच्चों को स्कूलों में, और गर्मी का भी बड़ा ज़ोर है, सियासत जो है वो छुट्टियों पर चली गई है, लेकिन बाहर सख्त धूप निकली हुई है, और मुहर्रम का भी महीना है, मुहर्रम के दिन है, तो गर्मी का आप अंदाज़ा लगा लें। अगर यहाँ गर्मी लग रही है तो उस वक्त का क्या माहौल तसव्वुर करके ज़रा देख लें। और उसके बाद बहुत सारे मसाजिद में प्रोग्राम भी होते हैं, सब मसाजिद में प्रोग्राम, सेंटर्स में प्रोग्राम होते हैं, कल्चर सेंटर्स में प्रोग्राम होते हैं, और जुलूस भी निकाले जाते हैं, और बहुत सारे इतराज़ात भी आ जाते हैं, अखबारों की जीनत भी खबरें बन जाती हैं। तो इस वक्त हमारे थिंक टैंक से ये तौकीर हसन बुखारी साहब, जो कि सारी चीज़ों को बड़े करीब से देख रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों को डीपली भी बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, तो उनसे जानने की सारी सिचुएशन कोशिश करेंगे। शाह साहब, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं।
3: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, राजा फूल साहब, आपको, आपकी टीम को, आपके जितने नाजरी हैं सबको सलाम अलैकुम। आपको पता कि आज डेनमार्क में इस माह की बल्कि साल की सबसे ज्यादा गर्म तरीन गर्मी पड़ रही है। इस वक्त एल्बसोन में 31 के करीब है, लेकिन बाद जगह पे 34-35 भी जा रहा है, जैसे कि फ्यून और नॉर्थ श्रीलैंड के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, और ये दरअसल मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ किस्म की वजूहत की वजह से गर्मी होती है, और ये गर्मी इतनी ज्यादा है कि पूरे यूरोप में आप देख रहे हैं कि स्पेन में लोगों की डेथें हो रही हैं, फ्रांस में एक दिन में 18, सिर्फ पेरिस में 18 आदमी जो है वो जिंदगी سے ہاتھ کھو بیٹھے اور دنیا فانی سے چلے گئے. اسی طریقے سے جرمنی میں جو ہے وہ 40 تک جا رہی ہے اور ہر جگہ گرمی پڑ رہی ہے, لیکن ہمارے ڈنمارک میں پھر بھی کچھ اللہ کی رحمت ہے کہ ابھی تک کچھ موسم اتنا زیادہ گرم نہیں ہوا. لیکن کوشش یہ کریں کہ آپ جب اے سی میں بیٹھے ہوں, خواہ آپ گاڑیوں میں اے سی لگا کے بیٹھے, تو اس کی دو وجوہات ہیں جس کو آپ دیکھیں. ایک, اگر باہر سورج نکلا ہوا ہے اور بڑی گرمی پڑ رہی ہے اور آپ نے اندر اے سی لگایا ہوا ہے, تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ سڈنلی جو ہے آپ کو نیند آنی شروع ہو جائے گی اور آپ کو, آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ یہ سمجھیں گے کہ میں جاگ رہا ہوں, اور آپ کو ایک دم جو ہے ایک چھولا سا لگے گا اور وہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. لہذا ٹیمپریچر جو ہے وہ تھوڑا سا باہر سے جو ہے بشا کا بھی تھوڑی سی جو شیشہ ہے اس کو نیچے کر لیں, تاکہ اندر کا ٹیمپریچر اتنا زیادہ سرد نہ ہو جائے کہ آپ کو اس صورتحال سے گزرنا پڑے. تو دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ گاڑی سے باہر نکلتے ہیں تو آپ ایک دم یخ, گاڑی یخ وابستہ ہوتی ہے, بہت سردی ہوتی ہے اندر گاڑی کے اندر جب آپ نے اے سی لگایا ہوتا ہے, تو آپ کے یہ جو گھٹنے ہیں اور ٹانگیں جو ہیں ان کا ٹیمپریچر کچھ اور ہوتا ہے, اور آپ سڈنلی باہر آ جاتے ہیں گاڑی سے اور وہ باہر کا ٹیمپریچر جو ہے وہ پلس ہوتا ہے 25, 26, 27, 28 جتنا بھی ہو, تو وہ آپ کے باڈی سے زیادہ ہوتا ہے. تو اس طریقے سے آدمی سر کا تکلیفوں میں آپ چلے جاتے ہیں, سرد ہو جاتے ہیں, سرد گرم ہو جاتے ہیں, اور یہ چیزیں آپ کو اوائڈ کرنی چاہیے. آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ اگر گھر کے نزدیک آ گئے یا تھوڑے سے فاصلے پہ جہاں آپ نے جانا ہے, تو آپ اپنا اے سی کا جو ٹیمپریچر ہے اس کو یا تو اے سی کو بند کر دیں اور ٹھنڈی ہوا لے لیں, یا آپ اس کو تھوڑا سا ہیٹ پہ لگا دیں تاکہ 22-23 ڈگری آپ کے جو کیبن ہے اس کا ٹیمپریچر ہو. اور فلٹر تو آپ کیبن فلٹر تو جو ہے اس کو لازمن چیک کریں, اگر وہ تھوڑا سا بھی گندا ہے تو یہ 50-60 سے لے کے تو 100 کروڑ تک کیبن فلٹر ملتا ہے, وہ لا کر آپ اس کے بدلے میں نیا فلٹر لگا سکتے ہیں. اس سے آپ کو لنگ بتنگس ہونے اور لنگس کی بیماریاں لگنے سے آپ کی بچت ہو سکتی ہے, اور آپ کا جو کیبن کا جو ٹیمپریچر ہے وہ بھی بڑا اچھا ہو جاتا ہے. تو راجا صاحب, لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے اور اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے. جی راجا صاحب.
1: شاہ صاحب, آپ نے گرمی کے متعلق بڑے تفصیل سے بتایا, احتیاط کے متعلق بھی بتایا, تو شاہ صاحب یہ محرم کے دن ہیں, 10ویں محرم گزر چکی ہے, تو شاہ صاحب گرمی کا حال اگر یورپ میں یہ حال ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں, تو اس وقت کیا حال ہوگا؟
3: دیکھیں جی, یہ تو بالکل آپ نے بڑا ریلیونٹ سوال اٹھایا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے خود جو چیز ہے جنت کا راستہ ہم نے خود بائے کرنا ہے. کیا ہم دنیا میں رہ کے تو ہر وقت شیطانیت ہی کرتے رہے, غبیت ہی کرتے رہے, لوٹ مار ہی کرتے رہے, اور یہ سوچنے کہ اگر یہاں کا 30 ڈگری جو ہے ٹیمپریچر وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے, تو وہ جو سورج سے بھی 70,000 گنا زیادہ ابلتا ہوا کھولتا ہوا پانی ہوگا دوزخ جو ہے, تو اس کے اندر کا ٹیمپریچر جو ہے جس میں ہماری کھال, اس باڈی کو آپ تصور نہیں کر سکتے, اس جسم کو, اس روح کو, اس کے اندر بالکل اسی حالت میں جس حالت میں میں بیٹھا ہوں, آپ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں اس کی سزا جزا اسی طرح ملنی ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہاں پہ روح ہوگی, یہ ہوگا, وہ ہوگا, تو یہ نہیں, جسم میں باقاعدہ ریز کیا جائے گا قیامت والے دن, اور ان جسموں کو اسی روح کے ساتھ جو ہے وہ سزا ملنی ہے. تو لہذا ہم لوگوں کو پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو بہت موقع دیا ہے. اب اللہ نے کہا ہے کہ آپ کسی وقت بھی یہ مت سوچیں کہ میں نے رات کو جانا ہے, یا 10 سال ابھی میرے پیچھے ہے زندگی کے, یا 20 سال ہے. آپ ہر وقت سچے دل سے توبہ کر لیں تو آپ کی توبہ قبول ہو جاتی ہے, اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے. لیکن ایک توبہ قبول نہیں ہوتی, وہ جو آپ حقوق العباد میں کرتے ہیں. حقوق العباد میں آپ کی پکڑ جو ہے کہ کل کو میں نے کسی آدمی کا, اگر میں اپنی مثال دیتا ہوں, میں نے کسی آدمی کو تھپڑ مارا یا گالی دی یا اس کا نقصان کیا, دنیا میں اس سے معافی نہیں مانگی, لیکن وہاں جا کر اس نے مجھے پکڑ لیا اور کہا کہ یہ بندہ میرے ساتھ جس نے میرے سے زیادتی کی ہے, तो फिर क्योंकि ये ना सोचे कि एक एक सेकंड में साफ हो जाएगा, वो अल्लाह ताला का 50,000 साल लंबा वो क़यामत वाला दिन होगा, और इतने बड़े लंबे दिन के अंदर आपको बड़े चीजें मिलेगी, लेकिन आप कहाँ कहाँ किसको ढूंढेंगे? जिसको आप ढूंढ रहे हैं हो सकता है वो अमेरिका के अंदर किसी और को ढूंढ रहा हो, और जो अमेरिका वाला है वो न्यूजीलैंड में किसी को ढूंढ रहा हो। इस तरह की मसल मैं मिसाल दे रहा हूँ। तो इस तरीके से आप इतने खरबों खरबों इंसानों के अंदर एक दूसरे को कैसे ढूंढेंगे? तो इससे बेहतर यही है कि यहीं से टेलीफोन उठाएं, यहीं से जो है वो ये कर्बला का जो मैदान है, कर्बला का जो वाकया हुआ है, ये इसी चीज पे है कि हक दीन हक को जो है उसको बहाल करो, दीन हक को चलने दे, किसी का हक ना मारो, किसी को ना हक कत्ल ना करो, किसी के ऊपर जुल्म ना करो। तो ये जो कर्बला का वाकया हुआ है जिसको हम मुख्तलिफ जावियों से देखते हैं, ये हमें देखना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा वाकया है जहां से इस्लाम जिंदा हुआ है। क्यों? कि जब नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहालत पा गए इस दुनिया से, हमारे सामने से उनका जिस्म जब चला गया, तो उसके बाद लोगों ने ये कहा कि ये जो बातें हैं, जो मुखालफीन थे जिन्होंने बराए नाम आप ये देखें कि कुछ मुखालफीन ऐसे थे जो कैदी बन कर आए थे, और जो कैदी बन कर आए थे तो उन्होंने जब इस्लाम कबूल किया मजबूरन, तो उन्होंने दिल में यह तहिया कर लिया कि हम इनको नहीं छोड़ेंगे और हम अपना पूरा पूरा बदला लेंगे। तो उन्होंने फिर बदला लिया, और फिर उन्होंने कहा कि हम ये सबसे बड़ी चाल थी यहूदियों की। अगर आप देखें तो किताबों में देखें,
1: आप मुनाफिक की बात कर रहे हैं।
3: जी, मुनाफिकीन जो है, मुनाफिकीन देखें, एक याद बात रखें, जो मुनाफिकीन होते हैं दीन इस्लाम में उनको मुर्तद कर दिया जाता है, उनकी तौबा इस्तफार नहीं होती। इसीलिए तो हद से बनने से, मुनाफिकीन बनने से पहले अल्लाह ने कहा कि आप तौबा कर लें। आप उस
1: की तरफ शाह साहब आप हमेशा कहते रहते हैं। तो शाह साहब, ये जो आप मीडिया पे देख रहे हैं, एक जुलूस निकाला गया मरम के हवाले से, और उसमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आईं। इससे पहले वज़ीर आज़म डेनमार्क और डी एफ पार्टी के चेयरमैन के दरमियान गैर मुल्कियों के मामलात पर पार्लियामेंट में जड़प, सियासी जड़प की बात करूं, नोक टोक, ये उस तरह की जड़प नहीं होती, दुश्मनी की जड़प नहीं होती, ये सियासी जड़प होती है। और ये जो मर्रम का जुलूस निकला, इस पर भी बहुत सारी चीज़ें जो है, इंटीग्रेशन मिनिस्टर का भी बयान हुआ, तो ये भी हमारे सामने नाज़रीन को बताएं, ये असल कहानी क्या है?
3: ये असल कहानी ये है कि इस कहानी के वजूहात जो है वो भी हम लोग खुद हैं। इस कहानी की इब्तदा करने वाले, इसको कहानी को लिखने वाले, सब कुछ हम हैं। हमने अपने मुखालफीन को ये जवाब, उनके लिए ये जवाब पैदा कर दिया कि वो आसानी से जो है वो एक ऐसा कानून जो है वो सामने ले आए, और जो वो ले आए हैं कि ये चीजें जो है ये डेनमार्क के अंदर बंद हो जाए। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जाफरिया सेंटर वोमेंस के नैरोब्रो से उनको इजाजत मिली, और हम लोग वहां से जुलूस निकालते थे, और ये अपना नैरोब्रो गेट से होकर स्टेशन तक जाता था, पुरमन तरीके से जाता था, बकायदा लोगों को साइडों से गुजर जाते थे लोग, हर एक चीज हो जाती थी। फिर इसके साथ अरबों की मुख्तलिफ नस्लें जो है वो डेनमार्क के अंदर आ गई, और ये वो लोग थे मेजोरिटी जो जंग ज्यादा इलाकों से आए हैं, यानी कि जहाँ बहुत ज्यादा वॉर था, जहाँ पे बहुत ज्यादा खौफ और दहशत थी, इंसान की जिंदगी का किसी को पता नहीं, कौन कहाँ लाशें पड़े हैं, क्या क्या पड़ा हुआ है। तो ये जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे इन्होंने सबसे बड़ी जो वायलेशन की वो इन्होंने यहाँ के कानून को, आइन को समझने की जरूरत नहीं समझी। इन्होंने कहा कि हम लोगों को इजाजत नामा मिल चुका है और हम जो मर्जी करें, और इससे फायदा उठाते हुए जो हमारे मुखालफीन जो यहाँ पे थे। अब आप देखेंगे कल क्या हुआ, पिछले साल जब यही अपना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जुलूस चल रहा था, तो कपिल वाय के करीब वहां पे इन्होंने शीरंस गेट के दरमियान इन्होंने कुछ अरबियों ने मुखालफिन नारे लगाए डैनिश में और अरबी में, اور اسرائیل کے خلاف بھی اور دوسری چیزوں بھی. اور یہ چیز جو ہے یہ زیب نہیں دیتی کہ ہم امام حسین علیہ السلام کا حق اور امن کا جو جلوس ہے وہ ہم نکال رہے ہیں. ہم

0: और से ऊपर ऊपर लोहे लगाए हुए थे आदमी में और वो मजालस लगाई हुई थी, उससे ये हुआ कि उनके जो नेबर थे डेनिश और दूसरे रह रहे थे, दूसरी कौमें रह रही है नरबों में, वो अवादारी का की बात कर रहे थे। क्योंकि मैं सड़क पे घूम फिर रहा था, मैं देख रहा था, मैं नोट कर रहा था कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स है। तो इसी तरीके से एक जो मुस्तैद लोग हुए हैं, कुछ आपको याद है कि हमने जब हमने वहां फलकत सिंह में वो प्रोग्राम हुआ था क्या नाम है, तो आप भी वहां पे मौजूद थे पोलराइजेशन का, तो उसके बाद इन्होंने एक नया फितरा खड़ा किया। इन्होंने जो मुनारफ हुए जिन्होंने इस्लाम को छोड़ा और यहाँ पे सियासी बनाए ली, उनको उनको ये लेके 16-17 बंदों को उनको लेके कुछ साथ डेनिश और कुछ साथ यहूदियों को लेके, तो ये वहां पे नरबो मेट्रो स्टेशन के सामने नरबो गुंडी में ये खड़े हो गए और माइक्रोफोन पे इस्लाम के खिलाफ, ये नहीं कि ये हमारे खिलाफ शियों के खिलाफ या मुसलमानों के खिलाफ बात कर रहे हैं, ये इस्लाम के खिलाफ नारे लगा रहे थे। और इसकी वजूहत क्या है? इसकी वजूहत ये है कि ये इसके इस कॉज को मैं ये कहूंगा कि ये हमें मुसलमानों को सोचना चाहिए कि हमारे लीडरान क्या कर रहे हैं, क्या हमारे लीडरान जो है ये वो ऐसे लोग आ चुके हैं जो
1: तो कुछ क्या है। ये जो मौका फ्राम किया जाता है ये अपनी गलतियों की वजह से फ्राम किया जाता है, स्टेट के अंदर तो स्टेट नहीं बन सकती।
0: देखे जी, मैं आपको ये कहता हूँ कि लोगों को गुस्सा लगेगा, मेरी माए बहने बेटियां भी सुन रही होती है रेडियो, वहां पे दो लड़कियां, एक औरत थी और एक लड़की थी, बिकिनी पहन के साइकिल जो है उसको लेकर, तो हमारी लेडीज जो खड़ी थी उनके अंदर से वो गुजरती थी और वहां आके खड़ा होके तो उनके सामने से गुजरती थी और पैदल चलती थी और फिर वापस जाती थी, घूम के आती थी। तो एटलीस्ट एक जगह मैंने उनको कहा कि तुम लोग ऐसे ना करो, अपना आयो चले जाओ, तो उनको कोई थोड़ी सी ख्याल आ गया कि यहाँ पे कोई कैंप ना हो जाए। तो ये जो मसाइल है ये किन्होंने खड़े किए हैं? ये मसाइल इन्होंने खड़े किए हैं कि आप आए। अच्छा, अब इन्होंने, मैं ये कहूंगा कि हमारे जितने भी सियासतदान हैं, जितने भी इलेक्टेड हैं, अनइलेक्टेड हैं, तंजीमों में बने हुए हैं, ये सबके लिए शर्म का मकाम है, डूब मरने का मकाम है। कल इन्होंने वो जो बच्चियां आते हैं, बच्चे आते हैं स्कूलों के जिनको कैप्स मिली है, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया, जो भी है, वो नैरोब्रो गेट में जब वो चक्कर लगा रहा था ट्रक, तो उन्होंने एक नंगी गुड़िया लेके बाहर लटकाई हुई थी ट्रक के बाहर, और इस तरह की चीज हवा भरी हुई इसके अंदर, और इसको वो हाथ लगा लगा के तंग कर रहे थे। उसके अंदर लड़कियां भी थी और उसके अंदर लड़के भी थे ट्रक के अंदर। अब क्योंकि वो ये किसने इनको इस तरह की इजाजत दी? क्या गवर्नमेंट जो है सोशल डेमोक्रेट ही है या इन अरबियों पागलों ने जिन्होंने वोट दिए इन SF को? ये कोपरेमन कम्यून ने इस तरह की किस तरीके से इजाजत दी? एक दफा तो वो कहते हैं कि ये लोग मुसलमान इंटरग्रेट नहीं होते, दूसरी दफा खुद इंटरग्रेशन की ये धचे उड़ा रहे हैं और ये तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। और मैंने कल ये देखा कि हमारे यंगस्टर जो थे अरबी लड़के, उन्होंने बहुत ही तहम्मुल का सबूत दिया और पाकिस्तान ने बड़ा तहम्मुल का सबूत दिया और उन्होंने कहा कि हम जिस मिशन पे निकले हुए हैं इसी मिशन पे चले। हालांकि इन्होंने डैनिशों की तरफ से, डैनिश कम्यून की तरफ से, कोपरामन कम्यून की तरफ से ऐसा कोई चीज नहीं जिसका उन्होंने ऐसा कोशिश ना की हो कि यहाँ पे छेड़खानी हो, यहाँ पे फसाद हो।
1: आप तो कानून कायदे की बात कर रहे हैं, आप तो इसलाह की बात कर रहे हैं। तो शाह साहब देखें, ये मुहर्रम के जो दिन होते हैं, मजालस होती हैं सेंटर में या जिस तरह के भी सेंटर होते हैं, हर रोज़ ये महफिल होती है, हर रोज़ प्रोग्राम होता है, तो क्या वहाँ तरबियत नहीं हो सकती कि जब उसके बाद जब लाजमी एक जुलूस निकालें और जिसके इख्तलाफात का बास बने?
0: देखें, जिनकी अपनी तरबियत नहीं वो दूसरों की तरबियत क्या करेंगे? जब आपकी पूरी टीम के अंदर, टीम वर्क के अंदर खुद ही इख्तलाफात हो, आपको खुद ही सेंस ना हो कि आयन क्या कह रहा है, कानून क्या कह रहा है, आपने क्या करना है।
1: चलें शाह साहब, आपने बात को, आपने शाह साहब बात को समेट दिया, जिसे कहते हैं कूजे को दरिया में बंद कर दिया, बड़ी बामानी आपने बात की। लेकिन शाह साहब, लेकिन यहाँ के जो सियासतदान हैं उन्हें भी हमारी इन्वायरमेंट का ख्याल रखना चाहिए, हमारी सोच का ख्याल रखना चाहिए। वो हमें अच्छी तरह समझ चुके हैं, अगर एक आध दिन में कोई ऐसा कोई जगह या कानून के मुताबिक इजाज़त

0: परमानेंट, जिसमें से लाखों बन चुके हैं, वो बेनजीर इनकम सपोर्ट जो है वो प्रोग्राम चल रहा है। तो ये चीजें जो है ना, पार्टी जो लेके चलती है, यहाँ पे हो वहां पे हो,
1: सिंह मैं
0: लेकिन
1: सुनने
0: आप
1: में
0: जैसे
1: आया था
0: कह
1: कि
0: रहे
1: बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट लग रहा है, कई एकड़ पर कई मीलों की शक्ल में
0: हैं,
1: लग रहा है, जिसमें ये इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनेंगी।
0: इसमें कोई शक नहीं। आप देखें वहां पे सेहत का मामले को अगर आप देख लें, वहां पे इतने इतने बड़े हॉस्पिटल के अंदर फ्री इलाज हो रहा है, मुख्तलिफ सूबों से लोग जाके वहां पे इलाज, इसी तरह पंजाब में भी काम हो रहा है, इसी तरह बलोचिस्तान है कि सब सूबों में अपने अपने मुताबिक के मुताबिक काम हो रहे हैं। लेकिन हम ये चाहेंगे कि अगर मुल्क के अंदर आपने तरक्की करनी है, मुल्क की गरीब आवाम के लिए कुछ करना है, तो आपस के अंदर यूनिटी पैदा करनी होगी, जमातें अपना सियासी विजन रखें। देखें अभी अगर बजट के अंदर तनख्वाहों में अगर 10% इजाफा हुआ है, अगर मेरी पार्टी कहती है 20% होना चाहिए क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं।
1: नहीं, लेकिन मुजीब साहब एक चीज़ को
0: हाँ
1: याद रखिएगा कि ये पॉपुलर बयान देने से, देखे ना, PIA ज़्यादा भर्तियां करने से तबाह हुई। आपके वज़ीर आज़म एक कहते हैं, गिलानी साहब कहते रहे हैं कि मैं बार बार ये जुर्म करूंगा, इसी तरह स्टील मिल हुई। तो जब मुल्कों को अपनी अपनी तनसीबात को तबाह करने की बात की जाए तो उसका क्रेडिट नहीं लेना चाहिए।
0: ये बात आप ठीक है, लेकिन भी देखें PIA की बात आपने चला दिया, तो PIA के में आप बात, आज मुझे मेरी पिछले हफ्ते उस कमेटी मेंबर से बात हुई, उन्होंने कहा ये जुलाई के दरमियान में आखिर में शेड्यूल एक जारी होने वाला है, और जो जो जिन्होंने ये खरीदे हैं उन्होंने सऊदीया से जम्मू की बात कर ली है, और उन्होंने अल रियाज एयरलाइन ने एक उनसे को 777 की बात कर ली है। तो जल्दी इंशाल्लाह आपके वही रूट होंगे जैसे आपका पहले चलता था, जैसे इस्लामाबाद वाली फ्लाइट और लाहौर वाली फ्लाइट, यहाँ से कोपनहेगन और ओस्लो, जैसे वो रूट पहले था। तो ये अच्छी बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि देखें आवाज साहब, इंसानों से गलतियां होती हैं, कोई भी इंसान जो है वो ये है कि गलती से खाली नहीं है, इंसान होता है उसमें ये है। लेकिन अगर अगर आपको पता चल जाए कि मैंने
1: मुजीब
0: गलती
1: साहब,
0: की है,
1: इंसान
0: तो
1: की
0: उस गलती
1: गलती
0: की
1: मानी
0: तलाफी करनी
1: जाती है,
0: चाहिए,
1: लीडर की गलती नहीं मानी जाती।
0: इसमें कोई शक नहीं। लेकिन लीडर भी तो इंसान है, वो भी गलती कर सकता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन यह कि गलती करके गलती का इतराफ करना और उस गलती को बेहतर करना, मैं समझता हूँ ये जो जो ये जो एक चीज जो होती है ये एक बेहतर होती है।
1: आगा
0: और
1: साहब,
0: मैं
1: आपने
0: ये
1: अपने
0: समझता
1: सदरे
0: हूँ
1: मुमलिकात की बात सुनी, आप
0: जी,
1: क्या कहेंगे? आप जमहूरियत तो पसंद है।
2: मैं राजा साहब, सबसे पहले तो बात ये अर्ज करूंगा कि इन्होंने मुझे बहुत इज्जत अफजाई मेरी कर रहे हैं, मैं इस काबिल नहीं हूँ। जाती तौर पे मुजीब साहब का इखलाक ऐसा है कि हम जैसे लोगों को इनकी रहनुमाई की जरूरत होती है। देखिए, हम मोहतरमा की बरसी करते हैं, आप राजा साहब खुद इस चीज के चश्मदीद गवाह हैं। कौन सी ऐसी सियासी जमात के नुमाइंदे वहां नहीं होते? देखिए, यहाँ तारा साहब आए असेंबली में, अम्बेसी में प्रोग्राम बना, और ये मुजीब साहब का ही रोल था कि इन्होंने तमाम पार्टियों के लोगों की नुमाइंदगी वहां पर दिलवाई, वो वहां पहुंचे। जब भी मोहतरमा की बरसी होती है, कोई ऐसी यहाँ के जो जितने भी सियासी या गैर सियासी जितने भी लोग हैं वो सब यहाँ पहुंचे होते हैं। तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि मुजीब साहब का अपना इखलाकी किरदार ऐसा है कि पार्टियों की मुखालफतों को बालाए ताक रखते हुए लोग इस पहलू में आते हैं कि जी मुजीब साहब एक अच्छे इखलाक के मालिक है। हालांकि उसमें मैं अर्ज करूं, जमात इस्लामी अगर आप उसको बुलाए तो कसर तो पीपल्स पार्टी का तो नाम सुनना नहीं पसंद करते, उनकी सोच है, लेकिन वो भी आदर हो जाते हैं, वो भी आ जाते हैं कि नहीं जी दुआए खैर है। तो ये क्रेडिट जो है ना, ये यहाँ पे जो भी पीपल्स पार्टी को जो एक मुठ बनाकर रखा हुआ है ना, तो उसमें सबसे अहम रोल हमारे सदर साहब मोहतरम मुजीब कुरैशी साहब का है। और मैं तो, सच्ची बात है, मैं तो स्पीक करने वाला बंदा ही नहीं हूं, मुझे तो बात करनी नहीं आती, लेकिन कौन सा माहौल ऐसा होता है जहाँ पे मुजीब साहब अपनी दानिशमंदी से, अपने इखलाक से, अपने प्यार से और खूबसूरत लफ्जों से उस मसले को बयान नहीं करते? तो मैं तो खुद इस चीज को महसूस करता हूँ कि मुजीब साहब जैसे शख्स के जेरे साया मैं चल रहा, मैं पीपल पार्टी का हूँ रहूंगा, और जब तक सांस में सांस है पीपल पार्टी का ही रहूंगा। लेकिन यह है कि पीपल्स पार्टी को जो चार चांद लगे हुए हैं डेनमार्क में, तो ये मुजीब साहब का हुस्न अखलाक है।
1: तो फिर
2: तो
1: आगा
2: मैं ये
1: साहब,
2: बात जरूर
1: हमारे
2: करना
1: ग्रैंक को आप तस्लीम कर रहे हैं।
2: सर, मैं यकीन जाने, मैं बिल्कुल खुदा को हाजिर नाजर जान के कह रहा हूँ कि जितने भी हमारी कोई भी सियासी मुखालफत हर बंदा रख सकता है, लेकिन कोई ऐसा एक शख्स बता दे जो कि मुजीब साहब के बारे में कहने ही आ रही है, बंदा तो बड़ा कट्टर पिपली है या ये भट्टो का बड़ा नाम रहता है ये बेनजी।

0: का नाम लेता है, मैंने नहीं इससे मिलना, वो इस चीज को बाले ताक कर देते। हाँ अगर मेरे साथ कोई होगा तो वो कहेंगे तो यार आगा से पागल है, तो फैमिली तो बाहर निकलता ही नहीं, मकसद बाहर।
1: नहीं, तोड़ा जनाब, तोड़ा प्यार है, बहुत शुक्रिया, तोड़ा बहुत प्यार है इस चीज से, लेकिन
2: मजीब साहब ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, आगा साहब को आप पागल कह रहे हैं।
1: नहीं नहीं हम नहीं कहते, ये सवाल ही नहीं पैदा होता। आगा साहब मेरे बड़े भाई हैं, बड़े एहतराम वाले हैं
0: जी।
1: इनके इन इनके देखें, इनका भी इखलाक बहुत, आपने देखा कि माशाल्लाह इनके बेटे ने इलेक्शन लड़ा और बेहतरीन तरीके से इलेक्शन लड़ा, इन्होंने पूरी अपनी जद्दोजहद की, और
2: चूंकि
1: इनकी
2: ये
1: देखें ना
2: जमहूरी आदमी है
1: इनकी
2: ना, आप ये
1: वजूहत
2: जमहूरी आदमी,
1: बिल्कुल।
2: गो आप
1: हाँ
2: पार्टी की बात करते हैं लेकिन यहाँ की जमहूरियत की बात करते हैं ना।
1: जी ऐसे ही है, जो ऐसा देखे ना, हमने हमने यहाँ पे रहना है, हमारा मरना जीना है, आधी सदी से हम यहाँ पे रह रहे हैं, हमारी चौथी नस्ल शुरू होने वाली है, तो अगर हमने अब वही डगर पकड़नी है 70 वाली, तो फिर तो मेरा ख्याल हम सारी जिंदगी कामयाब नहीं हो सकेंगे। तो मैं समझता हूँ कि हमें इस चीज से बाहर निकल के नौजवानों की रहनुमाई करनी चाहिए, उनको आगे लाना चाहिए, नौजवान आगे आएंगे अपने लिए बेहतरी करेंगे, अपने अपने बच्चों के लिए बेहतरी करेंगे। और जहाँ पे जो लोकल सियासत, आपको पता हम डेनमार्क की सियासत पे हमेशा बात करते हैं और हमेशा करते रहेंगे, पार्लियामेंट के इलेक्शन आते हैं उसमें हिस्सा लेते हैं, कमून के रीजन में सब में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और अपने कैंडिडेट्स को अच्छे तरीके से सपोर्ट करके एक नुमाया तरीके से उनको सामने लेके आते हैं। आपने लास्ट दफा अपना आकाश की सपोर्ट की है, खुल के सपोर्ट की है, और इंशाल्लाह
2: जी
1: आइंदा
2: जी
1: आपको आपको पता है कि अब मैं SF में क्योंकि शामिल हो चुका हूँ, और जो भी 3 साल के बाद इलेक्शन आएंगे देखेंगे कहाँ बेहतरी होती है उसकी सपोर्ट करेंगे। हम तो चाहते हैं कि यहाँ की सियासत में हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और लेते हैं।
0: और इंशाल्लाह ताला ये फिर अगर अशरफ ने इलेक्शन में हिस्सा लिया तो मोहतरम सदर साहब उसके रूबे रवा होंगे, और ये इन्हीं की बदौलत यानी कि वो इलेक्शन में हिस्सा लेगा।
2: आगा साहब आपने
1: अगर
2: अगर का
1: जिसने
2: नाम क्यों इस्तेमाल किया है?
0: वो ये, क्योंकि सम टाइम डाउटफुल हो जाते हैं ना कि भी करना नहीं करना, क्योंकि सच्ची बात है कि अभी फ्री गोने का सिलसिला जो चल रहा है तो वो मुजीब साहब कुछ उनसे नाला है, तो लिहाजा अगर तो उसने यानी कि फ्री गोन में रहते हुए इलेक्शन लड़ा तो फिर मुजीब साहब की तो बड़ी मिन्नतें करनी पड़ेंगी,
1: नहीं
0: फिर
1: मैं
0: तो
1: तो
0: उनका
1: सपोर्ट नहीं
0: बड़ा।
1: करूंगा, नहीं मैं तो सपोर्ट नहीं करूंगा, मैं तो आपको आने कह रहा हूँ,
0: देखिए भाई देखिए ना, अब यही बातें हैं
1: मैं
0: ना।
1: बिल्कुल सही क्लियर कह रहा हूँ, अगर वो फ्री ग्राउंड से इलेक्शन लड़ेगा तो मैं उसकी सपोर्ट नहीं करूंगा, अगर किसी और जमात से इलेक्शन लड़ेगा तो खुल के सपोर्ट करेंगे और उससे बेहतर तरीके से सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह।
0: चलें बहरहाल ये अच्छी
1: ये तो
0: बात
1: वक्त
0: है, बंदे
1: बताएगा, जब वक्त नजदीक आएगा देखेंगे क्या होता है
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी
1: इंशाल्लाह।
0: अल्लाह।
2: आगा साहब
1: राय
2: आप
1: साहब
2: आखिर में आपसे जानना चाहेंगे, हमारे पास 2 मिनट हैं, तो आखिरी रिमार्क्स क्या देंगे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से, जमहूरी हवाले से?
1: जमहूरी
0: देखिए
1: जी
0: जी
1: दे
0: नहीं
1: जी
0: सदर
1: आप
0: साहब
1: दे आप दे
0: देखिए
1: आप दे आप दे दे
0: जी
1: आप
0: बात सुने, ये हम लोगों की खास तौर पर पाकिस्तान की बड़ी बदकिस्मती हुई कि जो मोहतरमा बेनज़ीर को मंजर आम से हटा दिया गया, उस जालिमों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है मोहतरमा को शहीद करके, यानी कि उन्होंने कोई अच्छा अमल नहीं किया, तो इस बात पे अफसोस है कि अगर अल्लाह सुबहाना ताला बीबी को मजीद टाइम देते तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए बेहतरी के काम करने थे, जो कि दुश्मन जो कि नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान कोई बेहतरी की सूरत की तरफ आए, तो बस इस बात का अफसोस है कि काश नादान लोग इस बात को इलम में रखते कि भाई ये बीबी जो है मुल्क के लिए बेहतर काम कर रही है। तो बहरहाल आगे मजीद सदर साहब हैं, सदर साहब इस पे ज्यादा रोशनी डालेंगे, हमें तो इस बात का बहुत अफसोस है।
1: नहीं आपने बड़ी अच्छी बात की आगा साहब, और मैं समझता हूँ कि अभी जो 10 साल या 8 साल गुजारने के बाद मोहतरमा वापस जब गई तो उनके अंदर जो मेच्योरिटी थी वो बहुत ज्यादा आगे आई हुई थी, और मेच्योरिटी थी कि उन्होंने मुल्क को आगे लेके जाना था, और मुल्क को आगे ले जाने में आपको पता है कि जो दुश्मन होते हैं वो कभी भी खुश नहीं होते कि पाकिस्तान
0: जी
1: तरक्की क्यों करे, पाकिस्तान की अवाम गुरबत से क्यों निकले, तो इस चीज को खत्म करने के लिए उन्होंने एक अजीम लीडर को शहीद किया। अल्लाह ताला मैं आखिर में यही कहूंगा कि अल्लाह ताला मोहतरमा को जन्नत अल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, और
0: आमीन
1: उनके बच्चों को जो है वो उनके जो जितनी भी वो जिस जैसे वो चलती थी उसी रास्ते पे चलाए,
0: उसी
1: और उसी
0: रास्ते
1: रास्ते पे
0: पे
1: चला
0: बिल्कुल
1: के
0: जी
1: मुल्क के लिए और आवाम के लिए खिदमतगार साबित करे।
0: आमीन
2: आगा
0: आमीन
2: साहब आपका बहुत शुक्रिया, मुजीब साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ
0: राजा साहब
2: शेयर किया।
0: आपकी नवाजिश,
1: साहब
0: आपकी
1: आपका बहुत शुक्रिया
0: मेहरबानी,
1: जी।
0: बहुत शुक्रिया जी,
1: ओके अल्लाह हाफिज जी। पाकिस्तान
2: जिंदाबाद,
0: जिंदाबाद,
1: पाक फौज
2: फौज जिंदाबाद,
0: जिंदाबाद।
2: समो नाज़रीन, ये आज मोहतरमा चूंकि जमहूरियत पसंद थी, यूरोप में उनकी बड़ी جو ہے وہ جان پہچان تھی, بڑی اچھی نظر سے یورپ میں دیکھا جاتا تھا, خاص کر ڈنمارک میں بھی وہ یہاں آئیں, یہاں کا رول بڑا پازیٹیو رول رہا, لوگ ان سے پیار کرتے تھے. تو سمعین, آج ان کی سالگرہ تھی تو ان کی پارٹی کے لیڈران جو تھے صدر مملکت مجیب قریشی صاحب, اپنی پارٹی کے صدر ہیں وہ, اسی طرح آغا ندیم صاحب تھے پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں. اتنا باشعور جو ہے صدر کو اور سیکرٹری کو ہونا چاہیے. اسی طرح پارٹیاں پھر مضبوط رہتی ہیں, جب پارٹیوں کے لیڈرشپ مضبوط ہوگی تو جو اوپر بڑا لیڈر ہوتا ہے وہ بھی قابو میں رہتا ہے. سامع ناظرین ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا.
3: سامعین کرام, ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है, आवाज दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आवाज।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: सामेईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: काफिर मुसलमान हो गए
1: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा

0: इस्लाम जिंदा,
1: इस्लाम जिंदा हो गए।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।